सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 या 621 किलोहर्ट्ज़ पर की आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की तिथि 30, तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48 हो रहे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी पटना है, श्रोतावाई सुनते हैं इस समय चिंतन।
1: हंसने से प्रसन्नता मिलती है, खुद को भी दूसरों को भी। प्रसन्नता तो चंदन के समान है, किसी के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेंगी। खुशी और गम हर व्यक्ति के जीवन के आवश्यक अंग हैं। इसके बावजूद कुछ लोग हंसमुख की श्रेणी में आते हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा सबको भाता है, जबकि उदास चेहरे को लोग पसंद नहीं करते। यदि आप मुस्कुराते या हंसते हैं तो सामने वाले लोग भी मुस्कुराने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार हंसकर अपने गमों को भुलाने का प्रयत्न तो करते ही हैं, दूसरों की तकलीफ भी कुछ कम करते हैं। उदास चेहरे लोगों को उदास कर देते हैं। किसी को उदास देखकर आसपास के लोगों को खुशी नहीं होती। ये तो कुदरत की देन है कि किसी की खिलखिलाहट लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है और किसी की आंखों के आंसू अन्य की आंखें भी गीली कर देते हैं। हंसी को स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि बताया गया है। हंसने से चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जो चेहरे पर एक अनोखी चमक लाता है। यही वजह है कि हंसमुख लोगों के चेहरे दमकते रहते हैं। हंसी मानसिक तनाव को कम करती है। हंसने से मानसिक तनाव कम होता है। जहां तक हो सके तनावग्रस्त व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों के साथ जरूर उठना बैठना चाहिए जिन्हें हंसने हंसाने की आदत हो। हंसमुख लोगों का सामाजिक दायरा बड़ा होता है। लोग ऐसे लोगों का साथ पसंद करते हैं जिन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, जबकि हमेशा रोना रोने वाले व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं। उदासी किसी को नहीं भाती। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आंसुओं पर नियंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दुख तकलीफों के साथ भी इंसान को जीना तो पड़ता है। क्यों ना हम सभी आंसुओं के बीच थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरने का प्रयत्न करें, थोड़ा खुद हंसें, जरा दूसरों को भी खुशी देने का प्रयत्न करें। हंसने से प्रसन्नता मिलती है, खुद को भी दूसरों को भी। प्रसन्नता तो अपने आसपास के वातावरण को भी सुगंधित कर देती है। विशुद्ध हंसी ही खुशी देती है। क्रूर हंसी खुशी देने के बजाय रुला भी सकती है। भद्दा मजाक करना, अपमानित करना, मानसिक चोट पहुंचाना हंसी नहीं बल्कि अशिष्ट है। ये असभ्यता दर्शाता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए हंसना एक घटिया आदत है। जो हंसी खुशी बांटे वही हंसी वास्तव में हंसी है। ये मानवता का तकाजा है, हंसिए हंसाइए।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, स्वर सहयोग सुधा सिंह का था।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है अब कृषि चर्चा कार्यक्रम में। आज आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है मुर्गियों के रोग।
1: किसान भाइयों नमस्कार। यदि आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में सबसे जो ज़्यादा जो नुकसान होता है वो मुर्गियों की बीमारियों से होता है। यदि आपकी मुर्गी बीमार ग्रस्त हो जाती है तो नुकसान होता है। और खासियत ये होती है मुर्गियों की बीमारियों में कि यदि एक मुर्गी में बीमारी पकड़ती है तो पूरा आपका मुर्गी बाड़ा जो है वो संक्रमित हो जाता है। जितनी भी मुर्गियां उसमें हैं वो सारी मर जाती हैं रोग ग्रसित होकर के। तो इसके लिए आवश्यक है कि मुर्गियों के रोगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और मुर्गियों के रोगों की रोकथाम जो है समय रहते आप कर दें तो अच्छा होगा। तो आज हम आपसे मुर्गियों के कुछ रोगों के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बीमारी है रानीखेत। जैसा कि आप नाम से जानते हैं रानीखेत बीमारी जो है रानीखेत नामक जगह से ही शुरू हुई है। यह मुर्गियों का विषाणु जनित संक्रामक और अतिघातक रोग है। प्रभावित मुर्गियों की उम्र के अनुसार रोग के लक्षणों में अंतर पाया जाता है। इस रोग से प्रभावित जो मुर्गियां होती हैं उनकी आयु जो है 3 से 4 सप्ताह से कम की होती है। चूजों में श्वास लेने की परेशानी होती है। चूजे सुस्त और कमज़ोर हो जाते हैं और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में यह रोग लगने पर श्वास लेने में तकलीफ़ होती है और गलगल की आवाज़ भी आती है। दस्त भी आने लग जाते हैं। कुछ की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है। यह रोग प्रभावित मुर्गियों और दूषित वायु दाना पानी फार्म में काम करने वालों से फैलता है, यानी कि संक्रमण फैलने के ये तरीके होते हैं। रानीखेत रोग की पूर्ण रोकथाम ठीक समय पर टीका लगवाकर ही की जा सकती है। पहला टीका 1 दिन के चूजों में, दूसरा 4 से 5 सप्ताह और इसके पश्चात 6 से 8 सप्ताह की आयु में तीसरा टीका लगवाना चाहिए। इसके अलावा एक और रोग होता है जिसका नाम है संक्रामक बरसा रोग। यह बीमारी एक अति सूक्ष्म विषाणु से होती है। यह विषाणु मुख्यतः मुर्गी के शरीर के एक अंग बरसा में शोथ उत्पन्न करता है। विदित हो कि बरसा से ही मुर्गी के शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है। इस रोग से प्रभावित मुर्गियों को कई अन्य बीमारियां हो जाती हैं और टीका का असर भी नहीं होता है। यह बीमारी मुख्यतः 3 से 6 सप्ताह के चूजों में उग्र रूप से होती है। इससे अधिक उम्र के चूजों में बरसा रोग लक्षण रहित होता है। इस रोग से प्रभावित मुर्गी के शरीर में कंपन एवं मरोड़ के साथ सफ़ेद दस्त होते हैं। शरीर का तापमान असामान्य हो जाता है। यह रोग दूषित दाना पानी और बिछावन से फैलता है। इस रोग से बचाव के लिए पहला टीका 2 से 3 सप्ताह की आयु में पानी द्वारा दिया जाता है और दूसरा टीका 16 से 18 सप्ताह की आयु में दिया जा सकता है। मैरेक्स रोग भी मुर्गियों में काफ़ी होता है। यह एक घातक रोग है। वास्तव में यह मुर्गियों का कैंसर रोग है। यह बीमारी मुख्यतः 2 रूपों में होती है। प्रथम प्रकार में 16 से 14 सप्ताह तक की आयु की मुर्गियों में यह रोग उग्र रूप से होता है जिससे मृत्यु दर अधिक होती है। कभी कभी 60% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। अधिकतर मुर्गियां बीमारी के कोई लक्षण प्रकट होने से पहले ही मर जाती हैं। इन मुर्गियों के शरीर के आंतरिक अंगों जैसे जिगर गुर्दे फेफड़े हृदय अंडाशय आदि में कैंसर की गांठें बन जाती है। द्वितीय प्रकार में 16 सप्ताह या इससे अधिक आयु की मुर्गियों में यह रोग होता है। गर्दन एवं पैरों पर पक्षाघात हो जाता है। मृत्यु दर 20

0: प्रतिशत से अधिक होती है। इस रोग से प्रभावित रोगी मुर्गियों को तुरंत अलग कर देना चाहिए ताकि शेष मुर्गियां इस रोग से ग्रसित नहीं हों। इस रोग के भी बचाव के टीके जो हैं चूजों को देना चाहिए। मुर्गियों का चेचक भी काफ़ी पॉपुलर रोग है, प्रसिद्ध रोग है। यह कम उम्र की मुर्गियों का अति संक्रामक रोग है जिससे बहुत मुर्गियां मरती हैं। बड़ी उम्र की मुर्गियां चेचक निकलने के बाद आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहती और स्वस्थ मुर्गियों में रोग फैलाने का माध्यम बनती है।
1: मुर्गियों के रोग अभी आपने ये वार्ता सुनी। इसी के साथ आज का हमारे कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।

0: टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमरीकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडिया वेब 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं सुनिए वंदना भक्ति संगीता, ये कार्यक्रम आइए करते हैं शुरुआत।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

मंत्र, दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रह पूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

0: श्रोताओं, तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का है।
1: अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री

0: अभी आप श्री रामचरित मानस से पाठ सुन रहे थे। मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का था। ये आकाशवाणी पटना है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर पल्लव नारायण सिटी की भेंट वार्ता। विषय है हृदय रोग, खान पान और जीवन शैली।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर पल्लव नारायण सिंह। आप पटना के जाने माने अस्पताल में मेडिसिन विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक हैं।
2: जी नमस्कार।
1: आज का हमारा विषय है हृदय रोग, खान पान और जीवन शैली। तो डॉक्टर साहब, खान पान और जीवन शैली जो आजकल की चल रही है, उसके कारण से हृदय रोग पर क्या असर पड़ता है और क्या होने की संभावना रहती है, कृपया बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: जी, आजकल का जो हृदय रोग है, जो आजकल अमूमन अभी युवाओं में और प्रौढ़ अवस्था और उसके बीच जो वयस्क हैं, इन सभी को जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत दे रही है, ये हमारा खान पान और रहन सहन ही है। हम लोग पहले इस बीमारी से इतनी नहीं ग्रसित थे, लेकिन जैसे जैसे हमने दूसरी बीमारियों को भी एक्वायर किया, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है,

0: लेकिन सबका जड़ कहीं ना कहीं हमारा खान पान और रहन सहन ही है। जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग फिजिकल वर्क या फिर बोले हाथ से काम करना, दूर तक चलना, ये सब शारीरिक काम तो बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन जैसे जैसे जीवन शैली में बदलाव आया, हमारा काम अब टेबल बेड पर बैठकर ज्यादा हो रहा है, हम लोग उतने मूवमेंट नहीं कर रहे। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग का वजन उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे, जो हम लोग खा पा रहे हैं वो हम उतने वेस्ट नहीं कर रहे, और हमारा मोटापा और एक कहिए कि सेंट्रिपिटल ओपेसिटी, पेट के अराउंड जो फैट जमा होना, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है हमारे हृदय रोग के बढ़ावे का। दूसरा जो है जीवन शैली में मैं कहूँगा कि खान पान, खान पान में भी अब क्या हुआ है कि हम लोग प्रोसेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आमतौर पे पहले जो होता था सिर्फ तेल यूज होता था, बहुत हुआ तो डालडा घी, अभी क्या है कि हम लोगों ने चीज़, बटर और बहुत सारी चीज़ें हैं, पिज्ज़ा नाम लीजिए और हाजिर हैं बाजार में। ऐसे ऐसे चीज़ों का उत्पादन भी बढ़ा है और कंजम्पशन भी बढ़ा है, खास करके बच्चों में बढ़ गया है। तो अभी देखते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा बच्चे मोटापा का शिकार हो रहे हैं, और वही मोटापा कहीं ना कहीं आगे बड़े में भी कन्वर्ट हो रहा है, उनका भी हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग को जो शरीर में है चर्बी की मात्रा और वसा की मात्रा बढ़ती जा रही है, और ये हृदय रोग का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। जो दूसरा और जो हम कहना चाहेंगे आज के युवाओं को, जो कि नशे की आदत, उसमें सबसे जो ऊपर आता है सिगरेट आता है। हालांकि शराब, गांजा ये सब भी कारण होते हैं, लेकिन जो हृदय रोग में जो सबसे ऊपर रखा गया है वो है सिगरेट। सिगरेट अगर आप अमूमन दिन में 2-3 भी पीते हैं या हफ्ते में 5-7 भी पीते हैं, तो वो इतना डैमेज कर देता है कि आपकी जो धमनियाँ धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, उसमें खून के थक्के जमने चालू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की कि हम धूम्रपान से बचें, खास करके हर नशे से बचें, लेकिन धूम्रपान तो बिल्कुल ही ना करें। दूसरा है खान पान में जो होता है वो फैट की मात्रा को कम से कम, फैट मतलब जितना भी है चीज़, बटर, तेल, घी से बना या ज़्यादा छाना हुआ, उनको अपने खाने के प्रयोग कम से कम करें। तीसरा जो है ताजी फल सब्जियां, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के खून के बहाव को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे दिल को हेल्दी रखता है। कितना भी हेल्दी हार्ट ऑयल हो, कितना भी हो, प्रयोग कम से कम करें। ये मत चले जाए कि बाजार में ये बहुत हेल्दी ऑयल आया है, इसे हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, ये भुलावे में कभी ना जाए। हमेशा कोशिश करें कि कम से कम तेल और घी का प्रयोग किया जाए।
1: एक बात और पूछना चाहेंगे कि आजकल की जो नगरी संस्कृति है
0: जी
1: उसमें ज़्यादा मतलब ऑफिस में तो बैठकर काम करना ही पड़
0: जी
1: जाता
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो किस तरीके से उनकी जीवन शैली को सुधारा जाए या कितना व्यायाम किया जाए, योग किया जाए, मतलब क्या किया जाए ताकि वो स्वस्थ रह सकें और हृदय रोग कम से कम होने की संभावना उनमें हो?
0: जी ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल की जो जीवन शैली, जो ऑफिस वाली गोइंग है, जो कि बैठ के काम कर रहे हैं, पर उनको अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। दिमाग में ये बनाने की जरूरत है कि हम दिन भर तो बैठे रहते हैं, तो कभी न कभी तो चलना होगा, कुछ न कुछ शरीर को थकाना होगा, कुछ न कुछ फिजिकल। तो जो लोग अगर जिन्हें सुबह मौका मिल जाता है या जो जिम जा सकते हैं, अगर जिम नहीं भी जा सकते तो आसपास खुली मैदान, खुली जगह हो जहाँ पे आप टहल सकते हैं, तो आप सुबह टहलिए, सुबह बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको अगर मौका मिलता है कि शाम में टहल सकते हैं तो शाम में टहलिए, रात में भी अगर मौका मिले खाने के बाद तो भी आप टहल सकते हैं। दूसरा जो आप कर सकते हैं कि मान लिया कि आप ऑफिस जाते हैं, आपके ऑफिस में लिफ्ट लगा है, एस्केलेटर लगा है, और आपका 2 ही तल्ला पे है, आप उतनी दूर आराम से पैदल सीढ़ियों पर, तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। मैं तो कहूँ कम से कम चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करें, बहुत जल्दबाजी में ना हो तो हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें, घर में भी सीढ़ियों का प्रयोग करें। हाँ, जिनको घुटनों का तकलीफ हो, बहुत वृद्ध हो, उनके लिए नहीं ये लागू होता है। तीसरा जो आप कर सकते हैं कि जब आप ऑफिस में बहुत लंबे समय तक के लिए बैठते हैं, तो बीच बीच में आपको चाहिए कि आप वाटर कूलर तक ही, अपने कॉफी मशीन तक ही, या फिर जो भी हो बाहर तक ही 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बीच में ब्रेक लेके 5 मिनट टहल लीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ी जगह रहती है। तो ये सब जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने आप को थोड़ा मोबाइल कर सकते हैं। योग साधना हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, हमारा देश ही योग के लिए जाना जाता है। तो जो लोग सुबह सुबह योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वो जरूर करें, जितनी देर कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, वो उनके दिल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जरूर करें।
1: जी, तो हमें उम्मीद है आपकी इन बातों से और सलाहों से हमारे श्रोताओं को बहुत ही फायदा होगा और हृदय रोग से अपने आप को बचाव कर सकेंगे। डॉक्टर पल्लव नारायण सिंह, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारियों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: हृदय रोग, खान पान और जीवन शैली अभी

आपने इस विषय पर डॉक्टर पल्लव नारायण सिंह से ली गई भेंटवार्ता सुनी। आपसे बातचीत कर रहे थे चंदमणि सिन्हा। इसके साथ आज का हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब समाप्त होता है। मीडिया वेव बैंड के 413.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है अब आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोतों, आप उर्दू कार्यक्रम अंजुमन सुनेंगे हमारे केंद्र से सुबह 9:10 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर जरनिगार यास्मीन से मकाला। विषय होगा उर्दू गजल कोई में जदीदियत के असरात। कलाम शायर में सुनेंगे नोमान राशिद को। परिवार कल्याण ये कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर रामजी प्रसाद से ली गई भेंट वार्ता। विषय होगा बच्चों में श्वास से संबंधित बीमारियां और उपचार। कार्यक्रम आओ सांस चलें, इसका प्रसारण होगा सुबह 10:45 पर। आज का विषय होगा बिहार की बौद्धिक विरासत। प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद शाहिद सबा। घरणी ये ग्रामीण महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ लोकगीत कीर्ति उपाध्याय से। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:05 पर। दिन में 2:30 पर प्रसारित होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे आपके लिए शाम 4:30 पर। खेल परिक्रमा, श्रोताओं आप सुनेंगे खेल कूद गतिविधियों पर आधारित हमारा यह साप्ताहिक आयोजन। समय होगा आज शाम 5:30। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। और कृषि प्रसारण खेती गृहस्थी का प्रसारण समय होगा संध्या 7:00। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगी रेखा कुमारी। साथ ही आपको बताते चलें किशोर से आप वार्ता सुनेंगे। विषय होगा युवाओं में बढ़ता अवसाद। जी हाँ, ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल में चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं आपको बताते चले हमारे केंद्र से आप समाचार सुनेंगे आपसे कुछ ही देर बाद 6:55 पर। संस्कृत समाचार और हिंदी समाचार 7:00। सुबह 8:00 होगा समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। खबरनामा आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से सुबह 8:45 पर और दिन में 2:00 और संध्या 7:30 पर। दिन में 1:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 2:05 पर इलाकाई खबरें। 2:10 पर रोजगार सूचना आप सुन सकेंगे और दिन में 2:15 पर प्रसारित होगा दोपहर समाचार। भोजपुरी बुलेटिन आप सुनेंगे हमारे केंद्र से संध्या 6:05 पर। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।

0: अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटीज में

0: एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नार्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयकः 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसदः सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.7 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज़, ओस्लो, नॉर्वे।
2: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के

0: बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्ण

0: साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। श्रोताओं, पेश है हालचाल। लीजिए जानकारी कुछ नई और पुरानी के साथ साथ। फिल्म संगीत के इस छोटे से संगीत में सफर में आप सभी का स्वागत है।

तो आज है 20 मई और यह है इस साल का 140वां दिन। जी हाँ, आज हम लोग मना रहे हैं और साल में बाकी शेष और बचे हैं 225 दिन। आज के इस नए दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 20 मई के दिन मना रहे हैं हम लोग विश्व मधुमक्खी दिवस। यहाँ पर्यावरण और मानव जीवन में मधुमक्खियों के महत्व को उजागर करने के लिए, इसकी याद दिलाने के लिए हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर ही यह दिन मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस।

ये एक सफल प्रयास है, इसे मनाते हैं हम लोग। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। बातें कुछ और करेंगे, इससे पहले श्रोताओं आई सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, अनुराधा और भूपेंद्र की आवाज में। इस गीत के लिए फिल्म का नाम है श्रोताओं एक बार फिर।

आज का यह दिन विश्व मधुमक्खी दिवस पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व को स्वीकार करने और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने

श्रोताओं, आज के बारे में एक और खूबसूरत सी याद बताते चलें। सन 2011 में आज के दिन झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट

साथ ही यह भी बताते चलें कि 20 मई सन 1977 को अंजुम चोपड़ा, जो भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और पूर्व कप्तान रही हैं, उनका जन्म हुआ था। और गोह चोक टोंग, सिंगापुर के दूसरे प्रधानमंत्री का जन्म भी आज के दिन सन 1941 में हुआ था। हमारे छठी लोकसभा में, जी हाँ, छठवीं लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष थे गोदे मुरहारी। इनका जन्म भी आज के दिन सन 1926 में हुआ था। और पीरू सिंह, भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में एक सदस्य थे। इनका जन्म भी 1918 में आज के दिन हुआ था। साथ ही सुमित्रा नंदन पंत, प्रसिद्ध हिंदी कवि, जिनका जन्म आज के दिन 20 मई सन 1900 में हुआ था। आइए सुनते हैं इस वक्त एक प्यारा सा और नगमा। कलाकार है मोहम्मद रफी, जिसे हमने लिया फिल्म पारसमणि से। इंदिवर के बोल को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम हालचाल का समय यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं इस समय कुछ गीत। कलाकार हैं राजेश कुमार शाह। पहले सुनते हैं इनकी आवाज में हरवंश राय बच्चन का लिखा ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कुछ गीत कलाकार थे राजेश कुमार साह। इसी के साथ आज का हमारे कार्यक्रम भी समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंदन कुमार का तबला वादन। प्रस्तुत है तबला पर ताल रूपक, हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं विनोद कुमार पाठक।

0: अभी आपने सुना चंदन कुमार से तबला वादन में ताल रूपक, हारमोनियम पर साथ विनोद कुमार पाठक का था। इसके साथ आज का हमारा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी पटना है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे।

0: दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति

0: भावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अभी संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
5: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं

0: आयकर का भुगतान नहीं करती हो और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
2: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
3: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुँच रहा।

0: आय पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
4: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is
3: Suparna
4: Bhatia from Rome.
3: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
5: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
5: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
3: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. A correspondent covering the Prime Minister's visit to Norway has filed this report from Oslo.
6: A joint statement released after the third India-Nordic summit outlines the areas of shared goals and vision of India and the five Nordic countries. They decided to elevate their relations to a green technology and innovation strategic partnership. This reflects their shared commitment to sustainability, innovation and green growth. They encouraged collaboration in research, innovation and talent mobility. In the multilateral and bilateral engagements during his Oslo visit, Prime Minister Narendra Modi invited Nordic investments in areas such as green transition, blue economy, shipbuilding, health and defense. In light of the India-EU FTA and TEPA agreement, he conveyed India's keenness for stronger economic and commercial ties with the Nordic region. On the global issues, the leaders together advocated for rules-based world order and reformed multilateral system. They underlined the importance of de-escalation in the conflict regions. The leaders unequivocally and strongly condemned terrorism, including the terrorist attack in Pahalgam. The Prime Ministers reaffirmed their commitment to further deepen the India-Nordic cooperation. The next India-Nordic summit would be held in Helsinki, Finland. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo, Norway.
3: West Bengal government will roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. The money will be credited directly through direct benefit transfer, DBT, into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. To qualify for the scheme, women must be aged between 25 and 60 years, must not be paying income tax and must not hold any permanent government employment or receive a regular salary pension from the state, central, statutory, panchayat, municipal, local bodies or government-aided educational institutions. Under the new order, all existing beneficiaries of the Lakshmir Bhandar scheme will be automatically migrated to the Annapurna Yojana. For new applicants, an online portal for the Annapurna Yojana will launch on June 1st, 2026. The Joint Parliamentary Committee JPC on One Nation, One Election has said the simultaneous Lok Sabha, Assembly and local body elections can save nearly 7 lakh crore rupees, improve governance efficiency and increase India's GDP growth by up to 1.6%. Addressing a press conference in Gandhinagar, JPC chairperson P.P. Chaudhary said, India had followed a synchronized election system until 1967 when local

0: runs, while Yashasvi Jaiswal made 43 runs. And now for a look at today's newspapers is over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Abhishek. In a joint article penned by PM Narendra Modi and Italy's PM Giorgia Meloni in The Pioneer, headlines Italy and India, a strategic partnership for the Indo-Mediterranean. The article says Made in Italy has always been synonymous with excellence worldwide, and today it finds a natural synergy with the high quality of goals of the Make in India initiative. US clears Apache how its support services for India, writes the Indian Express. Supreme Court upholds citizens' right to live free from fear of stray dog attacks, informs the Statesman. Top court nod for euthanasia of incurably ill rabid dogs, states the Hindu. The Economic Times in its editorial piece says the real question, OpenAI's win Musk's ethical AI development arguments remain. The paper says Elon Musk's case against OpenAI turning into a for-profit organization fell apart on a technicality, but the central question on how OpenAI should be governed remains unanswered. Sam Altman's argument is that its mission drift from non-profit to for-profit was necessitated by the financial reality of the tech's large investment requirements. And finally, tennis legend Billie Jean King, at the age of 82, earns a college degree, Bachelor of Arts in History, 65 years after starting at Cal State Los Angeles, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरक कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार पहली जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपए महाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% का इजाफा हो जाएगा। डीजीसीए ने इस साल के अवाइल में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 तैयारे में तकनीकी खराबी के तनाजुर में ईंधन कंट्रोल स्विच का मजीद मुआयना किए जाने का हुक्म दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी के हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक ज़ियाफ़त का अहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अनंतारा प्लाजो नईदी होटल पहुंचे जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट

0: जियाम्पा ओलो टोमा सेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की जो वाराणसी के घाटों और भारत के कदीम और दायमी शहर की सकाफती और रूहानी झलक पेश करने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जनाब मोदी आज क्यूरिनल पैलेस में इटली के सदर सर्जियो मटरेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जनाब नरेंद्र मोदी की आज की मसरूफियात में वफूद की सतह की बातचीत, प्रेस बयान, मुफाहमत नामों का तबादला, दो तरफा मीटिंगें और खुराक और ज़राअत की तंजीम का दौरा भी शामिल हैं। जनाब मोदी ब्लैक मलबरी का एक पौधा भी लगाएंगे, जो खाने, तिब्बी और उसकी सकाफती अहमियत के जरिए भारत और इटली को अलामती तौर पर मुंसलिक करता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: इससे पहले कल भारत और नॉर्डिक मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराई कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने का ऐलान किया। इन मुल्कों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान भारत में नॉर्डिक मुल्कों की सरमायाकारी में 200% का इजाफा हुआ है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हालिया तजारती समझौतों के साथ एक नए सुनहरे दौर में दाखिल होंगे, जिसमें तजारती और इक्तसादी साझेदारी नीज भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारत का माहदा भी शामिल है। दहशतगर्दी के मामले पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मामले पर दोनों मुल्कों का वाजह और मुश्तरका मौकफ है, कोई समझौता नहीं और कोई दोहरा मियार नहीं।
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: पेश है वज़ीर-ए-आज़म के नॉर्वे के दौरे के बारे में एक रिपोर्ट।
3: तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के मुश्तरका मकासिद और तसव्वुर का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने भारत नॉर्डिक ताल्लुकात को माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और इख्तराई दिफाई शराकतदारी तक के ले जाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो के अपने दौरे में कसीर मुल्की और दो तरफा सरगर्मियों के तहत माहौल के लिए साजगार राहदारी, समुद्री मईशत, जहाज़ों की तामीर, सेहत, दिफा जैसे मैदानों में नॉर्डिक सरमायाकारी को दावत दी है। भारत EU आज़ाद तजारती समझौते और टेपा मुआहदे के रोशनी में उन्होंने नॉर्डिक खित्ते के साथ मजबूत तर इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात की भारत की दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले समेत हर तरह की दहशतगर्दी की एक आवाज़ में सख्त मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत नॉर्डिक तआवुन को मजीद गहरा करने के अज़्म को दोहराया। अब अगली

0: भारत नॉर्डिक समिट फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में मुनाक़िद होगी। ओस्लो से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद खवातीन को उनकी समाजी व इकतसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपये की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम खवातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की पहली तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल खवातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत ये है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स अदा ना करते हों, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हों, या उन्हें रियासत या मरकजी कानूनी पंचायती बल्दियाती मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन न मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 दर्जात की एक फेरिस्त जारी की है। ये फेरिस्त कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मंसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फेरिस्त शाये की है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में पीपी चौधरी की क्यादत में जेपीसी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी एम के दास, डीजीपी डॉक्टर के एल एन राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक मुल्क एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। जेपीसी में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट, लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं आलमी सेहत असेंबली में सबके लिए सेहत बीमा, डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के अज्म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्ज हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है और दिन का टेम्परेचर कई मकामात पर 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हत्ता के रात में भी मौसम गर्म है और कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मध्य प्रदेश में भी शदीद गर्मी का जोर जारी है। रियासत में पहली मरतबा दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी और लू चलने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने डीजीसीए के अफसरान की मौजूदगी में असली कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में एयर इंडिया के एक बोइंग 787-8 तैयारे के ईंधन को कंट्रोल करने वाले स्विचेस के मुआयने की हिदायत दी है। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया के इस तैयारे VTNX को इस साल 2 फरवरी को जमीन पर उतार लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC हेडक्वार्टर्स में होगा। तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर इम्तिहान देने वाले तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं।

0: आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का बड़ा निशाना महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर तेज रफ्तार 93 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबार ने वजीर आजम के 2 रोजा नॉर्वे दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, भारत नॉर्वे तिजारती और तहकीकी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि नॉर्वे और भारत के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में तआवुन के वसी इम्कानात और हमारे मुल्क में गजाई सिक्योरिटी माही परवरी जैसे शोबों में पार्टनरशिप के मौके मौजूद हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, भारत और वियतनाम के रहनुमाओं ने हिंद बैरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेकाम सलामती और समंदरी रास्तों की आज़ादी बरकरार रखने के अज़्म का इरादा किया। इसी अखबार ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, भारत और नॉर्डिक ममालिक ने दहशतगर्दी पर नो कॉम्प्रोमाइज नो डील स्टैंडर्ड का पैगाम दिया।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरका कलीदी अमली मनसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% तक का इजाफा हो जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है, थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
3: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
4: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
3: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच, शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
4: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, विवाह और आपदा की स्थिति में टाउनशिप क्षेत्र में हो सकेगी जमीन की खरीद बिक्री, जिलाधिकारी को देना होगा आवेदन। प्रदेश के सभी नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। पटना के ईशान किशन की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और एक दिवसीय श्रृंखला के लिए चयनित। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में किसी की जमीन टाउनशिप के लिए अधिग्रहित होने की स्थिति में संबंधित परिवार को विवाह या आपदा की स्थिति में जमीन बेचने के लिए जिलाधिकारी को आवेदन देना होगा। सोनपुर प्रखंड की डुमरी बुजुर्ग पंचायत में एक कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवेदन की जांच के बाद संबंधित व्यक्ति को जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा।
1: इस इलाके में एक नया टाउनशिप बनाने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है। साथियों, इस इलाके को समृद्ध करना है। कुछ लोगों का शिकायत हमें मिला कि यदि टाउनशिप में हमारा जमीन चला गया, हमारे घर में बेटी की शादी करनी है तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं, हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जिन लोगों को भी घर में विपदा आपदा या बेटी की शादी करनी होगी, आप जिलाधिकारी को आवेदन दीजिएगा, 4 गुना पैसा आपके घर में और आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम।
0: इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल के रूप में सरस्वती विद्या निकेतन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में सीमा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन के पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने ये निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का ठीक ढंग से अनुपालन करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीमा पर निगरानी सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। साथ ही सीमा पर होने वाले अनैतिक और गैर वैधानिक कार्यों पर पूरी सख्ती बरतें। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बीती फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के 264 नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले यह चुनाव 15 से 25 अप्रैल तक संपन्न कराए जाने के बाद अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिए गए थे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार से बीजों पर अनुदान बढ़ाने की मांग की है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित कृषि क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री सिन्हा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दलहन और तिलहन फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित

0: चित कराने का भी अनुरोध किया। कृषि विभाग ने कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 12 नए कृषि यंत्रों पर भी अनुदान देने का फैसला किया है। इसके तहत सौर ऊर्जा आधारित तकनीक और उच्च क्षमता वाली मशीनों, सौर धान थ्रेसर, छोटा धान कंबाइन हार्वेस्टर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों को शामिल किया गया है। वहीं कई पारंपरिक और छोटे उपकरणों को योजना की सूची से हटा दिया गया है। प्रदेश में आज शाम 7 बजे से 22 मई सुबह 8 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। नॉर्थ और साउथ बिहार पावर कंपनियों की ओर से नई बिलिंग प्रणाली तैयार करने के मकसद से ये सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इस अवधि में बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज और नया बिजली कनेक्शन समेत अन्य ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री और किशनगंज जिले के प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि किशनगंज में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। किशनगंज में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि जिले में 22 पावर सब स्टेशन PSS काम कर रहे हैं, वहीं 10 अन्य PSS को विकसित करने पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी PSS के कार्यशील होने के बाद जिले में विद्युत आपूर्ति की कोई समस्या नहीं रहेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर से ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ आज देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली और अवैध दवाओं की बिक्री कर रही हैं, जिससे समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर अंकुश की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान सभी प्रमुख फार्मेसी श्रृंखलाएं, अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी

0: सुपौल, अररिया, कटिहार और पटना समेत कई जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 20 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि में 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान 41.4, छपरा का 40.6 और पटना का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश के गंगा तट पर स्थित सभी मठ और मंदिरों में प्रतिदिन गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने इस संबंध में सभी मठ मंदिरों के महंत, न्यासधारियों, न्यास समिति के सदस्यों और प्रबंधकों को पत्र भेजा है। प्रोफेसर नंदन ने बताया कि परिषद से संबद्ध मठ मंदिरों में गंगा आरती की शुरुआत 25 मई को गंगा दशहरा के अवसर से होगी। मधुबनी जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र से वाहन जांच के दौरान पुलिस और एसएसबी की टीम ने 191 किलो से अधिक गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में मधुबनी SC/ST थाना के प्रभारी रविन्द्र राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7,480 बोतल कोडीन युक्त सिरप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में प्रदेश के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। इधर शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और KL राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 93 रनों की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में NEET UG की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। आयोग ने कहा है कि विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से 100 विद्यार्थी इस इंटर्नशिप में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज और मानवाधिकार मुद्दों के प्रति निष्पक्ष और अधिक संवेदनशील बनाने में मदद करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने सहयोग शिविर से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पंचायतों के सहयोग शिविर में सुनी गई समस्याएं। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

की हिदायत को अपनी प्रमुख खबर बनाते हुए लिखा है, 15 अगस्त के बाद बिना वजह रेफर नहीं, केवल गंभीर मरीजों को ही बड़े अस्पतालों में भेजें। दैनिक जागरण लिखता है, क्यूल झाझा तीसरी रेल लाइन को मंजूरी। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, व्हाट्सएप पर भी ईपीएफ बैलेंस और लेन देन की मिलेगी जानकारी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य के 208 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज, 9152 पदों पर भर्ती। आज अखबार लिखता है,

जिलाधिकारी को देना होगा आवेदन। प्रदेश के सभी नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। पटना के ईशान किशन की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और एक दिवसीय श्रृंखला के लिए चयनित। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी पटना है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है। लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। आप सुन रहे थे सुदर्शन फाकिर का ये कलाम, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। सामईन, हमारा मुल्क भारत जैसा कोई मुल्क नहीं है। अजीम शायर अल्लामा इकबाल ने अपनी नज्म में बयान फरमाया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। जी हाँ दोस्तों, शायर ने हमारे मुल्क को गुलिस्ता की मानिंद बताया है। जी हाँ, गुलिस्ता यानी फूलों का बाग जहाँ अलग अलग किस्म के फूल खिलते हैं। किन्हीं फूलों की नस्ल कुछ है तो किन्हों की कुछ और है। ठीक इसी तरह हमारे मुल्क में भी मुख्तलिफ मजाहिब के लोग भी रहते हैं। हमारे मुल्क में जहाँ एक तरफ दिवाली मनाई जाती है तो वहीं बड़ी खुशियों के साथ ईद भी मनाई जाती है। कहीं भजन कीर्तन तो कहीं अजानों की आवाजें भी सुनाई देती है। यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरिजा घर भी हैं। गर्ज की यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजाहिब के लोग रहते हैं। सभी अपने अपने मजाहिबों की पूजा अर्चना करते हैं और सभी एक दूसरे से मोहब्बतों मिल्लत के साथ रहते हैं। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे यहाँ कसरत में वहदत बखूबी तौर पर नुमाया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में 20 से जायद बाकायदा तस्लीम शुदा जबानें यानी लैंग्वेजेस, सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। हर रियासत का अपना अलग पहनावा, मौसीकी, रक्स और पकवान है, लेकिन ये तमाम रंग मिलकर एक खूबसूरत हिंदुस्तानी सकाफत बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे मुल्क में कसरत में वहदत पुरानी तहजीबी, सकाफती और मजहबी रिवायात का अक्कास है। इसका मतलब मुख्तलिफ मजाहिब, जबानों, खानों और

भर रक्स करती रही नर्तकी की तरह आखिर है। किससे कहिए कि साबित हुई रहजनी, किससे कहिए कि साबित हुई रहजनी जो लगी थी कभी रहबरी की तरह, किससे कहिए कि साबित हुई रहजनी जो लगी थी कभी रहजनी की तरह। एक और गजल पेश कर रहा हूँ, उम्मीद है पसंद आएगी। मतलब है, जो मुझको सदा मुस्तरिब दीद करे है सुन ले है मेरा नाला तो वो ईद करे है। जो मुझको सदा मुस्तरिब दीद करे है सुन ले है मेरा नाला तो वो ईद करे है। शेर अर्ज है, सोज गम फुरकत में जो फूके है जिगर को, सोज गम फुरकत में जो फूके है जिगर को, बेताबी ये मेरी वही तनकीद करे है, बेताबी पे मेरी वही तनकीद करे है। जो मुझको सदा मुस्तरिब दीद करे है सुन ले है मेरा नाला तो वो ईद करे है। आखिरी शेर है, जो राह मोहब्बत में फिना होवे है ऐ दिल, जो राह मोहब्बत में फिना होवे है ऐ दिल, हासिल वही तो हस्ती जावेद करे है, हासिल वही तो हस्ती जावेद करे है। आखिरी शेर है, हो जाए है बेगाना वो सारे ही जहां से, हो जाए है बेगाना वो सारे ही जहां से, उस इश्क में जो कैस की तकलीद करे है, उस इश्क में जो कैस की तकलीद करे है, कि सुन ले है मेरा नाला तो ईद करे। आखिरी गजल पेश कर रहा हूँ तरनीम से, उम्मीद है पसंद आएगी। मतलब है, दिल में तुमको बसा रहा हूँ मैं, दिल में तुमको

अभी आप सुन रहे थे कलामी शायर के तहत रोमान रास्ती से, माजरत नोमान रास्ती से उनका कलाम। आइए सुनते हैं मौसिकी के तहत चंद गजलें। सबसे पहले सुनते हैं इरशाद कामिल का ये कलाम। ए आर रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान की आवाज़ में।

इरशाद कामिल का ये कलाम आप सुन रहे थे एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला कलाम आबिदा परवीन की आवाज़ में।

आबिदा परवीन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे हज़रत शाह हुसैन का ये कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम निरा फासली का। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की।

हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी। आप सुन रहे थे निदा फाजली का ये कलाम लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में। सामेईन हजरात, स्टूडियो की घड़ी ने इशारा दिया है प्रोग्राम को आज यहीं अख्तिताम करने का। फिलहाल आप हमें दीजिए यहीं इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे आपके अपने पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। तब तक के लिए इस हॉट वेव में चल रही लू में अपना रखें ख्याल, बॉडी को हाइड्रेट रखें, बहुत सारा पानी पिएं और बहुत जरूरत रहने पर ही घर से बाहर निकलें। खुदा हाफिज़।

श्रोता अभी सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम में बैंड के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है रसमंजरी।

तो आई शो, तो आज का फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दो गाने से, जिसे हमने लिया है फिल्म फर्ज से। अनबख्शी के बोल हैं और धुन तैयार की है गीत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

लीजिए सुनिए, अब रईस फिल्म का ये गाना है जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर ने। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और धुन तैयार की है जैम 8 ने।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यू ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।
1: बड़ा खूबसूरत है ना तो चार का टुकड़ा, बड़ा अमीर है ना, बहुत नामी गिरामी है ना, तो फिर ऐसी क्या बात है तुझमें?
2: वही बात है राजकुमारी, जिसके कारण आकाश पर चंदा चमके, धरती पर फूल खिले, सागर में नदी डूबे और तेरी जैसी चंद्रमुखी मेरे जैसे के पीछे मारी मारी
1: मारी मारी फिर है मेरी क्यों?

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

आप अभी सुन रहे हैं श्रोताओं अमित ब्रदर्स संजान फियट यासिर देसाई खुशबू ग्रेवाल की आवाज में ये गीत फिल्म शिमला मिर्च से। कुमार के गीत को

0: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
0: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
0: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
0: आरबीआई कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी रंगत तेरी सूरत। क्षमा करें, तुमसे अच्छा कौन है।

0: ये आकाशवाणी पटना है, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता इस समय सुन रहे हैं हमारे केंद्र से आज की पहली सभा के कार्यक्रम। प्रस्तुत है अब कार्यक्रम परिवार कल्याण। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रामजी प्रसाद से ली गई एक भेंट वार्ता। विषय है बच्चों में श्वास से संबंधित बीमारियां और उपचार। तो आइए सुनते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम परिवार कल्याण।
1: कार्यक्रम परिवार कल्याण सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रामजी प्रसाद। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं IGIMS पटना में, साथ ही आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और आज हमारे बातचीत का विषय है बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियां और उपचार। तो इससे पहले कि हम बात करें सीधे विषय पर, डॉक्टर साहब का हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
2: थैंक यू
1: सर। सर्दी का मौसम है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनमें आए दिन हम देखते हैं श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कौन कौन से कॉमन बीमारियां हैं बच्चों में श्वसन से संबंधित, थोड़ा उनके बारे में बताएं और उनके लक्षणों के बारे में, फिर हम उपचार की बात करेंगे।
2: सबसे पहले तो बच्चे का उम्र के अनुसार जो हर तरह का बीमारी होती है, खास करके 1 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं, मदर अगर मान लीजिए नॉर्मली फीडिंग करवाती है, चाहे ब्रेस्ट फीड हो या मिल्क हो या लिक्विड फीड हो
1: जी,
2: तो बच्चे जो 1 साल के नीचे होते हैं वो क्या हुआ, कभी कभी एस्प्रेट करते हैं। एस्प्रेट मतलब कि जो पानी है सांस की नली में चला गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में या लोअर रेस्पिरेटरी में। तो ऐसे में बच्चे को क्या होता है कि वो जो जाते हैं तो उसमें प्रोडक्टिव कफ बनते हैं, कब से क्या होगा फिर एलर्जी होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस होता
1: जी,
2: है। तो मैं ऐसे मदर को जो 1 साल के बच्चे का उसको फीडिंग का खास ख्याल रखे और प्रॉपर जो है पोजीशन पर फीडिंग कराए और बार बार बच्चे को जो है ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे मौसम जो सर्दी का मौसम उसको ढक के रखे। दूसरी है 1 से 5 साल के जो बच्चे रहते हैं, खास करके जो नॉर्मली जो है कि हमेशा जो नीचे टहलते हैं, गिरते हैं, बैठते हैं और खास करके जो कुछ छुए मुंह में कुछ डाल वाल लेते हैं, चाहे वो हेयर पार्टिकल हो, तो ऐसे बच्चे को जो हम 1 से 5 साल का होते हैं वैसे बच्चे को मदर को या पेरेंट्स को या जो भी अगल बगल है और रिलेटिव, उसको हम यही राय देना चाहते हैं कि आप जो ऐसे बच्चों का कम से कम बार बार हाथ धोए। ये हाथ धोने से ये नहीं है कि आप डायरिया का काउज बनेगा, बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है धीरे धीरे दिक्कत आएगी। जैसे इम्यून सिस्टम हो दिक्कत आएगी, ऐसे बच्चे में जो है आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको हम लोग निमोनिया कहते हैं, चाहे निमोनिया अपर रेस्पिरेटरी में हो या लोअर रेस्पिरेटरी में, होने का चांस बढ़ते हैं। और खास करके जो बच्चे को जो हम लोग देखते हैं कभी कभी माते जो है नहलाते हैं, नहलाने के क्रम में भी है जो ऊपर से नीचे जो अपन को प्रॉपर से जो पोछते नहीं है, स्पॉन्जी नहीं करवाते हैं, ऐसे में बच्चों को जो सेकेंडरी एलर्जी होता है उससे भी बच्चों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का या रेस्पिरेटरी जो है प्रॉब्लम काउज करता है। तो ऐसे माताओं के या बहनों के या किसी को भी मैं यही राय दूंगा हूँ कि आप बच्चे पर खास इस तरह ख्याल रखें।
1: जी जी। तो उनके नाक बंद होने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कतें होने शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपचार हो सकता है?
2: ऐसे कंडीशन में जैसे प्रॉपर दवाई का उसका सेवन करवाए, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन जो है समय समय पर देते रहे।
1: जी। तो अब बच्चों में ये मौसम संबंधी जो बदलाव है, अभी सर्द ऋतु चल रहा है, तो ऐसे में इसका कितना प्रभाव है इस बीमारी को लेकर के?
2: देखिए दिक्कत क्या होता है कि ऐसे हम लोग खास करके सर्दियों में हम लोग क्या होता है कि हर बॉडी में कॉन्स्टिक्शन होने लगता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी में ब्लड सप्लाई का कॉन्स्टिक्शन हो या मसल का कॉन्स्टिक्शन हो या स्किन का कॉन्स्टिक्शन हो, ऐसे कंडीशन में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो परहेज आपको यही करना है कि आप जो है प्रॉपर एंटीबायोटिक ले, प्रॉपर जो है खास करके खान पान पर ध्यान दे, जैसे गर्म पानी बच्चे को जो है प्रॉपर देते रहे, जैसे क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है खास करके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉन्सिलाइटिस ये सब ना हो।
1: जी जी। अगर कोई बच्चा इससे पीड़ित हो जाता है तो उस दौरान पेरेंट्स को किस किस स्तर पर कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे समझते नहीं हैं

0: और अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो वहाँ खास करके माताओं की भूमिका कहीं बढ़ जाती है। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसी स्थिति में वोमिटिंग भी करते हैं, ऐसी भी टेंडेंसी होती है, नाक से पानी भी गिरता है, आँख से पानी गिरता है। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं?
1: तो पेरेंट्स के लिए हम सुझाव रहे, जैसे लक्षण, जैसे आपने बताया कि नाक से पानी आ जाना,
0: जी,
1: नॉर्मली अगर नाक से पानी आ रहा है और उसको उल्टी नहीं है,
0: जी,
1: नाक से सिर्फ पानी ही आ रहा है, तो सिंपल जो आजकल कॉमन जो मेडिसिन होता है, जैसे खास करके हम लोग लिवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन टाइप के हम लोग दवाई देते हैं,
0: जी,
1: वो भी हम लोग 5 साल के ऊपर ज़्यादा दवाई दो तो बेटर है, वो भी क्योंकि सीडेटिव होता है,
0: जी,
1: और उसको भाप ले सकते हैं नॉर्मली,
0: जी,
1: या हाँ जिसको हम लोग नेबुलाइजेशन कहते
0: जी,
1: हैं,
0: घरेलू
1: या
0: स्तर पे जो
1: घरेलू
0: प्राथमिक
1: स्तर
0: उपचार है,
1: भाप ले सकते हैं, हीट
0: जी,
1: हॉट फोमेंटेशन ले सकते हैं नॉर्मल वेव में, तो जो भी नेजल डिस्चार्ज है उसको कॉमनली, यदि नेजल डिस्चार्ज होता है प्रॉपरली 24 आवर के अंदर, तो आप वायरल है मान के चलते हैं, उसके लिए कोई रोल नहीं है मेडिसिन का, चाहे वो दवाई एंटीटसिव हो या एंटीबायोटिक हो,
0: मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं
1: नहीं
0: है। जी, तो और रूम की जो स्थिति है, कुछ लोग घर में हीटर जला कर रखते हैं, कुछ लोग ब्लोअर जला कर रखते हैं सर्द के दिनों में, या कपड़ा बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा भी पहनाते हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ टिप्स देंगे?
1: नहीं हम तो ये कहेंगे अगर आप प्रॉपर से रूम रूम क्लोज किए हुए हैं, चारों तरफ से पूरा क्लोज है, तो आपको बच्चे को पूरा ऊपर से ढकने की ज़रूरत नहीं है,
0: जी
1: और सोने के समय प्रॉपर मोजा ही पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर आपको हीट वेपराइज भी करना है,
0: जी
1: आप जब शरीर का जो अपना वेपराइजेशन होता है या शरीर का जो भी हीट होता है वो बाहर निकलना भी ज़रूरी है,
0: जी जी
1: ऐसे कंडीशन में हीट जो है निकल नहीं पाते हैं,
0: जी जी
1: और अंदर क्या हुआ बच्चे का टेम्परेचर बढ़ते रहते हैं,
0: जी जी
1: तो जो अंदर से फीलिंग होगा कि आपको फीवर है बच्चे को, ऐसे कंडीशन में क्या है प्रॉपर जो है कहीं ना कहीं आप कपड़ा जो है प्रॉपर एयर अंदर जाते रहे, अगर रूम ओपन है खास है खिड़की जो खुल के रखता है, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर से नीचे ढक के रखे।
0: जी जी चलते चलते सर, एक आखिरी सवाल, बच्चों के लिए जो बच्चे पीड़ित हैं, मतलब बीमारी से ग्रसित हैं, उनका जो खान पान है या जो कुछ भी वो सेवन करते हैं, और खास करके जिस माता के साथ वो एसोसिएट हैं, तो माता के लिए आप क्या राय देंगे?
1: नहीं देखिए आजकल तो चूंकि फास्ट लाइफ का ज़माना हो गया, आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ प्रॉपर बच्चा जो है सुपैदा होते ही एक तो मोबाइल छू लेता है,
0: जी
1: दूसरा
0: जी
1: है कि खाने पीने में जो है खास करके फास्ट फूड जैसे मैदा का चीज़ है ये सब खाते हैं,
0: जी
1: तो नॉर्मली क्या होता है कि आप फास्ट फूड कुछ भी खा रहे हैं तो आपको गैस बनती है, बच्चा ये नहीं ये कि उसे निमोनिया से रिलेटेड है, देखिए गैस बनेगी, गैस प्रॉपर क्या होता है ना कि डिस्टेंशन होता है, तो कुछ ऊपर की तरह आप जाएगा, लॉजिकली क्या होगा कि बच्चे को भूख नहीं लगेगा, बच्चे खाते नहीं है प्रॉपर, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे का इम्यून धीरे धीरे डेवलप नहीं हो पाते हैं, इम्यूनिटिक सिस्टम जो डिस्टर्ब होता है बच्चे को, कभी रात को नींद नहीं आएगा प्रॉपर वे से, तो ऐसे कंडीशन में कहें कि बच्चे को खान पान में माँ बाप को काफ़ी ध्यान रखे, पेरेंट्स काफ़ी ध्यान रखे, क्योंकि आपको कोई भी खाना बच्चे का एक प्रॉपर एज में बना हुआ रहता है,
0: जी
1: ऐसे कंडीशन में अगर आप कोई भी मैदा का चीज़ खाते हैं साथ खास करके जो आजकल फास्ट फूड हो गया, वो बच्चे जो है कम से कम 10 साल के नीचे को कंप्लीट अवॉइड करे,
0: जी
1: ये दिक्कत है बच्चे में खास करके, आजकल बैड हैबिट माना गया है इसको।
0: जी जी पानी बच्चों को कितना देना चाहिए?
1: देखिए पानी तो प्रॉपर जब भी बच्चे को नीड रहता है आपको देना ही है, खाने के पहले या खाने के बाद जब भी बच्चे प्रॉपर से मांगे,
0: जी
1: ये नीड नहीं है कि आपको 24 घंटे में क्या देना है नहीं देना
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: बच्चे आके देते हैं कि पानी पीते नहीं है,
0: जी
1: लेकिन कोशिश करें कि माँ जितना भी पानी है कम से कम खाने पर प्रॉपर जो है 2-3 गिलास जो है कम से कम 2 लीटर 3 लीटर जो है प्रॉपर 24 आवर में आप
0: जी
1: देते रहे उसको।
0: निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, बच्चों में सांस से संबंधित बीमारियां और उपचार भी सह पर आप इतनी अच्छी जानकारी दिए आज इस कार्यक्रम में, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार कल्याण में, डॉक्टर रामजी प्रसाद से ली गई भेंट वार्ता, विषय था बच्चों में श्वास से संबंधित बीमारियां और उपचार। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी पटना है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ सांस चलें। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज का विषय है बिहार की बौद्धिक विरासत। स्वर सहयोग संजय किशोर का है, आलेख एवं प्रस्तुति मोहम्मद शाहिद सभा की। तो आइए सुने कार्यक्रम आओ सांस चलें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोता, जब हम ज्ञान, दर्शन, चिंतन और बौद्धिक चेतना की बात करते हैं तो भारत के नक्शे पर एक ऐसा प्रदेश उभर कर आता है जिसे न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को सोचना, समझना और जीना सिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रदेश बिहार की।

बिहार यह सिर्फ दो अक्षरों का नाम नहीं या फिर एक राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं है। यह नाम इतिहास के पन्नों पर ज्ञान की स्याही से लिखा गया एक अमर दस्तावेज है। बिहार शब्द की उत्पत्ति ही विहार से हुई है, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, रुकना और ध्यान लगाना। यह बौद्ध भिक्षुओं की वह तपोभूमि रही है जहां विचारों को पंख मिले और इंसान की बुद्धि ने बुद्धत्व का मार्ग खोजा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार की उसी महान बौद्धिक विरासत की, जिसने सदियों तक दुनिया का मार्गदर्शन किया और आज भी हमारी चेतना का हिस्सा बनी हुई है।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ है यहाँ का आध्यात्मिक दर्शन। ये वो भूमि है जहाँ विचारों की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आज से लगभग 2500 साल पहले जब दुनिया रूढ़ियों में उलझी जकड़ी हुई थी, तब इसी बिहार की धरती पर दो महापुरुषों का अवतरण हुआ है जिन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। महात्मा बुद्ध, जो ज्ञान की खोज में कपिलवस्तु से निकले और उन्हें परम ज्ञान यानी बोधत्व की प्राप्ति कहाँ हुई? आप जानते हैं, बिहार के ही गया जी में, यानी बोध गया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे जब सिद्धार्थ को ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए। यह मानो बुद्धि और विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी। बुद्ध ने कहा, आप दीपो भव, यानी अपना दीपक

ठीक इसी दौर में इसी भूमि पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश भी गूंजा। वैशाली की पावन धरती पर जन्मे महावीर ने स्यादवाद और अनिकांतवाद का दर्शन दिया। अनिकांतवाद का सीधा संबंध हमारी बौद्धिक सहिष्णुता से है। यह दर्शन सिखाता है किसी भी सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। सोचिए, आज की आधुनिक दुनिया जिसे टॉलरेंस या सहिष्णुता कहती हैं, उसकी नींव सदियों पहले इसी बिहार की बौद्धिक चेतना ने रख दी थी।

और केवल यही नहीं, जनकपुर और मिथिला का क्षेत्र याद कीजिए, राजा जनक की सभा जहां शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जहां याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे मनीषी उठते थे। गार्गी जो नारी चेतना और अगाध विद्वता का प्रतीक बनी, जिन्होंने भरे दरबार में उस समय के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दी थी। यह प्रमाण है कि बिहार की बौद्धिक समृद्धि में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही प्राचीन है जितना कि हमारा इतिहास।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का जिक्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम दुनिया के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की बात न कर लें। एक दौर था जब दुनिया के कोने कोने से, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से लोग यहां पढ़ने आते थे, और भारत में ज्ञान का वह महाकेंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक इमारत भर नहीं था, वह ज्ञान का एक जीवंत समंदर था। 9 मंजिला पुस्तकालय जिसका नाम धर्मगंज था और जिसमें रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक जैसे खंड थे। कहते हैं कि जब इस पुस्तकालय में आग लगी तो किताबें महीनों तक जलती रहीं। सोचिए कितना आगाध ज्ञान संचित रहा होगा वहां। नालंदा की विशेषता क्या थी? वहां की प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि द्वारपाल, यानी जिसे आज हम गेटकीपर कहते हैं, वे ही छात्रों की परीक्षा ले लेता था, और केवल तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्र ही अंदर प्रवेश पा सकते थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी डायरी में नालंदा के इस बौद्धिक स्तर की जो तारीफ की है, उसे पढ़कर आज भी हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और केवल नालंदा ही क्यों, भागलपुर के पास स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, वज्रयान, बौद्ध धर्म और दर्शन का यह बहुत

0: बड़ा केंद्र था। इसके अलावा उदंतपुरी और जगदल जैसे शिक्षा केंद्र भी इसी बिहार की मिट्टी पर फले फूले। ये विश्वविद्यालय इन बातों के सबूत हैं कि बिहार केवल खेती किसानी का प्रदेश नहीं रहा है, यह दुनिया का बौद्धिक पावर हाउस था।
1: ऐसा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन

और आइए अब बात करते हैं विज्ञान और गणित की। जब हम शून्य यानी जीरो की बात करते हैं तो पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है और भारत में इसी शून्य को देने वाले गणित और खगोल विज्ञान के महानायक आर्यभट्ट की कर्मभूमि भी रही है। पटना के पास तारेगना में उनकी वेधशाला थी, जहां बैठकर उन्होंने तारों और नक्षत्रों की गणना की थी। उन्होंने बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के यह बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह बिहार की वैज्ञानिक सोच की पराकाष्ठा थी। और अब चलते हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य यानी कौटिल्य जैसा मस्तिष्क पैदा किया। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक मार्गदर्शिका है। एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को उठाकर सम्राट बना देना, एक अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना, ये चाणक्य की बौद्धिक कूटनीति का ही परिणाम था।

और थोड़ी बात कर लेते हैं साहित्य के। साहित्य के क्षेत्र में भी बिहार का योगदान अद्वितीय रहा है। आधुनिक काल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी को कौन भूल सकता है भला, कथाशिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल लिखकर हिंदी साहित्य की आंचलिकता को एक नई दिशा दी, राम वृक्ष बेनीपुरे, बाबा नागार्जुन और उर्दू अदब में बिस्मिल अजीमाबादी, जिनका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा देता है। यह सब बिहार की उसी बौद्धिक उर्वरता की ही देन है। श्रोता, इतिहास गवाह है कि बिहार ने जब जब अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे वह प्राचीन काल का ज्ञान हो, मध्यकाल की सूफी संत परंपरा हो, या आधुनिक काल में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जहां बिहार की जनता ने गांधी जी को महात्मा बनाने की वैचारिक और नैतिक जमीन तैयार करके दी। आज बदलते हुए दौर में जब हम 21वीं सदी के तकनीक युग में जी रहे हैं, तब भी बिहार के युवाओं का बौद्धिक कौशल देश विदेश में अपनी चमक बिखेर रहा है। देश के सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षाओं यूपीएससी से लेकर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्रों तक बिहार के मेधावी छात्र अपनी बौद्धिक विरासत का परचम लहरा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस गौरवशाली अतीत को सिर्फ याद न करें, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर एक बार फिर से बिहार को ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प लें।

0: चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि बिहार की मिट्टी में एक अजीब सी कशिश और बौद्धिक खुशबू है। यह वो भूमि है जो विपरीत परिस्थितियों में भी निखरना जानती है। आज के आओ साथ चले कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था मोहम्मद शाहिद सबा ने। अब मुझे यानी संजय किशोर को और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: कार्यक्रम आओ साथ चलें। अभी आप सुन रहे थे आज का हमारा एक कार्यक्रम। विषय था बिहार की बौद्धिक विरासत। स्वर सहयोग संजय किशोर का था। कार्यक्रम में आलेख एवं प्रस्तुति मोहम्मद शाहिद सबा की थी। इसी के साथ आज का हमारा एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 413.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है अब फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश। सुनते हैं आज की ये पेशकश एक संदेश के बाद।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: ऑन एयर फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स आने लगे हैं, लेते हैं आपका कॉल। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में ऑन एयर फरमाइश।
1: नमस्ते,
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैं कश्मीर सोना मरक से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया सर। आप सर ठीक हैं?
0: जी बढ़िया, ठीक हैं, अच्छे हैं। आप कहें, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा सर। मैं कश्मीर सोनामर्ग से।
0: जी, क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है, बताएं।
1: बस ठीक ठाक सर। मैंने बोला कुछ समय के बाद ही कॉल करते हैं कि सर ने तो बोला है।
0: तो अभी सब वहाँ ठीक है, बढ़िया है?
1: मौसम तो अभी सुहाना है, रात में तो बारिश आता है, दिन में मौसम ठीक ही रहता है।
0: जी, और घर परिवार में सब लोग अच्छे हैं?
1: हाँ बहुत अच्छा सर।
0: आपका काम
1: आपके
0: धाम कैसा चल रहा है?
1: बहुत अच्छा।
0: चलिए, सब कुछ अच्छा
1: हाँ
0: रहे, सब कुछ बढ़िया, आगे भी हो।
1: हाँ हाँ सही
0: क्या
1: बात।
0: क्या मन बनाया है, क्या सुना है आपको?
1: आज मुझे सुनना है मोहम्मद अजीज की आवाज में, दुनिया में कितना गम है।
0: मेरा गम कितना कम है।
1: हाँ ये वाला गाना।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में
1: नमस्कार सर जी।
0: जी कहें, कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: हम सर जी विद्यापति ब्लॉक बारीपुर जिला समस्तीपुर से राम भरत तासमान बात कर रहे हैं।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है, कुछ बताइए अपने बारे में और क्या करते हैं आप?
1: चापाकल बोरिंग समरसेबुल ये सब गाड़ते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: यही काम करते हैं, खेतों में पानी जो पड़ता है।
0: हाँ
1: वही सब काम करते हैं।
0: बहुत समय से कर रहे हैं या क्या अभी कुछ समय हुआ है?
1: मैं बहुत दिन पहले 15-20 साल से कर रहे हैं सर जी।
0: काफी अनुभव हो गया आपको
1: जी, और आपका प्रोग्राम का तो भी काफी अनुभव है सर जी, बहुत पहले से सुन रहे हैं।
0: वो बताइए,
1: सुनते हैं प्रोग्राम, खेती गृहस्थी हुआ, प्रादेशिक समाचार हुआ, और दिल्ली बिहार हुआ, और रामचरित मानस, बहुत प्रोग्राम आपका सुनता हूँ। टाइम मिलता है जैसे वैसी सुनते रहता हूँ प्रोग्राम
0: जी। आज कॉल करने का मन बनाया आपने, आज क्या फरमाइश करेंगे आपकी?
1: जान दुश्मन का सर जी, रफी और लता जी का गाना है वो, मेरे हाथों में पहना किस चूड़ियां, ऐसे करके गाना का बोल।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हम रामदेव बोल रहे हैं, मल्लूपुर की जिला सिवान से। सर कैसे हैं आप?
0: जी बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। आप अपने बारे बताएं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं?
1: हम अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं सर, सर तब खेती वेती तब हो नहीं रहा है, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। और आपके पास सर फोन लगा रहे हैं तो हमारा गाना सुनवा दीजिए, बढ़िया सर गाना सुनवा दीजिएगा, सेड मत सुनाइएगा। और सुनाना चाहते हैं सर स्पेशल में आपको, और सिवान जिला हरपुर गांव से जो रजनी जी हैं उनको सुनाना चाहते हैं, बाकी जितने हमारे दोस्त सुनने वाले हैं सभी को सुनाना चाहते हैं।

0: हम सर बोल रहे हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, सारंजन प्रखंड वार्ड नंबर 6 से, सुजीत पासवान
1: जी। सुजीत जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या करते हैं कुछ बताइए।
0: हम तो गाना बजाना कर रहे हैं सर, संगीत से जुड़े हुए हैं सर।
1: तो लगन में समय अच्छा कट रहा है आपका।
0: बढ़िया बढ़िया, अभी लगन चल रहा है, आमदनी भी हो रही है अभी।
1: घर परिवार में सब ठीक है, खुशहाली है, सब अच्छा
0: है। बहुत बढ़िया है, अपना बताइए सर। हाँ यहाँ बहुत बढ़िया है।
1: हाँ हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया।
0: हाँ आपका, आप लोग बढ़िया रहिएगा तभी तो हम लोग बढ़िया रहेंगे। क्योंकि आप नया नया योजना अभी चला रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बांधना तो स्वास्थ्य चर्चा कोचिंग चला रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है
1: जी। आज क्या सुनने का मन है?
0: आज सुनवा दीजिएगा सर एक गाना, कच्चे धागे फिल्म का है ये, क्या बता रहे हैं, वो कवाली जो है।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार संजय किशोर जी।
0: जी आप कौन, कहाँ से बोल रहे
1: बहुत
0: हैं?
1: बहुत दिन के बाद कॉल किया है। आकाश कुमार मोतिहारी जिला बिहार से जी।
0: जी, बढ़िया है सब कुछ?
1: जी सब पढ़ाई लिखाई सब अच्छा से हो रहा है जी।
0: जी बहुत बढ़िया। और भी आगे क्या करने की योजना बनाए हैं, कुछ हमसे शेयर कीजिए।
1: सर थोड़ा बैंक मैनेजर का तैयारी कर रहे हैं जी।
0: क्या चीज़ की तैयारी?
1: बैंक मैनेजर
0: अच्छा, पीओ की तैयारी चल रही है। अच्छा,
1: सुबह सुबह बारिश हो गया है, बहुत अच्छा मौसम
0: मौसम हो गया है। इस अच्छे से मौसम में क्या कर रहे हैं?
1: है। गरम गरम चाय पी रहे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं
0: आपकी सुबह
1: जी।
0: तो अच्छी हो गई, कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है।
1: 8 बजे के बारिश हुआ है सर।
0: हाँ
1: आपका सभी प्रोग्राम थोड़ा बहुत मिला जुला कर सुनने लेके जब जब टाइम मिलता है।
0: सबसे बढ़िया क्या लग रहा है आपको अभी?
1: सर हमको सबसे अच्छा लगता है सर सुबह में जो आता है सर हाल चाल, और फिल्म संगीत 1:30 बजे से सुनिए लेते हैं, और आज रात में 8 बजे सुनिए लेते हैं, रात में 10:30 में सुनिए लेते हैं।
0: चलिए आज क्या सुनेंगे?
1: सर आज गाना सुना दीजिए हमको, फूल और कांटे फिल्म का गाना, बाबा तुम पे मरते हैं।

0: नमस्ते संजय बाबू
1: जी। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
0: हम गया जी से बोल रहे हैं, खरखुरा सब्जी मंडी से, अशोक जी।
1: जी अशोक जी, स्वागत है आपका। कहिए कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं?
0: फिलहाल तो सर अभी हम, पहले तो हम पान की दुकान था सर, मगर हमारा कमर में थोड़ा सा कम प्रॉब्लम आ गया। डॉक्टर बोले कि थोड़ा आप आराम कीजिए, न तो अगर ये तो पालती मारने वाला काम है फिर आपका कमर में दर्द होगा, इसलिए अभी दुकान अब बंद कर दिया।
1: तो अभी क्या करते हैं?
0: अभी घर ही पर रहते हैं सर।
1: तो आय का साधन फिर कुछ दूसरा बनाया आपने?
0: हाँ, एक लड़का नौकरी करता है सर।
1: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है।
0: हाँ तो वही सर, से सुबह में जाकर सब्जी ले जाते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, डॉक्टर के अनुसार न चलना सर, सामने छोड़ दिया
1: जी। कुछ टहलना वहलना होता है?
0: हाँ टहलना होना होता है, मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह शाम सुनो।
1: ठीक है, चलिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आपके लिए शुभकामनाएं। बताइए क्या सुनने का मन बनाया आपने?
0: दोस्ती का गाना बता दीजिए, पुराना वाला, रात्रि वाला।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी प्रणाम सर। संजय बाबू, हम बेगूसराय सीताराम सिंह बोल रहे हैं।
0: जी सीताराम सिंह जी, क्या हालचाल है?
1: हालचाल है बहुत अच्छा है सर। इधर पूर्वा हवा और कुछ बारिश के वजह से गर्मी में कुछ राहत मिला है।
0: अच्छा, तो अभी अच्छा लग रहा है?
1: जी अच्छा लग रहा है। 29 अप्रैल को आप जो है आओ साथ चले में आप ही का संयोजन किया हुआ था
0: जी।
1: जी गुंजा पर कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया और श्रीमती शारदा सिन्हा जी की जो है कहे मुझसे सजना जी, आप ही की थी सर वो प्रोग्राम बनाया हुआ, बहुत अच्छा लगा था
0: जी। धन्यवाद, आपने पसंद किया
1: जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम। आप जब रेडियो सेट पर रहते हैं सर, लोक गीत में भी 12 बजे तो बहुत अच्छा अच्छा विवाह गीत और सुनवाए हैं बीच में, बहुत अच्छा लगा
0: जी।
1: जी
0: अच्छा है, आप पसंद कर रहे हैं, हमें भी खुशी हो रही है। आगे भी आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। और
1: जी।
0: और कौन से कार्यक्रम ठीक है अभी आपके समक्ष?
1: जी आपका हाल चाल सुनते हैं सुबह में, उसमें सारी इतिहास की जानकारी मिलती है और पुराना संगीत भी मिलता है। हाँ। रामायण भी सुनते हैं जो है, हम रेडियो से तो बहुत जुड़े हुए हैं सर 85-86 से।
0: जी।
1: बहुत आनंद, कितना बरप्पन करें सर, रेडियो तो रेडियो है।
0: हाँ, बात जी,
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम सब होता है, नाटक भी बढ़िया और सब जुगवानी भी बढ़िया। शाम भी सुने थे, रात गुंजे बिहार सुने हैं, रामचंद्र जी के विवाह के प्रसंग पर था।
0: तो आज क्या अभी क्या मन बनाया आपने, क्या सुनेंगे?
1: सुना दीजिएगा, आ जा जाने वाले तेरी याद सताए, पापों का घर ना कहीं टूट में।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्ते सर जी।
0: जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम बोल रहे हैं सर, नवादा जिला ग्राम डेरमा से सर।
0: क्या शुभ नाम हुआ?
1: मेरा शुभ नाम हुआ प्रकाश मिस्त्री सर।
0: बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं, क्या करते हैं?
1: हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, जयमाला से लेकर के शुरू तक। अभी मेरा रेडियो देखे ऑन है।
0: अच्छा जी, ठीक है, बताइए कौन कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी हम सब काम करते हैं सर, मोटर से फर्नीचर से लेकर के मोटर काम तक।
0: अच्छा बढ़िया, तो क्या क्या बना लेते हैं?
1: सब चीज बनाते हैं सर, फर्नीचर।

0: आपको डाइनिंग टेबल है, कुर्सी है, बेड है, बढ़िया बढ़िया बेड बना देते हैं सर।
1: अच्छा अच्छा बढ़िया।
0: और कलकत्ता में हम कल काम करते थे अपना काम सर, तो चाइनीसी हम लोग का ढोल बनता था वहाँ चमड़ा का, उसी में हम काम करते थे सर।
1: अच्छा, तो वो भी बना लेते हैं।
0: मेरा रोज मजदूरी 5 रुपया रोज।
1: वो काम छोड़ दिया आपने?
0: छोड़ दिया सर, अब हम घर पर बैठ गए हैं सर, बाल बच्चा सियान हो गया, कमाने लायक चेन्नई में रहता है मेरा बेटा, 30 साल का है सर।
1: अच्छा, क्या करता है बेटा?
0: यही अपने काम करता है फर्नीचर का सर।
1: अच्छा, उसको भी सिखा दिया आपने?
0: जी हाँ सर।
1: अब इस कार्यक्रम में फोन किया, बताइए क्या सुनेंगे आप?
0: इसका दो रास्ते फिल्म का सुना दीजिए।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: सर
0: जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताएं।
1: हम बोल रहे हैं तो गोविंदपुर नवादा जिला में था आपसे।
0: कैसे हैं महेंद्र जी?
1: हम ठीक हैं सर, बहुत दिन से आपका प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन सा प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: 1970 से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
0: अच्छा, क्या क्या सुन रहे हैं ये बताइए कुछ।
1: आपका जितना भी प्रोग्राम सरकारी हो जाए ना सवेरे से,
0: हाँ
1: रामचरित मानस जो है ना,
0: रामचरित मानस, हाँ
1: सबसे प्रिय मेरा वो।
0: ठीक है,
1: इतना देर मैं भी रामायण को पढ़ लेता हूँ। मैं किसान हूँ छोटा मोटा।
0: अच्छा जी, बढ़िया।
1: अकोलत जल बरसात है ना,
0: हाँ आज क्या सुनने का मन है?
1: सुना दीजिए रामचंद्र का, एक दिन ऐसा है।
0: ठीक।

आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 10 बजे से 10:30 के बीच कॉल कीजिए और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612-22-22-500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 0612-22-22-500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हरिंद्र आजाद के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश में

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं बिहार का लोक संगीत थोड़ी देर में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन।
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
7: RBI कहता है
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
10: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
11: दिमाग चार्ज कर अपना।
12: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
11: देखा
10: पापा, रुको मैं पे करता हूँ, नो सिग्नल।
12: अब क्या करोगे,
10: फ्री वाईफाई है ना?
11: बुद्धू सुधर जा।
12: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
10: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
12: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: श्रोताओं बिहार के लोक संगीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है, तो आइए सुनते हैं जन्म संस्कार गीत।
13: विवाह के बाद स्त्री एक नए जीवन में प्रवेश करती है, किंतु वैवाहिक जीवन की सार्थकता मातृत्व में मानी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्त्री मां नहीं बन पाती तो वह स्वयं को अधूरा महसूस करती है। कोई संतानहीन स्त्री गंगा में डूब जाना चाहती है, किंतु गंगा माता तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। वे पूछती हैं, हे सुंदरी, तुम्हें सास ननद का दुख है या तुम्हारे पति परदेश में हैं? किस दुख से तुम डूबना चाहती हो? सुंदरी कहती है, मुझे कोई दुख नहीं है, किंतु पुत्र न होने के कारण मेरा जीवन निरर्थक है। गंगा मैया कहती हैं, हे सुंदरी, रो मत, आंसू न बहाओ, मेरी कृपा से तुम पुत्र पाओगी।

कोई स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए अपने आराध्य भगवान शंकर एवं माता गौरी की आराधना करती है। पलंग पर महादेव विराजमान हैं और मचिया पर गौरी। पुत्रवती होने के लिए कोई स्त्री रविवार को छठ व्रत करना चाहती है, सूर्य की पूजा करना चाहती है और मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करती है। वह कुरुक्षेत्र की पवित्र मिट्टी मंगाकर उसे गंगा जल में सानकर शिवलिंग बनाएगी और कांसे की कटोरी में फल फूल रखेगी। अपने आराध्य को वह अक्षत, चंदन, बेलपत्र, धतूरे के फूल और भांग देकर प्रसन्न करेगी। प्रदोष व्रत करते हुए एक दो पक्ष ही बीते होंगे कि उस स्त्री की मनोकामना पूर्ण हो गई और उसे पुत्र होने की आशा प्रबल हो गई।

इतने दिनों का उजड़ा वन आज हरा भरा हो गया। सीता को गर्व रहा और सबके मन आनंद से भर उठे। सीता सोचती हैं, कौन बांस काटेगा, कौन मेरी खाट बुनेगा, कौन अयोध्या जाकर श्री राम को ये समाचार देगा। ऋषि लोग बांस काटकर खाट बुनेंगे, हनुमान अयोध्या जाकर श्री राम को शुभ समाचार देंगे। सीता के मन में ये इच्छा है कि वे पीली साड़ी पहन बच्चे को गोद में लेकर राम की अर्धांगनी के रूप में उनके पार्श्व में बैठें और माता कौशल्या उनका चुमावन करें।

धारण की स्थिति में किसी भी स्त्री के मन में तरह तरह की इच्छा उठती है, कुछ विशेष खाने की, पहनने की या कहीं भ्रमण करने की। प्रस्तुत साध या दोहद गीत में किसी स्त्री को झुलनिया पहनने की साध होती है। उसका पति उसे छेड़ता हुआ कहता है, कोयल जैसी काली देह पर तुम्हें झुलनी शोभा कैसे देगी। स्त्री क्रोध करके कहती है, तुम काली पत्नी की सेज पर मत जाना, नहीं तो तुम्हारा रंग सांवला हो जाएगा। मचिया पर बैठी अपनी सास से वह कहती है कि हे सासू जी, अपने बेटे को कह दें कि मेरी सेज पर न आए, नहीं तो उनका रंग काला हो जाएगा। सास भी बहू के ही तेवर में जवाब देती है, हे बहू, अपनी मांग का सिंदूर त्याग दो, आंखों में काजल लगाना छोड़ दो, तो मैं भी बेटे को तुम्हारे पास जाने को मना कर दूंगी।

गर्भावस्था में मात्र यही परिवर्तन नहीं होता कि किसी स्त्री के मन में तरह तरह की साध उठती है, उसके शरीर की स्थिति भी बदलती रहती है। स्त्री के गर्भ धारण करते ही घर के लोग विघ्नहर्ता गणेश के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रथम माह में लोग सुदिन का विचार करते हैं तो दूसरे महीने में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे, तीसरे महीने में खाने पीने की रुचि नहीं रही, चौथे महीने में मुख पीला पड़ने लगा, पांचवें महीने में पांव भारी होकर डगमग पड़ने लगे तो छठे मास में शरीर में अधिक ताप का अनुभव होने लगा, सातवें महीने में रसोई में जाने की इच्छा नहीं रही, आठवें महीने में गर्भ के भार से शरीर के वस्त्र नहीं संभलते, नवें मास में स्त्री अपने पति से कहती है कि संतान के आने का समय आ गया है, वे शीघ्र ही मोहरे मंगा लें।

पुत्र जन्म का समय आ गया है। स्त्री प्रसव वेदना से व्याकुल हो रही है। चंदन की खाट बनी है और रेशम का पैताना है, उस पर वेदना से व्याकुल स्त्री लेटी है। अन्य दिन तो वह स्त्री एक ही सेज पर थी, आज अकेली सेज पर अपने स्वामी से जैसे बैर किए हुए है। वह कहती है, कच्चे बांस का खटोला बुनवाऊंगी और प्रियतम से लड़ झगड़ कर अपनी वेदना बांटूंगी। पति कहता है, हे टोला पड़ोस की माँ बहनों, आप ही मेरी प्रिया को समझाइए। पड़ोसिनी कहती हैं, तुम्हारी स्त्री उम्र की कच्ची है और गर्भ के भार से दोहरी हो रही है, इसलिए जब पुत्र हो जाए तभी उसे समझाना बुझाना होगा।

सुन रहे थे जन्म संस्कार गीत। इसी के साथ ही बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी। महिला सभन के पसंदीदा कार्यक्रम घरनी में सभन सखी सहेली के स्वागत बा, और हमरा ओर से मीनू के ओर से प्रणाम। तब बताई रवा सभन कैसन बानी? खूबे नीमन से तो बानी नू। अभी तक खूबे लहरल गर्मी पड़ रहल बाटे, और एकरा में तरह तरह के रस वाला फल हो गइल, तरकारी हो गइल, जूस, लस्सी, छाछ, आमझोरा, सतुआ के शरबत सबके सेवन करत हो कम। पर ई सभन के बीच एगो ऐसन चीज बाटे जेकरा पियला के बाद माथा के दर्द ठीक हो जाएला, तो केहू के एकर सेवन से मन तरोताजा हो जाएला, केहू के तब पेट हल्का हो जाला, तो एकरा बिना कोनो बातचीत करे में मने ना लागेला। रवा सभन के मन में चल रहा होखी कि ऐसन का कौन सा चीज बा जेकरा से इतना काम होखेला। तब बिना देर कैले बता देत बानी। देखिए, कल 21 मई के अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बाटे। ये दिवस चाय के महत्व, चाय के उत्पादक और मजदूर सभन के सहयोग और योगदान के सम्मान करे वाला दिन बाटे। चाय दुनिया के सबसे लोकप्रिय पिए वाला पदार्थ है, जे कि भारत सहित ढेर मनी देश के संस्कृति के हिस्सा है। चाय दिवस मनावे के उद्देश्य की बात करी तो चाय किसान भाई और मजदूर के अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना बा, चाय उद्योग के बढ़ावा देवेला। चाय पिए से शरीर में ताजगी और ऊर्जा आवेला, तनाव कम करे में भी चाय के अहम भूमिका रहेला। भारत दुनिया के सबसे बड़का चाय उत्पादक देश में से एक बा। असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी के चाय सगरे दुनिया में प्रसिद्ध बाटे। भोर के शुरुआत होखे या फिर घर परिवार में मेहमान के स्वागत के बाद सबसे पहले चाय अपन स्वाद से हरेक के मन जीत लेवेला, हर घर में चाय बनेला। देखी ना, जहाँ चाय रही वहाँ बात भी खूबे खास रहेला। एक कप चाय कभी कभी अपन परिवार, रिश्तेदार और संगे संबंधी के संगे खुशी के एगो अलग बात बना देवेला। चाय खाली पिए वाला पदार्थ नहीं, बल्कि लोग के भावना, रिश्ता और सुकून से जुड़ल एगो खूबसूरत आदत है। भोर पहर के ताजगी होके या फिर दोस्त के संगे रही या फिर थकान भरल दिन रहे, बस एक कप चाय हर एक पल के खास कर देवेला। चाय में कैफीन होखेला जे शरीर और दिमाग के तरोताजा कर देवेला। एकरा पिए से आलस कम होखी और शरीर में ताजगी के संगे ऊर्जा आ जाई। गरम चाय मन के सुकून, और अदरक, तुलसी, इलायची वाला चाय तो तनाव और थकान के भी दूर करेला। स्वास्थ्य ला भी चाय बहुत बढ़िया बा। ग्रीन टी हो गइल, हर्बल टी। हर्बल टी में एंटीऑक्सीडेंट पावल जाला जे शरीर के ढेर मनी बीमारी दूर करे में मदद करेला। चाय तो ढेर मनी तरीका से बना के पी सकीला, जेकरा में मसाला वाला चाय हो गइल, ग्रीन टी हो गइल जैसन की बतैनी, ब्लैक टी हो गइल, लेमन टी मतलब नींबू वाला चाय, एगो कुल्हड़ वाला चाय, मिट्टी के कुल्हड़ होला ऊ वाला चाय। हर एक चाय के एगो अलगे ही स्वाद होखेला और मिठास भी होखेला। जब चाय के चुस्की मिलेला तो हजार गुना ज़्यादा सुकून मिलेला। कुछ रिश्ता भी ऐसन के होखेला कि जितना चाय के उबालम उतने रिश्ता गहरा रही। चाय खाली पिए वाला नहीं, मतलब पेय पदार्थ नहीं खे, एहसास के दूसर नाम है। बारिश होखे, ठंडा हवा चले और हाथ में चाय मिले पे एगो अलगे सुकून मिलेला। अगर दिल उदास बा तो चाय पी ली, कोनो परेशानी तब चाय, खुश बानी तब चाय, केहू के संगे किकरो बारे में शिकायत बतियाना बा तब वो चाय अगर हाथ में बा तो शिकायत भी लंबा हो जाएला। समझ ली कि चाय तो एगो जादुई पेय पदार्थ हो गल। ये चाय ही ऐसन बा कि मीटिंग हो गई तो चाय मंगा ली, और अगर बात बन गई तब भी चाय के स्वाद ले ली। तो बताई रवा लोग, आज चाय कितना बार पीनी है? बा नहीं चाय कमाल के। तो ई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जे कि कल 21 मई के मनावल जाए, वैसे तो हमरा ख्याल से हमनी सभन खाली दिवस ही ना बल्कि हर दिन चाय दिवस मना रहल बानी, काहे कि चाय में इतना खासियत ही बाटे। और अब बात

करतनी आज के खास दिन के। देखी एगो छोट सा मधुमक्खी हमनी सबन के बड़का संदेश देवेला कि मेहनत और एकता से ही सफलता भेटायला। रवा सबन बुझ गेल होकम कि आज विश्व मधुमक्खी दिवस बा, जेकरा कि हरेक बरस 20 मई के मनावल जाला। इ दिवस के उद्देश्य बा कि मधुमक्खी सबन और भी परांगन करे वाला जीव के महत्व के बारे में लोग के जागरूक करना बा। मधुमक्खी प्रकृति और कृषि माने कि किसान भाइयन खातिर बहुते महत्वपूर्ण बाटे, काहे कि उ फूल से परांगन करके फसल पे उपज बढ़ावे में मदद करेला। मधुमक्खी के महत्व के बात करी तो फसल पे परांगन में सहायता के संगे संगे किसान के कृषि उत्पादन बढ़ावे में भी मदद करेला। संगे संगे शहद, मोम और भी ढेर सारा उपयोगी उत्पाद प्रदान होखेला। पर्यावरण के संतुलन बनावल रखे में भी अहम भूमिका रहेला। देखिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक तरीका से पाल के शहद और भी ढेर सारा उत्पाद मधुमक्खी के पाल के मिल सकेला। किसान या फिर जे भी एकर व्यवसाय करी हैं उनकरा फायदा ही मिल सकेला। तो मधुमक्खी पालन के लाभ की बात करी तो कम लागत और ज़्यादा मुनाफा मिली, रोजगार के अवसर भेटाई, शुद्ध शहद मिली, खेती के पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए मधुमक्खी पालन करे समय मधुमक्खी के बचावे खातिर मतलब कि वहाँ कीटनाशक के उपयोग थोड़ा कम करी, कोशिश करी कि पेड़ पौधा और फूल वाला मतलब पौधा उधा लगाई, पर्यावरण के स्वच्छ रखी, मधुमक्खी के प्राकृतिक आवास के भी सुरक्षित रखी। देखिए मधुमक्खी सिखावे ले की छोट मेहनत भी बड़ परिणाम लावेला। प्रकृति में मिठास मधुमक्खी के प्रयास में छिपल बाटे। जहाँ पे मधुमक्खी सुरक्षित बाटे वहाँ पे प्रकृति भी स्वस्थ बा। तो आज खूब निमन निमन बात भइल। आज बात केनी विश्व मधुमक्खी दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जे कि कल बाटे। तो चाय तो जरूर आज पीले होखम आ कल भी पियम आ 365 दिन पियम, मतलब हर दिन पीना बा, तरोताजगी लेना बा और रहना बा। तो चली कार्यक्रम में अब आगे बढ़तनी और रवा सभन के इंतजार होई कि अब जल्दी से कहे ना कोनो गीत उत सुनवाई। तो चलिए सुनल जाओ कृति उपाध्याय से इलोक गीत।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हाँ तो अभी हमने की सुनत रही कीर्ति उपाध्याय से एक बहुत ही प्यारा सा लोक भजन, और अब तो विचार बा कि तनी कुछ उपयोगी वार्ता हमने के सुन लेवल जाओ। देखी बेटी तो घर के लक्ष्मी होखेली।

0: तब बेटी से काहे ना मित्र जैसन व्यवहार कैल जाओ। तो एकरे से जुड़ल एगो वार्ता हमनी के सुन लेवल जाओ। वार्ता के विषय बा बेटियों से मित्रवत रहें। वार्ताकार बड़ी नीलिमा सिन्हा।
1: कहा जाता है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वह स्त्री ही होती है जो मकान को घर बनाती है और बिन घरने का घर नहीं होता। और स्त्री के कई रूप होते हैं, नानी, दादी, माँ और बेटी। वह हर रूप में घर को संवारती है और सजाती है। अगर घर में स्त्री के रूप में छोटी बेटी भी हो तो घर व्यवस्थित और स्वच्छ रहता है और घर धन्य धान्य से संपन्न रहता है। इसलिए तो शायद बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। घर में जब बेटी का जन्म होता है तो घर आंगन खुशियों से भर जाता है। घर के हर सदस्य उससे जुड़ जाते हैं। बेटी अपने पिता की परी, भाई की लाडली और माँ की प्यारी बन जाती है। माँ और बेटी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। जब बेटी छोटी रहती है तब माँ उसकी गुरु रहती है और जब बेटी बड़ी होती है तो माँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है। इसलिए माँ को अपनी बेटी से मित्रवत रखना चाहिए, जिससे उसे अपने मन के विचारों, भावनाओं और चिंताओं को साझा करने के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाए और इससे उसे सही मार्गदर्शन भी मिलता है। बेटी से मित्रवत रहने के लिए एक दूसरे को समझना और खुलकर संवाद करना जरूरी है। बहुत सारे बातें होती है जो एक बेटी अपने पिता की बजाय माँ से साझा करती है। ऐसे में माँ को उसकी बातों को समझ के उसे सही गलत का फर्क बताना चाहिए और माँ को बेटी को हर मुसीबत से निकलने का हौसला देना चाहिए और उसे सिखाएं कि वह सबसे बेहतर है और उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसे खुद में विश्वास रखने की सीख दें ताकि वह किसी भी मुसीबत में घबराए नहीं और डट कर सामना करें। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ लड़की का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वह मोड़ पारिवारिक जीवन में भी आ सकता है या फिर व्यावसायिक जीवन में भी, लेकिन उनमें आत्मविश्वास रहेगा तो हर मुसीबत से लड़कर निकल पाएगी। बेटी की पूरी छूट दें कि वह अपना फैसला खुद ले सके, लेकिन वह फैसला सही है या गलत इसे लेकर उसे जागरूक करना और समझाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर लिया गया फैसला बेटी के नज़र में सही है और आपकी नज़र में गलत तो उसे समझाएं और बताएं कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन बेटी को अपनी बात रखने का भी मौका दें। जब आप बात करें तो उसकी प्रति खुले रहें, आलोचनात्मक न बने बल्कि खुले दिमाग से बात करें। बड़ी बड़ी बातें करने से बचें और अपने सवालों से आरोप लगाने वाले न बने, अन्यथा आप उसे दूर कर सकते हैं। बेटी जब किशोरावस्था में हो तो उसे बताएं कि आपको याद है कि यह उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। एक या दो मुश्किल यादें साझा करें और उसे समझाएं कि उसकी माँ बनने से पहले आप खुद भी एक किशोरी थी। उसे बताएं कि आपने देखा है कि उसमें किस तरह से बदलाव आ रहे हैं और अच्छी बातों को उजागर करें। स्कूल में उसका प्रदर्शन कैसा है या अतिरिक्त गतिविधियों में उसका प्रदर्शन कैसा है या टिप्पणी करके उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। उसे लगेगा कि आप उसके बारे में कितना सोचते हैं तो वह उन बातों को साझा करने के लिए इच्छुक होगी जो बातें अच्छी ना हो रही हो। कभी कोई कारणवश से कुछ बेटियों को माँ से अगर बातचीत मुश्किल लगता है तो कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो तो उसे मजबूर या ज़बरदस्ती ना करें। उसे उन व्यस्त व्यक्ति से बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें जिन पर उसे भरोसा है। उसे बताएं कि उसके ऐसा करने से आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। आपको समझना होगा कि किशोरी बेटी आपसे खुलकर बात क्यों नहीं करती। उसे खुलकर बात करने में मदद करने का पहला कदम है। बेटियों अपने माता पिता से बात करने से जब कतराती है, जब उन्हें लगता है कि उनके माता पिता उनके काम में दखल देंगे या उनके अगले कदमों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, और जितना ज़्यादा आप अपने किशोरी को बताएंगे कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कैसा महसूस करना चाहिए या उसे क्या सोचना चाहिए, उतना ही वह आपसे बातें करने से कतराएगी। आप अपनी किशोरी को अपने पे भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां वह सुरक्षित और सहज महसूस करें। उसे खुले और ईमानदार

0: और संचार को प्रोत्साहित करने वाले तरीकों से जवाब देकर और उसे यह दिखाकर कि आप उसे समझते हैं। ऐसे में अगर उसके मन में दुविधा होगी तो वह जरूर आपसे साझा करेगी और शायद एक माँ होने के नाते आप उसे सही राह दिखा पाएंगी। आप अपनी बेटी के परवरिश में चुकना नहीं चाहती हैं तो उनके दोस्त के संग हंसी मजाक में शामिल रहें, लेकिन ये ध्यान रखें कि उसके फ्रेंड्स सर्कल में कौन कौन और किस तरह की दोस्त हैं। अगर आप एक किशोरी के नज़र से जिंदगी को देखें तो उनके भीतर जिंदगी रोज बदल रही है। चूंकि किशोर बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, इसलिए उनके आसपास के लोगों उस वृद्धि को समझ पाने में सक्षम नहीं होते। आमतौर पर दादी नानी इन बच्चों के प्रति ज़्यादा लगाव और प्रेम रखते हैं। इसकी वजह है कि वे चीज़ों को एक थोड़ी दूरी के साथ देख रहे होते हैं। किशोरावस्था में बच्चे धीरे धीरे अपने हार्मोन के वश में आ जाते हैं, जबकि बुढ़ापा का मतलब है कि आप हार्मोन्स के नियंत्रण से बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए बुजुर्ग लोग किशोरों के मानसिकता को थोड़ा समझ पाते हैं, लेकिन जो मध्य आयु के होते हैं उन लोगों को किशोरों की मानसिकता के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। वृद्धि हार्मोन द्वारा संचलित होने लगती है। अचानक उनको पूरी दुनिया काफ़ी अलग सी नज़र आने लगती है। ऐसे में उनके पास कोई समस्या आती है तो स्वाभाविक रूप से एक दोस्त तलाशती है। अगर माता पिता उनके अच्छे मित्र नहीं होते हैं तो वे अपने लिए दूसरे दोस्त बनाते हैं। चूंकि उसके दोस्त भी उसी अवस्था में और मानसिकता से गुजर रहे होते हैं, इसलिए वे की बेतुकी सलाह ही देती हैं। बेहतर स्थिति तो यह है कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वे आपके पास आएं। इसके लिए आपको उसके अधिकारी के रूप में न रह के एक मित्र के रूप में रहना होगा, क्योंकि यह अधिकारी के रूप में आप अपना बेटी को एक दिखाती हैं कि उसके जीवन में आपका अधिकार है और आप जैसा कहेंगी उसे वैसा ही करना चाहिए, तो वह आपसे दूरी जाएगी। आप अपने किशोरी के साथ निपटने की कोशिश न करें, बल्कि खुद को उसके लिए हमेशा उपलब्ध रखें। उन्हें हर चीज़ का काम के लिए जिम्मेदार बनाएं। इससे यह संदेश जाएगा कि आप उसे सक्षम और योग्य समझती हैं, और तब आप उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनती हैं।
1: अभी हमने के सुनत रहे नीलिमा सिन्हा से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता। वार्ता के विषय है बेटियों से मित्रवत रहें। बहुत फरिया फरिया के बतैली कि बेटी से कैसे व्यवहार करे के चाहिए, और सही में बेटी के अपना दोस्त की तरह व्यवहार करे के चाहिए। माँ के जैसन गार्जियन तो बनी, पर कहीं ना कहीं उनका साथ ऐसन बन के रही ताकि वो अपन मन के हर बात रउआ से साझा करस। तो नीलिमा सिन्हा के बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़तनी फिर से कीर्ति उपाध्याय से सुनल जाओ ई पूर्वी गीत।

कीर्ति उपाध्याय से अभी सुननी पूर्वी, तो पूर्वी सुनला के बाद मन करता कि काहे न तनी झूम लीही, तो चली झूमे वाला एगो झूमर सुन ले तनी।

0: हाँ, तो कीर्ति उपाध्याय से आज खूब निमन निमन हमने के गीत सुनने, तो सब गीत लाइन करा बहुत बहुत धन्यवाद। और देखी अब तो घड़ी के इशारा होता कि हमरा चले के चाहिए, तो मीनू के विदा दही, प्रणाम।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आनग्यू बैग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक भाग।

0: श्रेष्ठ भारत।
1: भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और सशक्त संविधानों में से एक है। भारत में लोकतंत्र की नींव भारतीय संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान के केंद्र में नागरिक और उनके सर्वांगीण विकास की अवधारणा निहित है। संविधान के प्रति सम्मान और नागरिकों के कर्तव्यों का पालन देश की प्रगति और समृद्धि के लिए आवश्यक है। एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए हमें अपने अधिकारों का उपभोग करते समय संवैधानिक कर्तव्यों की मशाल को भी जलाए रखना होगा। अधिकार हमें शक्ति देते हैं तो कर्तव्य हमें संस्कार प्रदान करते हैं। जब हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तब समाज और राष्ट्र में शांति और विकास की दिशा में योगदान होता है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक ही रथ के दो पहिए हैं। अधिकारों के बिना नागरिक शक्तिहीन है और कर्तव्यों के बिना राष्ट्र दिशाहीन। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है।

दिशा में योगदान होता है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक ही रथ के दो पहिए हैं। अधिकारों के बिना नागरिक शक्तिहीन है और कर्तव्यों के बिना राष्ट्र दिशाहीन। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार हमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अतः लोकतंत्र केवल अधिकारों के उपभोग का नाम नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी का भी नाम है। भारतीय संविधान न केवल नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उनके कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो वहीं अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। ये दोनों तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए दोनों का पालन करना आवश्यक है। जहाँ एक ओर मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता का एहसास कराते हैं, वहीं दूसरी ओर मौलिक कर्तव्य नागरिकों से कुछ जिम्मेदारियों की अपेक्षा करते हैं। ये कर्तव्य हमें संविधान के प्रति सम्मान, देश की अखंडता और सामाजिक दायित्व को निभाने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को राज्य के द्वारा दिए गए वे अधिकार हैं जिनकी रक्षा संविधान स्वतः करता है। इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहा गया है, तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की बात कही गई है और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में सेना और विद्या संबंधी सम्मानों को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया है। इन अधिकारों में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार शामिल है, जो नागरिकों को किसी भी प्रकार के भेदभाव से संरक्षण प्रदान करता है और एक गरिमामयी जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकारों की गारंटी है, जिसमें निहित है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्वक सम्मेलन की आजादी, संघ अथवा सहकारी समिति बनाने की आजादी, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की आजादी, देश के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, कोई भी व्यापार या पेशा चुनने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है, तो वहीं अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का उपयोग करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनका दुरुपयोग किया जाए। एक नागरिक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन अधिकारों का उपयोग सकारात्मक रूप से करें और समाज में शांति, समृद्धि और समानता की दिशा में योगदान दें। महात्मा गांधी ने भी कहा है, अधिकार केवल स्वतंत्रता की ओर नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी की ओर भी मार्गदर्शन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाया जाता है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन पर रोक लगाया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार के शोषण पर पूर्ण विराम लगाता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। साथ ही धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने की अनुमति भी प्रदान करता है। यह अधिकार नागरिकों को अपने धर्म, भाषा और संस्कृति का पालन करने और संरक्षित करने का अधिकार देता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने की बात कही गई है, तो वहीं अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह आम नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च

न्यायालय तक जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। यह अधिकार नागरिकों को अदालतों में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन महसूस करता है तो वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से न्याय की मांग कर सकता है। इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन यह अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और यदि इनके उपयोग में समाज की सामान्य भलाई को ध्यान में नहीं रखा जाए तो ये अधिकार समाज में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। मौलिक अधिकार जहां नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो उन्हें जीवन की रक्षा का आश्वासन देते हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं और राज्य द्वारा किसी भी प्रकार से उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर मौलिक कर्तव्य उन जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं जो नागरिकों के कंधों पर समाज और राष्ट्र के प्रति होती है। यह कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान ने नागरिकों से 11 कर्तव्यों की अपेक्षा की है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। साथ ही उन प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। श्रोताओं, बचपन में सुनी एक कहानी याद आ गई, आइए संक्षिप्त में सुनते हैं। एक मनचला लड़का था जो सड़क पर छड़ी घुमाते हुए, गीत गुनगुनाते हुए आगे चला जा रहा था और अपनी ही धुन में, ना दुनिया से कोई लेना ना कुछ देना। सामने से एक बुजुर्ग आ रहे थे। अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे संभालते हुए वह आगे बढ़ रहे थे। जब वह और आगे बढ़े तो वह लड़का उनके सामने था और छड़ी घुमाए जा रहा था। बुजुर्ग ने कहा, रुको। लड़का सुना और कहा, यह मेरा हाथ है, यह मेरी छड़ी है, मैं घुमाऊं या रोकूं, यह मेरी मर्जी है, आप कौन होते हो बोलने वाले। इस पर बुजुर्ग ने कहा, तुम सही कहे, यह तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम स्वतंत्र हो कि तुम क्या करो, पर तुम्हारी स्वतंत्रता की एक सीमा है और वह यह है कि तुम अपनी छड़ी वहीं तक घुमा सकते हो जहां से मेरी नाक शुरू होती है। अर्थात तुम छड़ी घुमाओ पर मेरी नाक या मुझे चोट नहीं आनी चाहिए। बुजुर्ग ने समझाते हुए बच्चे को कहा और मुस्कुराए, बच्चा, यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम कैसे जियो, पर तुम्हें अपने कर्तव्य का भी ध्यान हो कि तुम्हारे व्यवहार से किसी को भी क्षति या दुख ना हो। अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी पहचानो और पालन करो। यह सुनकर बालक ने माफी मांगते हुए ऐसी गलती आगे ना करने, कर्तव्य का पालन करने की बात को बुजुर्ग से दोहराया। इस कहानी से आखिर हम क्या सीखते हैं? अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। बिना कर्तव्य पालन के अधिकारों का उपभोग अराजकता की ओर ले जाता है, जबकि बिना अधिकारों के
कर्तव्य बोझ बन जाते हैं। संविधान निर्माताओं ने

0: जिस कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी वह तभी संभव है जब हम सर्वे भवन्तु सुखिना के प्राचीन भारतीय दर्शन को अपने मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से आत्मसात करें। आज के दौर में हम अक्सर अधिकारों के प्रति अति सजगता और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता देखते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नफरत फैलाना इस बात का प्रमाण है कि कर्तव्यों की कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही है। बिना कर्तव्य बोध के अधिकार स्वच्छंदता में बदल जाते हैं, जो समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। मेरा अधिकार यह है कि कोई मेरी शांति भंग न करे, लेकिन यह मेरा कर्तव्य भी है कि मैं दूसरों की शांति में खलल न डालूं। एक दूसरे का परस्पर सम्मान करें। एक विकसित समाज वह है जहां लोग अधिकारों की मांग से पहले अपने कर्तव्यों का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें स्वच्छ वातावरण का अधिकार है तो प्रदूषण न फैलाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। अधिकार व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं, जबकि कर्तव्य सामूहिकता और राष्ट्रवाद को। राष्ट्र की प्रगति के लिए इन दोनों का संगम आवश्यक है। मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी की याद दिलाता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के संचालन के लिए मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकार दोनों के मध्य संतुलन अनिवार्य है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार हमें लेने की शक्ति देते हैं तो कर्तव्य हमें देने और समाज के प्रति समर्पित होने का भाव सिखाते हैं। एक जागरूक नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, क्योंकि अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों के संसार में ही सुरक्षित रह सकता है। भारतीय संविधान की आत्मा भी इसी संतुलन पर टिकी है कि यदि हम अपने अधिकारों का आनंद लेना चाहते हैं तो यह हमारी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं। संस्कृत श्लोक में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यह पालयेत धर्मम सह पालयेच्छो परमम सुखम। अर्थात धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं धर्म द्वारा संरक्षित रहता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह परम सुख को प्राप्त करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि जैसे धर्म का पालन करने से सुख प्राप्त होता है, वैसे ही अपने कर्तव्यों का पालन करने से समाज और राष्ट्र की रक्षा होती है। वर्तमान संदर्भ में हम कह सकते हैं कि संविधान की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं संविधान द्वारा संरक्षित रहता है। जो व्यक्ति संविधान का पालन करता है वह परम सुख प्राप्त करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अपने अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी से करें, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र तभी बन सकता है जब नागरिक अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं देश गान। मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का नाम है देश प्रेमी।
1: नफरत

0: फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, इसी के साथ देश गान समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जख्मी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज में। गौहर कानपुरी की लिखी इस रचना को तर्ज दिया है बब्बी लहरी ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है कलाकार फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है इंदिवर ने और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं रॉकी फिल्म का ये गीत। आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार।

श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं चलते चलते फिल्म का ये गीत। शब्द हैं अमित खन्ना के और संगीत बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं आखिरी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं शाही लुधियानवी और संगीतकार रवि।

0: कभी कभी।
1: श्रोताओं, श्रेया घोषाल की आवाज में आइए सुनते हैं जिस्म फिल्म का ये गीत। नीलेश मिश्रा की लिखित रचना को दर्ज दिया है MM करीम ने।

श्रोताओं वक्त की कमी के कारण गीत हम पूरा नहीं सुना पाने इसका हमें खेद है। श्रेया घोषाल की आवाज में गाया इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोमीटर पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा रखें, जल्द TRE4 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया विधि सम्मत होगी। पटना में TRE4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी तत्वों के उकसावे में आकर अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन न

0: करें। इससे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समीप प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जुलूस निकालने के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। जानकारी के अनुसार शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के लिए देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों में भेजा जाएगा। सुश्री सिंह ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक सोमवार और बुधवार को बैठक होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज बुलाई हड़ताल का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने हड़ताल का समर्थन किया है। ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदेश में भी अधिकांश स्थानों पर दवा दुकानें आज बंद रखी गई हैं। हालांकि इस दौरान सभी प्रमुख फार्मेसी श्रृंखलाएं, अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना के तहत इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिन्हित जनजातीय बहुल गांवों में आज भी शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। यह आयोजन 25 मई तक चलेगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकांश स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर आज आंधी, पानी और वज्रपात की आशंका जताई है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में SSB की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें 227 जवानों ने दीक्षांत प्राप्त किया। इस अवसर पर IG ट्रेनिंग अनुसुईया रण सिंह साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। अररिया जिले के जोगबनी स्थित भारत नेपाल सीमा चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की है। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल अंतर्गत मकराइन, डालमिया नगर और अकोढ़ी गोला क्षेत्र से पुलिस ने अवैध बालू खनन से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। SDM नीलेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC अधिनायक अनुदेशक हवलदार इंस्ट्रक्टर के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 की आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ रोजगार सूचना समाप्त हुआ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम सुनते हैं दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल UL PGM MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ

0: मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है मौसम विभाग ने

0: अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सबदंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार।

0: क्या हैं। इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से, राजेश पी कारिया जी का, लिखते हैं।
0: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
0: जी
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी, श्रोताओं कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
0: जी
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
0: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
0: जी
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
0: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
0: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
0: जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी,
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है, तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है, तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर और audio@cieet

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: लो माली काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ माली काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 KHz पर। अगले कार्यक्रम से पहले थोड़ा प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की प्रथम सभा समाप्त होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:28 से। जय हिंद।

0: की सहेली।
1: कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ। क्या बात है।
2: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
1: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
2: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
1: अच्छा,
2: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
1: अरे वाह।
2: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
1: क्या बात है, क्या बात है। जब चेहरे की चमक बता रही है
2: बिल्कुल,
1: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी हैं।
2: बिल्कुल।
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
2: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
1: अच्छा।
2: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, तब जाओ वहां तक पहुंचो। आप एक मंदिर है जो वहाँ का प्रसिद्ध, तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहाँ पे।
1: अच्छा।
2: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
1: अरे वाह।
2: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
2: बिल्कुल। और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए।
1: हाँ।
2: क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है।
1: वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
2: बिल्कुल,
1: तो
2: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है
1: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद। इतनी जगह घूम के आई हो,
2: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखी, बहुत
1: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है हमें, नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
2: हैं, तरह तरह के व्यंजन आपको खाने के लिए मिलते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है। मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहां बनेगी।

0: लेकिन फर्क होता
1: स्वाद
0: है,
1: बिल्कुल फर्क होता है। हाँ,
0: क्योंकि पानी का बनाने वाले का तरीके तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो
1: अच्छा
0: यात्रा
1: है।
0: करके आपके दिमाग को सुकून मिला है मैं ऐसा मानती हूँ, और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है तो आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
1: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
0: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: पर काटती बहुत बुरा है।
1: अरे काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजें, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: सद्भावना, अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल, है ना। और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गई है, है ना जी। और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं।

0: आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें,
0: हाँ,
1: जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत मजे।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगी दाल पीठा, हमें खिलाएंगी भी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट
1: खाएगी, भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की 1/3 खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे परागकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पे ही निर्भर करता है। यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। 1 पाउंड लगभग 1/2 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
1: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती है, और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा भी तुमने शुरू में बताया भी था।
1: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी, और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया, और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था, और उनके संरक्षण को, उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है। और

0: मक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वह है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं, तो इस बार का विषय यह है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटेगी
0: करेगी, बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं, अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिए तरीके से इस चीज को लिखा है,
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया, जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगी, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खियां, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का।
0: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में,
1: जी
0: हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और
1: जी
0: उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार,
1: अरे बहुत
0: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियां, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे
1: जी।
0: में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सकें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ तीन होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा
1: अच्छा
0: है।
1: जी। तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो
0: नाम
1: तीन भाई थे
0: हाँ
1: मिलके। हाँ।
0: देखिए
1: और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक,
1: जी इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: बहुत
1: भी।
0: मुश्किल है।
1: तो इसमें एक या दो ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: हाँ और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके
1: जी
0: अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
1: जी। और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
0: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तांचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
1: बिल्कुल। और तांचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
0: हाँ बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं या विवाह समारोह के अवसर हैं या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई।

0: साड़ी खरीदने की
1: कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
2: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का, तो हमसे शामिल करें।
0: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
2: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था

0: श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं, इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं, मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है इसे हिंदी बोलना, वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
1: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे, आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
0: और कोई आसान तरीका भी हो
1: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
0: जी बिल्कुल, और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्य प्रणाली से हुई है, और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े
1: हैं। बहुत गहरी बात है आरती, अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
0: बिल्कुल,
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझते समझ आता है ना, जिस तरीके से जिस भाषा को जानते हैं,
1: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने तो देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है, लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हो, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल, और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल, और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है, और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
0: बिल्कुल, और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये कभी मत मन में लेकर आइए।
1: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
0: जी, और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
1: क्या
0: है।
1: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं।

0: वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक। उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल, आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा मैं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती
1: जी,
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती है
1: सबका नजरिया
0: मायने रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं ना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से। जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा में
0: कितना अच्छा लगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे
0: हैं, तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
1: बिल्कुल जोड़ती है, और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
0: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शौक रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, अपने मन से सीखिए।
0: हाँ।
1: आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
0: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती तो हम सच में एकदम से कहने लगते कैसे इतनी भाषा बोल लेते हैं,
0: चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल बढ़ जाता है।
0: देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

घटलाई क्या छुपा के, घटलाई क्या छुपा के, बिन कारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बत

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ,
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल के आप पर
1: उछल कर आप पर आएगा। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम,
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं। अगर आपने इनको छेड़ दिया,
0: बिल्कुल
1: ऐसी ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो पीले रंग का होता है वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता, जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है।
1: हाँ।
0: और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे 2-3 और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कहे ना श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है, तो वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, 2-3 भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी,
0: भाषा भाषा
1: विदेशी भाषा है।

0: है या देशी भाषा
1: अगर
0: है।
1: आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या
0: हाँ
1: कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे,
0: हाँ चलिए,
1: बहुत जरूरी
0: आपको
1: है
0: भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए,
1: जी
0: लेकिन भाषा भाषा है, हमें
1: बिल्कुल,
0: हर भाषा का,
1: भाषा
0: विश्व,
1: कभी बुरी नहीं हो
0: हमें
1: सकती
0: वैश्विक भाषाएं
1: जी,
0: जितनी भी
1: बिल्कुल
0: हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती, भाई हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं।
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना।
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो। जी
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोताएं जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहां सद्भावना होती है वहां रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने

0: देखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
1: बिल्कुल,
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
0: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और

0: बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भुनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़ पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए और फिर आराम से निकाल के खाइए।
1: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकुआ और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे मिल जाएगी
1: तो बनाने की मैं भी
0: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी है
1: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है,

0: ताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
1: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
0: जी
1: अल्मोड़ा हुआ।
0: अरे गजब, पहाड़ों पर।
1: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
0: जी,
1: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
0: अच्छा।
1: तब तक शुरू नहीं हुआ था
0: जी।
1: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हम भी जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
0: जी, जी।
1: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब। तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
0: जी,
1: वो एक अलग अनुभव था
0: जी।
1: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ
0: हाँ।
1: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब घूमने जाओ तो अलग बात है
0: जी,
1: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो तो वो उसके लिए तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
0: अच्छा,
1: 86 में।
0: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
1: और वो भी सब भी देखा मैंने। वो पंत जी, अज्ञे जी वहां पे रहे और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
0: बिल्कुल
1: यस। तो ये सब भी
0: उदय शंकर जी का
1: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
0: जी।
1: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
0: रहते कैसे।
1: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं
0: जी।
1: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
0: पहाड़ों में
1: पहाड़ों में कैसे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये था
0: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
0: जी,
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे जिंदगी

0: चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटोपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे था, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है उस
1: हाँ
0: पे, वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम, है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: और तब तो लंबी लाइनें
0: हाँ,
1: हुआ
0: वो
1: करती
0: लंबी लाइनिंग
1: थी।
0: हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटोपिल की थी वहां रहे, और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटोपिल से किंग सर्कल आना वहां से पैदल,
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस

0: किंग सर्कल आना, वहां से पैदल,
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
1: हाँ,
0: में।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
0: हाँ,
1: ढाल लेता
0: तो फिर
1: है
0: वो लोग अपने आप वो आपको उतार
1: जी
0: देते
1: जी
0: हैं। तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे
0: उतार तो
1: जी।
0: ये
1: तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहां लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी
0: चरम
1: जी
0: पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
1: जी
0: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त चीजें
1: बजाया करते थे
0: बजाया
1: उसको
0: करते थे लोग। तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो और
1: बिल्कुल।
0: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा। और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं, कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार रहा,
1: बल्कि
0: बहुत
1: हमने
0: प्यार।
1: उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
0: जी,
1: तब
0: सही
1: मैं था
0: सही।
1: नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में, युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जो
1: जी
0: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या
0: हाँ
1: बात
0: ना,
1: है,
0: तो वो
1: क्या
0: किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
1: पेडर रोड
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
1: जी
0: मैं गया। और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था। इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो
1: जी
0: रोज रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे, फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे,
1: जी
0: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह
0: वरना
1: वाह
0: अक्सर होता है
1: वाह
0: कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ,
1: जी जी
0: है ना।
1: जी जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे, ये
0: नहीं, ये जो जिंदगी की
1: जो
0: किताब है,
1: जिंदगी की किताब है। वाह
0: हाँ,
1: वाह वाह
0: तो ये वो
1: वाह।
0: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए। हाँ,
1: अच्छा,
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ,
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और
1: जी
0: वो गजल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती।
1: ओ
0: तो वो
1: हो,
0: गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
1: जी। ये जो जिंदगी की किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, मैं
1: वही
0: उसको,
1: आप
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ एक।
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी की किताब है

सा ख्वाब है कहीं जान लेवा अजाब है ये जो जिंदगी की

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और ये
1: बिल्कुल।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ ऐसे कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद,
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले थे, ये गजल थी वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर। तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की, सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील
1: नबील,
0: था
1: नबील,
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या एक नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे।
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: दो
0: में
1: घंटा
0: गाया।
1: रहा, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो वो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त
1: हाँ,
0: ने ये बात
1: ये मेरे
0: कही
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो बोल, ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा नाम है
1: हाँ
0: अजय
1: हाँ
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ, गाने गए, मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे।

0: तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक पे हो, तो ये लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया,
1: हाँ बिल्कुल,
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया या कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया, हाँ ये तो सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ फिर एक बार। फिर उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए बजरू साहब उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
1: जी
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह
0: तो ये
1: वाह,
0: मजरूह
1: मजरू
0: सुल्तान
1: जैसे
0: वारिस साहब का
1: बड़े
0: आशीर्वाद था,
1: शायर की
0: है
1: बात है
0: ना,
1: ये,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है। पंकज जी की आवाज में ये गजल
0: जी
1: सुनते हैं
0: जी
1: हम।
0: जी

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: पटना, गंगा मैया की लहरों से रवानी और मौर्य नगरी की इस हसीन शाम में मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और होस्ट दिव्या,
1: और सुलगते जोश और धड़कते अरमानों के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रफत सलीम। स्वागत है बिहार के तमाम जाबाज और बेमिसाल युवाओं का आपके अपने कार्यक्रम युवावाणी में।
0: रफत, जब शाम ढलती है और पटना की सड़कों पर चाय की टपरियों पर महफिल जो सजती है, तो हमारे युवाओं का जोश देखने लायक होता है।
1: बिल्कुल दिव्या, क्योंकि बिहार के युवाओं के रगों में सिर्फ खून नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने का जुनून दौड़ता है,
0: और इसी जुनून को आवाज देने हम आते हैं युवाणी लेकर। तो रेडियो की सुई को जरा भी डोलने मत दीजिएगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि आज की शाम होने वाली है जोश से भरपूर।
0: आज इस विशेष अंक में हम बात करेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर। सुमित्रानंद पंत जी की जयंती, हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ, प्राकृतिक कवि पंत जी, उनकी कलम से निकली हर रचना मानो सारिता, पहाड़ और कुंजों को आवाज देती है। पल्लव, ग्राम्या, युगंत, उनकी अमर कृतियां साहित्य जगत को दिशा देती ही रहेंगी। उनके योगदान को सादर नमन।
1: उसके बाद बात होगी विश्व मधुमक्खी दिवस की। छोटी सी मधुमक्खी लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, परागण में उनकी भूमिका, खाद्य सुरक्षा में योगदान जानेंगे विस्तार से।
0: और विपिन चंद्र पाल जी की पुण्यतिथि, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया और

0: अंग्रेजों के खिलाफ जन जागरण किया। बंगाल के इस क्रांतिकारी नेता के विचार आज भी प्रासंगिक है।
1: उसके बाद बढ़ेंगे हम विश्व माप दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की तरफ। क्या आप जानते हैं श्रोताओं कि हर रोज हम जिस मीटर, किलोग्राम या किलोवाट का उपयोग करते हैं उनके मानक कैसे तय होते हैं? हम बताएंगे अद्भुत और मजेदार तथ्य, जैसे कि एक सेकंड की परिभाषा कैसे बदली या फिर इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम अब रहस्यमय क्यों हो गया। और आज है बुधवार और अपने माइक्रोफोन को घुमाएंगे पटना के ऐतिहासिक स्मारक गोलघर में।
0: बीच बीच में सुनते रहेंगे मधुर संगीत पुरानी यादों से लेकर नए रागों तक,
1: और हम आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी बताएंगे।
0: तो बने रहिए हमारे साथ युवाणी पर, जहां आपकी सोच को मिलती है नई उड़ान। और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गाना फिल्म बचना है हसीनों से, जिसे गाया है लकी अली और श्रेया घोषाल ने।

0: मधुर गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवावाणी में। अब हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के उस कोमल गांव में जहां बादल पहाड़ों को चूमते हैं, जहां नदियों की कलकल में कविता बहती है और जहां एक बालक की आंखों ने पहली बार इस दुनिया को देखा था। हाँ, वो स्थान है कौसानी और वो बालक था सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य के उस सूर्य का नाम जिसने छायावाद को चरम उत्कर्ष दिया।
1: आज 20 मई है, इन्हीं महान कवि की जयंती। तो हम उनके जीवन, उनकी कलम, उनकी वीणा और उस अमर सौंदर्य को नमन करेंगे जिसे उन्होंने शब्द दिए।
0: 20 मई 1900, ब्रिटिश शासन की वो काली रात जब भारत कराह रहा था, लेकिन कुमाऊं की हरी भरी घाटियों में कौसानी नामक छोटे से गांव में एक घर में कोई नन्ही किलकारी गूंजी। ये थे सुमित्रा नंदन पंत, पिता पंडित गंगादत्त पंत, एक साधारण किसान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।
1: लेकिन बचपन सुखद नहीं था। माता का स्नेह उन्हें कम मिला। सौतेली माँ के कठोर व्यवहार ने उनके मन को संवेदनशील बना दिया। कहते हैं वे अकेले जंगलों में चले जाते, घंटों पेड़ों से बातें करते, नदियों को देखते और फूलों से फुसफुसाते। वही एकांत उनकी पाठशाला बना और प्रकृति उनकी गुरु।
0: मैं नीर का नीरव न भूं, मैं नीर का नीरव न भूं, मैं एकांत का विहार हूं, मेरा गीत प्रकृति का ताना बाना है, मैं सुमित्र, मैं अनंत, मैं पंत हूं।
1: हाँ श्रोताओं, यह बालक आगे चलकर सुमित्रानंदन कहलाया। सुमित्र अर्थात सुहद या सुंदर मित्र, और आनंद से उनके नाम में सचमुच हिंदी जगत को आनंदित किया।
0: प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और नैनीताल में हुई, फिर वे आगरा और इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज पहुंचे। यहीं उनका संपर्क महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जैसे दिग्गजों से हुआ। ये वही चार नाम हैं जिन्हें हम छायावाद के चार स्तंभ भी कहते हैं।
1: पंत जी अंग्रेजी और संस्कृत के गहरे विद्वान थे, लेकिन उनकी आत्मा तो हिंदी में ही बसती थी। उनका पहला कविता संग्रह वीणा 1918 में आया, तब वे मात्र 18 वर्ष के थे। कल्पना कीजिए, 18 साल की उम्र में एक कवि प्रकृति के इतने गहरे रहस्यों को बयान कर रहा हो।
0: श्रोताओं, छायावाद शब्द से आप क्या समझते हैं? बहुत सरल शब्दों में कहें अगर, तो जब मानवीय मन की छाया प्रकृति पर पड़ती है और प्रकृति उस मन का दर्पण बन जाती है, वही छायावाद है। पंत जी ने इस शैली को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे एक आध्यात्मिक ऊंचाई दे डाली।
1: उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पल्लव, ग्रांथी, गुंजन, युगांतर और गाम्या का नाम है बड़े

0: सम्मान से लिया जाता है। लेकिन जिस कृति ने उन्हें अमर कर दिया वह है लोकयातन। यह एक महाकाव्य है जहां उन्होंने सामान्य मनुष्य के जीवन, उसके सुख दुख और सौंदर्य चेतना का ऐसा चित्रण किया जैसा बहुत कम कवि कर पाए।
1: धरती की धूल चढ़ी ललाट पर, आंखों में चमक रही किरणें, नभ से झरती स्नेहमयी वीणा, मेरा मन बन गया मंदिर पावन। जीवन की ज्वाला सुलग रही, सुख के स्वर में दुख का तार बजा, मैं उस गीत को गाता फिरूं जो प्रकृति ने अपने मन में बसाया।
0: शब्द साधारण है लेकिन भाव असाधारण। ऐसा लगता है जैसे पंत जी ने हर कण में देवत्व देखा हो।
1: लेकिन श्रोताओं, पंत जी केवल सौंदर्य के उपासक नहीं थे। जब देश गुलाम था तब उनकी कलम में ज्वाला उगली, उनकी कविता वीणा में राष्ट्रीयता की तीव्र चेतना है। वे लिखते हैं, भारत की भाव भूमि पर खेल रही आजादी की पवन, भारत की भाव भूमि पर खेल रही आजादी की पवन, तोड़ डालो यह जंजीरें, आओ मिलकर गए नया जीवन का।
0: स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी कविताएं युवाओं में जोश भरती थी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से वे प्रभावित थे लेकिन राजनीति से दूर रहे क्योंकि उनका हथियार था कलम।
1: अभी इस पर बात आगे और भी जारी रहेगी, मगर सुनते हैं आज का दूसरा ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना फिल्म परिणीता से। आवाज थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।
1: और हम बात कर रहे थे सुमित्रा नंदन पंत की जयंती पर। आजादी के बाद उनकी कविता में एक नया मोड़ आया। स्वर्ण किरण और युगांतर में उन्होंने नए भारत के निर्माण का आह्वान किया। वे चाहते थे कि हम प्रकृति को नष्ट ना करें, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर चलें। आज के पर्यावरण संकट के समय उनकी यह बात और भी प्रासंगिक हो जाती है।
0: प्रिय श्रोताओं, एक सच्चा कवि अपने समय से बहुत आगे होता है। पंत जी का ये योगदान देर से ही सही, लेकिन पूरे सम्मान के साथ सराहा गया।
1: 1960 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 1968 में उनकी अद्वितीय कृति चिदंबरा के लिए मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी के लिए यह गौरव की बात थी।
0: 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी। साथ ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी वे सम्मानित हुए। चितंबरा क्या है? यह एक अद्भुत कृति है जहां वे लिखते हैं, तेरा मंदिर है चितंबरा, तू आदि निधान अकालमय, तू स्वयं ज्योति, तू स्वयं आनंद, तुझमें खो जाऊं करुणामय। ये कोई साधारण कविता नहीं, यह आत्मा की यात्रा का महाकाव्य है।
1: अब आपको सुनाते हैं एक छोटा सा संस्मरण। कहते हैं कि पंत जी बहुत सादा जीवन जीते थे। कभी चप्पल नहीं पहनी, सिर पर गांधी टोपी और हाथ में छड़ी। अल्मोड़ा के पास मुखानी गांव में वे रहते थे, जहां आज भी उनकी यादों को सहेज गया है।
0: एक बार किसी पत्रकार ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? पंत जी मुस्कुराए और बोले, जहाँ बादल मुझसे मिलने आते हैं वही मेरा घर है। उनकी पत्नी का नाम था राजेश्वरी देवी, जिनके प्रति उनके मन में गहरा प्रेम और सम्मान था।
1: एक और किस्सा, वे घंटों पैरों से बातें किया करते थे। गांव वाले उन्हें पागल कवि कहकर पुकारते थे, लेकिन पंत जी कहते, पैर मेरे मित्र हैं, ये मुझे समझते हैं। श्रोताओं, हर गीत की एक अंतिम सांस होती है। 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने इस भौतिक दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन क्या सच में कोई कवि मरता है? नहीं, उनके शब्द आज भी बोलते हैं।
0: उत्तराखंड सरकार ने उनके घर पंत भवन को संग्रहालय बना दिया है। उनके नाम पर कई विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना हुई, लेकिन उनकी सच्ची याद तो उनकी कविताओं में ही बसती है, जो आज भी हर स्कूल, हर कॉलेज, हर हिंदी प्रेमी के दिल में धड़कती है।
1: तो आज उनकी जयंती पर हम संकल्प करें कि हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उस अदृश्य सौंदर्य को पहचानेंगे जिसे पंत जी ने अपनी आंखों से देखा था। और अंत में उन्हीं के एक अमर पंक्ति, छोटा सा जीवन बड़ा संसार, छोटा सा जीवन बड़ा संसार, फिर भी सुंदर फिर भी प्यारा, मैं गाता रहूं हर सांस में, यही मेरा है सहारा।
0: श्रोताओं, सुमित्रा नंदन पंत को हार्दिक श्रद्धांजलि। हमसे जुड़े रहिए और हिंदी साहित्य के इस महान यात्री को याद कीजिए। और आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये अगला गाना।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म साथिया से ये गीत, जिसे आवाज दी है ऋचा शर्मा, महालक्ष्मी वैशाली ने।
1: आज तारीख है 20 मई। बाहर झांकी है, यदि आपके आंगन में कोई फूल खिला है तो संभव है कि एक छोटी उड़ने वाली मेहनती आत्मा उस पर बैठी हो। नारंगी और काली धारियां, पारदर्शी पंख। हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी की, और आज पूरा विश्व उसी के नाम पर एक विशेष दिन मना रहा है, विश्व मधुमक्खी दिवस।
0: लेकिन क्यों सिर्फ एक कीड़े के लिए पूरा दिन? सोचिए, यदि इस धरती से सारी मधुमक्खियां अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा? वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन प्रसिद्ध है, यदि मधुमक्खियां नष्ट हो गईं तो मानवता के पास जीने के लिए केवल 4 वर्ष शेष रह जाएंगे। चौंका देने वाली बात है ना? लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक कड़वा सत्य है।
1: मधुमक्खी सिर्फ शहद बनाने वाला कीड़ा नहीं है, ये हमारे खाद्य तंत्र की सबसे अहम कड़ी है। आपने सुबह का नाश्ता किया? संतरा, सेब, तरबूज या काजू बादाम? जानते हैं, हर 3 बूंद भोजन में एक सीधे परागण यानी पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी की एहसानमंद है। बिना मधुमक्खी के ना फूल खिलेंगे, ना फल लगेंगे, ना सब्जियां पनपेंगी। हमारी थाली में जो रंगीन और पौष्टिक चीजें हैं, उनमें से अधिकतम को पाने का श्रेय इस छोटे से प्राणी को जाता है।
0: और यह सिर्फ खाना नहीं है, मधुमक्खी हमें सिखाती है निस्वार्थ कर्म का पाठ। एक चम्मच शहद बनाने के लिए एक मधुमक्खी को अपने जीवन भर से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उसे लगभग 2 लाख फूलों से रस इकट्ठा करना पड़ता है, और इतनी दूरी तय करनी होती है जो पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा के बराबर है। और बदले में वो फूलों को जीवन दान पराग देती है। एक आदर्श समाज जहां हर कोई सिर्फ लेता नहीं बल्कि देकर भी जाता है।
1: पर आज ये संतुलन टूट रहा है। कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव, जंगलों को काटना, बदलती जलवायु और बढ़ता प्रदूषण, ये सब मधुमक्खियों के परिवार को तितर बितर कर रहे हैं। दुनिया भर में मधुमक्खियों की संख्या खतरनाक दर से घट रही है। इस घटनाक्रम को कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं, यानी मधुमक्खियां अपने छत्ते छोड़कर बिना लौटे चली जा रही हैं, और उनके साथ हमारी फसलों का भविष्य भी।
0: लेकिन अभी सब कुछ नहीं हारा है श्रोता साथियों। विश्व मधुमक्खी दिवस हमें याद दिलाता है कि छोटे से बदलाव से बड़ा असर पैदा किया जा सकता है। अगर हम देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारी भूमिका क्या हो सकती है इसमें, तो पहला ये कि अपनी बालकनी या गमले में कम से कम एक देसी फूलों का पौधा लगाइए। तुलसी, गेंदा, सूरजमुखी, ये मधुमक्खियों का मुफ्त भोजनालय है।
1: दूसरा, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करिए। जहर मधुमक्खी तक पहुंचता है और वहां से आपके भोजन तक।
0: तीसरा, स्थानीय शहद खरीदिए। देसी मधुमक्खी पालकों का साथ दीजिए। विदेशी शहद के चक्कर में अपनी जैव विविधता मत खोइए।
1: चौथा और अंतिम, मधुमक्खी के बारे में डरिए मत। ये बिना छेड़े कभी नहीं डंग मारती। इसे समझिए, ये आपकी मित्र है।
0: तो आज 20 मई, जब स्लोवेनिया के एंटोन यांचा, जिन्होंने आधुनिक मधुमक्खी पालन की नींव रखी, के जन्मदिन पर पूरी दुनिया जूम कर रही है, हम भी संकल्प लें।
1: इस छोटी उड़ान भरने वाली महान आत्मा को सलाम करें। आइए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हरित धरती बनाने का वादा करें। मधुमक्खी केवल एक कीट नहीं, वो प्रकृति का सिपाही, किसान का मित्र और मिठास का दूत है।
0: तो कल सुबह जब कोई भिनभिनाता प्राणी आपकी खिड़की के पास से गुजरे तो उसे भगाइए मत, उसे एक पल रुकने दीजिए, क्योंकि उसकी गुंजन में ही छिपी है हमारी धरती की जीवन रेखा। विश्व मधुमक्खी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुनगुनाते रहिए दुनिया, हर फूल पे, हर बगिया में। सुनते हैं दूसरा ट्रैक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। अब कार्यक्रम में समय हो चला है हमारे वेडनेसडे यानी बुधवार के स्पेशल सेगमेंट घूमता माइक्रोफोन का। और आज हमारा माइक्रोफोन घूम के पहुंचा है पटना के ऐतिहासिक स्मारक गोलघर पे। तो आइए जानते हैं वहां के बारे में।
4: साथियों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश।

0: यानी बुधवार के स्पेशल सेगमेंट घूमता माइक्रोफोन का। और आज हमारा माइक्रोफोन घूम के पहुंचा है पटना के ऐतिहासिक स्मारक गोलघर पे। तो आइए जानते हैं वहां के बारे में।
1: साथियों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। आज हम लोग पहुंचे हैं पटना के गोलघर में। पटना का गोलघर ऐतिहासिक है और हमारी विरासत है। इसे जैसा कि आप जानते हैं, अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था, बाद में इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया। आइए जानते हैं गोलघर के बारे में, यहाँ जो मौजूद गार्ड हैं उनसे कि उनका अनुभव क्या रहा, वो हाल के वर्षों में क्या देखे। सबसे पहले अपना परिचय दें आप।
2: मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, गुमपुर थाना के रहने वाले हैं, गाँव पर बागरपुर। उसमें स्कूली बच्चे आते हैं, घूमते फिरते हैं और इसीलिए पार्क है, झुलुआ है, एंजॉय अपना बच्चा घुमाने फिरने के लिए।
1: कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप और कैसा अनुभव अभी तक का रहा है आपका?
2: अभी तो हमको 2 महीना हुआ है, 2 महीने से अभी ड्यूटी कर रहे हैं। 2 महीने में यह बच्चे उच्चे घूम रहे थे।
1: कितना टिकट है और जो बच्चे आते हैं उन लोग उत्साह किस प्रकार का देखते हैं आप?
2: 10 रुपये टिकट है घूमने फिरने के लिए, खुलता है तो।
1: पार्क का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा दिखाई पड़ रहा है कि उसमें और भी ध्यान देने की जरूरत है, इस बारे में क्या कहें?
2: ध्यान तो देना ही चाहिए सर, ताकि इधर उधर बच्चे गंदगी भी थोड़ा मना हो जाता है तो खेती करते हैं, इसलिए ध्यान तो देना ही पड़ता है। जरा बच्चा के आता है, स्कूल में बच्चा आते हैं लेके आते हैं, ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाता है। इसी पर इसे गोलघर घूमिए फिरिए, झुलुआ है, झूलिए, घूम लीजिए।
1: लोगों की सुविधाएं बढ़ाई जाए, पर्यटक ज्यादा आए, इसके लिए यहाँ पर और क्या करने की आवश्यकता है?
2: यदि रेजर लाइट शो चालू होने वाला है, बोले सर के 2 महीना में चालू कर दिया जाएगा रेजर लाइट, 50 रुपये टिकट होता है।
1: मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सीढ़ियों पर अभी ग्रिल लगा है और ये शायद 2017 के आसपास से बंद है, इसका भी कुछ वजह है और ये कब तक शुरुआत होने की उम्मीद है, कुछ जानकारी है आपको?
2: ये सर तो बोले कि 2017 से बंद है, ऐसा सीढ़ी भी डैमेज भी है, रिपेयरिंग भी करना है, इसीलिए बंद कर दिया गया है। कुछ दुर्घटना हो गया इसीलिए सरकार भी बंद कर रहा है।
1: शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।
2: थैंक यू सर।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आज हम लोग आए हुए हैं पटना के गोलघर में। और यहाँ गोलघर आने के बाद देखिए कि छोटे छोटे स्कूली बच्चे जो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, तो इन्हें देखने के बाद हमें अपने बचपन की वो दिन याद आ गए। तो इन लोग के साथ एक सर हैं, हम सर से जानेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हुए हैं और बच्चों में कितना कुछ उत्साह है।
4: जी, मेरा नाम धनंजय कुमार गुप्ता है, मैं UMS मऊ धनेशपुर विद्यापति नगर से विद्यालय परिवार की ओर से परिवहन के लिए बच्चों के लेके आया। मैं इन बच्चों को अभी विज्ञान भवन पूरा अच्छा से घुमाया है और विज्ञान के बारे में वहाँ बताए हैं। फिर हमारा ये ऐतिहासिक धरोहर जो गोल घर है, जो कभी 1770 में अस्तित्व में आया था, 1786 में सर गोल्डस्टोन ने इनको अनाज को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, ताकि लोगों को अकाल पड़ने पर अनाज की पूर्ति किया जाए। उन धरोहर को, इस गोल घर के धरोहर को इन बच्चों से रूबरू कराने आए हैं कि कैसे आज हम विज्ञान के बदौलत अच्छी फसल उगा करके आज हमारी जनसंख्या 3 गुनी बड़ी हो गई, फिर भी हमें खाने का कम से कम लाला नहीं पड़ रहा। नहीं तो अंग्रेजों के जमाने में वक्त वक्त पर अकाल पड़ता था, लोग अनाज के बिना भूखे मर जाते थे, भोजन के बिना भूखे।
3: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और पर्यटन स्थल का कितना बड़ा केंद्र है आपके नजर से, ये किस क्या देखते
4: जी? सबसे बड़ी बात कि हमारा देश गुलाम था और उस समय में अंग्रेजों का शासन था, उस समय में अंग्रेजों की अच्छी नीति नहीं होने के कारण यहाँ से जो भी कमाई होता था, इनकम होता था, वो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज लोग अपने यहाँ ले जाते थे और यहाँ के जनता पर कम ध्यान देते, जिसका नतीजा क्या, और किसान पर अधिक लगान लगाया जाता, लगान अधिक लगाने के कारण, चूंकि हमारी जो फसलें हैं वो वर्षा आधारित थी, वर्षा अच्छी हुई तो फसलें अच्छी होती थी, अन्यथा हमारी फसलें नहीं होती थी। फसलें खराब होने की भी स्थिति में अंग्रेज लोग लगान देना ही पड़ता था, जिसके कारण किसान को भूखों मरना पड़ता था। तो इसी को अकाल से बचाने के लिए और इस ऐतिहासिक धरोहर को दिखाने के लिए बच्चों को यहाँ हम लाए हैं और बच्चों को रूबरू करा रहे हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे दोस्तों और जानेंगे इन बच्चों के बारे में कि क्या कुछ इनका अनुभव रहा और कितना मजा आया इनको गोलघर घूमने में। अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, मैं UMS मऊ धनेशपुर विद्यापति स्कूल से।
3: अच्छा अंजलि, आप यहाँ घूमने आई तो आपको कैसा लगा?
5: बहुत अच्छा लगा।
3: क्या कुछ देखी आप गोलघर में?
5: गोलघर में यही देखा कि अंग्रेजों ने पहले अनाज रखने के लिए बनाया, जो अनाज सुरक्षित रह सके।
3: आपको मजा आया घूम के?
5: हाँ।
3: कहेंगे गोलघर के बारे में, आप घूमी तो आपको कैसा लगा, क्या कुछ अच्छा लगा यहाँ पे गोलघर में आई तो देख के?
5: हाँ, हमें गोलघर में घूम के बहुत अच्छा लगा। और विज्ञान भवन में गए थे ना, वहाँ पे पार्क था, वहाँ पे हम झूला झूले और खूब सारा मस्ती की। और विज्ञान घर में हमने बहुत सारा कुछ देखा।

0: साइकिल चलाया और फिर से टीवी देखे, तारा मंडल देखे।
1: श्रोता, हमारे साथ एक और महिला शिक्षिका जुड़ चुकी हैं। वो अपना अनुभव साझा करेंगी गोलघर में आकर के उन्हें कैसा लगा। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
2: मेरा नाम सारिका पोद्दार है, मैं UMS कन्या साहित्य विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर से हूँ, विद्यालय के स्कूल के तरफ से आई हूँ।
1: जी मैम, तो आज आप बच्चों को लेकर के आई हैं, कितने बच्चे आए हैं और आपका अनुभव गोल घर में आकर के कैसा रहा?
2: 28 बच्चे के साथ मैं आई हूँ। आज से पहले 2000 में आई थी तो मैं छत टूट पे खूब घूमी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि छत टूट डैमेज हो गया, जिस वजह से अब मना हो गया, ताला उला बंद है, फाउंडेशन लगी हुई है। क्या जब ताला लगी तो हम लोग ऊपर जा नहीं सकते, नीचे घूम रहा है तो अच्छा ही फील महसूस हो रहा है।
1: तो क्या यहाँ पर आपको क्या लगता है, कैसी व्यवस्था है पीने का पानी का? व्यवस्था
2: पानी का देखे ही नहीं, पानी तो है ही नहीं।
1: अच्छा,
2: चापाकल तो है ही नहीं,
1: ये व्यवस्था आपको?
2: मैंने तो नजर दौड़ाई तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है।
1: ओके, तो इसमें आप सुधार देखना चाहती है?
2: हाँ,
1: तो उम्मीद करते हैं कि जब आप अगली बार आए तो ये सब सुधार यहाँ देखने को मिले। ये सब सुधार
2: पानी की तो व्यवस्था होनी ही चाहिए।
1: बिल्कुल, शौचालय है, पेयजल है, ये सब बहुत जरूरी है।
2: शौचालय भी किधर है?
1: नहीं है ना
2: जी? नहीं, कुछ तो नजर आ, बस कैंपस है खुला खुला सा घूमने के लिए।
1: हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: श्रोताओं, आइए हम जानते हैं यहाँ जो गोलघर में एक और हमारे साथ युवा जुड़ी है तो उनके अनुभव को जानेंगे, क्या कुछ उन्होंने पहले देखा और अभी के समय में उनको क्या नजर आया, तो आइए जानते हैं। मैम, आप अपना परिचय दीजिए।
4: आई एम अर्चना कुमारी और मैं मुजफ्फरपुर जिले से हूँ और हम लोग आज यहाँ गोलघर देखने आए हैं जो पहले से बहुत अच्छा है और ज्यादातर संख्या में यहाँ पर युवा और स्टूडेंट लोग देखने आ रहे हैं।
3: तो आप कभी बचपन में भी आई है यहाँ पे? पहली बार आई है?
4: जी जी।
3: अच्छा, तो पहली बार आई हैं तो आपको कैसा लगा कि आपने कभी इसके बारे में कभी सुना था कि किस तरह का गोलघर है
4: जी,
3: और
4: जी,
3: अभी
4: जी।
3: आप आई तो क्या कुछ उससे अलग लगा आपको?
4: नहीं, जो सुने थे उससे और अच्छे लगा है हमको।
3: अच्छा
4: जी,
3: तो आपको ऐसा लगता है कि सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, पर्यटन अधिक मात्रा में आ सकते हैं?
4: जी जी।
3: और
4: जी,
3: आना चाहिए युवा श्रोताओं को कुछ जानने के लिए या फिर देखने के लिए है?
4: जी जी।
3: सीढ़ी से ऊपर चढ़ा? यहाँ पे तो सीढ़ी भी बना हुआ है।
4: नो, सीढ़ी खुला रहता तो हम लोग जाते, लेकिन ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, अगर होगी तो हम लोग जाते।
3: दोस्तों, आइए अब हम जानेंगे यहाँ एक और जो पर्यटक घूमने आए हैं तो उनके अनुभव को जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो मैम, आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए, मैं युवा श्रोता हूँ।
5: मेरा नाम जया शर्मा है, मैं राजा बाजार से हूँ, बेली रोड, और यहाँ मैं दूसरी बार आ रही हूँ घूमने के लिए।
3: अच्छा, इसके पहले भी आप आई थी?
5: हाँ, आ चुकी हूँ, जब ये पार्क नहीं था, यहाँ पे काफी कुछ नहीं था, तभी आ चुकी हूँ मैं।
3: तो अगर आप पहले आई हैं और अभी जो घूमने आई हैं तो दोनों के बीच में आपको क्या फर्क लगा? पहले से कुछ सुधार हुआ है या फिर कुछ?
5: काफी कुछ सुधार हुआ है यहाँ, पहले कुछ खास नहीं था, गोलघर भी कुछ अच्छा खासा नहीं था, टूटा फूटा था।
3: अच्छा, आप गोलघर की सीढ़ियों पे चढ़ी?
5: हाँ, जब आई थी मैं वहाँ तो 2-3 बार मैं अप डाउन की हूँ।
3: जो यहाँ घूमने आई है तो उनके अनुभव को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम, आप अपने बारे में बताइए।
6: तो मेरा नाम पुष्पा गुप्ता है, मैं जगदेवपद से आई हूँ और यहाँ मैं फर्स्ट बार आई हूँ।
3: पहली बार यहाँ पे आई हैं? तो आप पहली बार जब यहाँ घूमने आई तो क्या कुछ आपको खास लगा यहाँ, कितना अच्छा लगा आपको गोलघर के बारे में?
6: अच्छा तो लगा।
3: कितने लोग यहाँ पे घूमने आए, लोगों को क्या अच्छा लग सकता है जो लोग आपकी बातों को सुने तो घूमने आए यहाँ पे?
6: हाँ, यहाँ लोग आते हैं, वही स्कूल से बच्चा लोग आ रहे हैं घूमने के लिए और ऐसे अपना फैमिली के साथ भी लोग आते हैं घूमने के लिए।
3: और आपको अच्छा लगा यहाँ?
6: हाँ, हमको अच्छा लगा, फर्स्ट बार आए हैं लेकिन फिर भी अच्छा लगा।
3: चलिए, थैंक यू। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं, हमारे साथ एक और युवा जुड़ चुकी है जो की भी अनुभव को जानेंगे।
7: मेरा नाम काजल हुआ और मैं वीडियोज बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, YouTube पे, Facebook पे, हमारा चैनल भी चलता है।
3: अभी जो गोलघर घूमने आई हैं तो पहली बार आई हैं या इसके पहले भी आपने कभी आया?
7: मैम, मैं फर्स्ट टाइम आई।
3: कैसा लगा आपको गोलघर घूमने में?
7: काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। मैं यहाँ एक दो पार्क में भी गई हूँ तो वहाँ पे वीडियो शूट में थोड़ा बहुत इशू आती है और हम लोग का तो काम है यहाँ वीडियो शूट करना, तो यहाँ आई हूँ तो काफी अच्छा लग रहा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, फ्रेंडली मैं शूट कर रही हूँ और यहाँ जो पब्लिक है उनका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है तो अच्छा लग रहा है।
3: आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस तरह के लोग आ सकते हैं या घूम सकते हैं, जो कुछ जानकारी मिल सकते हैं उन्हें, हमारे ऐतिहासिक चीजों से रूबरू हो सकते हैं?
7: नहीं, मैं यही कहूंगी कि जिनको भी ऐतिहासिक चीज देखना है या जानना है उनके बारे में तो यहाँ गोलघर है तो आप आ भी सकते हैं, अगर आपको वीडियो भी शूट करना है तो भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ आना तो भी आ सकता है। मुझे तो काफी अच्छा लगा और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ।
1: तो दोस्तों, अभी हम गोलघर के गेट के बाहर आ चुके हैं और हमारी मुलाकात हुई है यहाँ के गार्ड से जो टिकट चेक करते हैं। आप यहाँ पर गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन की आवाज सुन पा रहे होंगे, हॉर्न की आवाज सुन पा रहे होंगे, तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें और कब से यहाँ सेवा दे रहे हैं आप?
8: नवल महतो मेरा नाम है, शिवहर जिला का रहने वाले हैं और 2 साल से हम यहाँ सेवा दे रहे हैं।
1: तो कितने लगभग पर्यटक आते हैं, संख्या लगभग

0: कितनी होती
1: है? लगभग 1000 पर्यटक रोज यहाँ आते हैं, 1000।
0: और उनका जो आयु वर्ग है, किस उम्र के लोग ज्यादातर आते हैं?
1: हर वर्ग के लोग आते हैं, बच्चा लोग भी, सियाना भी, बूढ़ा भी, हर।
0: तो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए, वो क्या आप देख रहे हैं और उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है या पर्याप्त है वो?
1: नहीं, वो तो उसमें सुधार करना है। और अभी तो जो है पानी है, लेटरिन बाथरूम ये सब है, फिर अभी काम लगने वाला है, इसमें लग रहा है।
0: तो ये सीढ़ियाँ बंद है? ये
1: सीढ़ियाँ तो बंद है, 2017 से कोर्ट आदेश बंद करके इसको बंद किया है, उसी समय से ये बंद हो गया है।
0: तो इसके लिए भी कुछ प्रयास हो रहा है कि सेफ्टी?
1: नहीं, सीढ़ी नहीं खुलेगा कभी नहीं, सीढ़ी सदा के लिए लॉक हो गया, वो डैमेज भी हो चुका है, मरम्मत भी हुआ है, खुला है, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है।
0: तो हमारे श्रोताओं से क्या अपील करेंगे, गोल घर वो आए, यहाँ क्या देखने को मिलेगा?
1: यही है, ऐतिहासिक घर है, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में वन पीस है, यही सब चीज देखना है। 10 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, और क्या, यहाँ 300 बरस पुराना है, 100 बरस में तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग नीचे चला जाता है, तो इसमें न छड़ है, न सीमेंट है, कुछ नहीं है। ये सुर्खी पहले के कुछ से बना है, जिसके लिए ये है।
0: तो बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया कि इतनी पुरानी इमारत है, ऐतिहासिक धरोहर है,
1: 1786 में इसका आविष्कार हुआ है, मान चालू है उसमें।
0: ठीक है, थैंक यू।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: अभी आपने सुना ये बेहतरीन सा गाना फिल्म ड्रीम गर्ल से, जिसे गाया था मीट ब्रोज ने।
1: दोस्तों, आज की तारीख पर झांकते हैं, इतिहास के उस पन्ने पर जहां क्रांति की अंगारे भरी आंखों वाला एक योद्धा इस दुनिया से विदा हुआ था। हम बात कर रहे हैं साथियों, एक ऐसे विद्रोही नेता की जिसे डर नहीं आता था, न अंग्रेजी हुकूमत का, न जेलों का, न देश निकाले का, जिसने अकेले अपनी वाणी से पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विपिन चंद्र पाल की, और आज उनकी पुण्यतिथि है।
0: लेकिन सवाल है, विपिन चंद्र पाल आखिर थे कौन, और क्यों आज भी उनका नाम लेते ही लोगों के सीने में जोश भर आता है। साल था 1858, ब्रिटिश राज की जड़ें भारत में मजबूत हो रही थी। हरियाणा के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था विपिन चंद्र पाल। लेकिन ये बालक साधारण नहीं था, पढ़ाई लिखाई में तो वो अव्वल था ही, पर उसके भीतर कुछ और ही आग थी। अंग्रेजी शासन की दास्ता, अपने लोगों की लाचारी, गरीबी और बेइज्जती, ये सब उसे नींद तक नहीं आने देती थी।
1: साथियों, विपिन चंद्र पाल ने तीन ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। पहला, स्वदेशी। उन्होंने कहा, जो विदेशी बना है उसका बहिष्कार करो, अपनी चीजें अपनाओ। उन्होंने पुकार लगा दी कि अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलाओ, विदेशी तेल और शक्कर को ठुकराओ।
0: दूसरा था बहिष्कार। केवल बहिष्कार ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बनाती है, इसलिए अपने ही देशी अध्यापकों, अपने ही पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को तैयार करो।
1: और तीसरा, मिलिटेंट राष्ट्रवाद। विपिन चंद्र पाल ने सबको सिखाया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कोई अंग्रेजों का दिन नहीं। उनका मंत्र था, हमें किसी से नहीं डरना।
0: क्या आपको पता है दोस्तों, विपिन चंद्र पाल अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और स्वयं विपिन चंद्र पाल की इस तिगड़ी को आकार दिया। जब तिलक जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें मांडले यानी बर्मा की जेल में भेजा गया, तो विपिन चंद्र पाल ने अकेले ही अपनी लेखनी और वाणी से पूरे देश में आंदोलन फैला दिया। अंग्रेज सरकार इतनी डरी कि उन्होंने उन्हें संदिग्ध व्यक्ति घोषित कर दिया और उनका हर भाषण, हर लेख प्रतिबंधित कर दिया।
1: पहले वो कांग्रेस के साधारण सदस्य की तरह कटु प्रस्ताव पारित करवाने में विश्वास रखते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया, अंग्रेजों से मिन्नतें करने से आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने तो इनकार का रास्ता चुन लिया। यहीं से शुरू हुआ गरम दल का उदय और विपिन चंद्र पाल बने क्रांति के जनक।
0: लेकिन रुके वो कहां, उन्होंने वंदे मातरम अखबार निकाला। उनके लेख न्यू इंडिया और स्वराज में ऐसी आग थी कि युवा उन्हें पढ़कर क्रांतिकारी बन जाते थे। अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सभी किसी न किसी रूप में उनसे प्रेरित थे।
1: एक दौर ऐसा भी आया जब विपिन चंद्र पाल को अंग्रेजों से समझौता ना कर पाने के कारण कांग्रेस छोड़नी पड़ी, और यहाँ तक कि जीवन के अंतिम दिनों में आर्थिक तंगी ने उन्हें घेर लिया। एक ऐसा नेता की हालत यह हुई कि इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन क्या उन्होंने कभी समझौता किया? कभी नहीं। 20 मई 1932 को इस महान योद्धा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, गरीबी और बीमारी के बीच लेकिन सिर ऊंचा करके, जंजीरों से आजाद, एक सच्चे स्वाभिमानी मराठा की तरह।
0: श्रोताओं, आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर नमन कर रहे हैं, हमें याद रखना है कि उनके बताए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वदेशी, स्वाभिमान और साहस, ये तीनों गुण विपिन चंद्र पाल की देन थे।
1: चाहे खादी पहनना हो, चाहे देसी उत्पादों को बढ़ावा देना हो, चाहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला हो, ये सब उसी बीज के फूल हैं जो उन्होंने 100 साल पहले बोया था।

0: आज उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने के साथ साथ यह संकल्प भी लें कि हम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और अभिमानी भारत का निर्माण करेंगे, जैसा उन्होंने सपना देखा था।
1: विदा करे उन्हें यूं कि वो शहीदे जहां कहलाए, विदा करे उन्हें यूं कि वो शहीदे जहां कहलाए, बुलंद हो जाए वो नगमा जो क्रांति के परवाने गाए। बिपिन चंद्र पाल जी को आज उनके पुण्यतिथि पर उनको कोटि कोटि नमन।
0: अब है हमारा सबसे बेहतरीन सेगमेंट जो है अमेजिंग फैक्ट सेगमेंट। तो दिव्या बताइए आज का क्या है अमेजिंग फैक्ट्स।
1: आपको पता है रफत, शतरंज के खेल से संभावित चालों की संख्या ब्रह्मांड के परमाणुओं से भी अधिक है।
0: यही कारण है कि इसे बुद्धि का खेल कहा जाता है दोस्तों।
1: आज जैसे कि हमने बताया रफत कि आज वर्ल्ड बी डे है, तो क्यों ना मधुमक्खियों के बारे में कुछ रोचक जाना जाए। मधुमक्खियां परागण करती है और हमारे भोजन का बड़ा हिस्सा उन्हीं पर निर्भर है।
0: दोस्तों घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि अब हमारा वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का।
1: तो कार्यक्रम आगे भी सुनते रहिए, बने रहिए आकाशवाणी पटना पे और सुनते रहिए आकाशवाणी पटना। तब तक अगले कार्यक्रम तक नमस्कार।

युववाणी, अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है खेलकूद गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम खेल परिक्रमा।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है साप्ताहिक खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। मैं हूं अल्पी और मेरे साथ हैं रेडियो दोस्त संजय किशोर। नमस्कार संजय जी।
1: नमस्कार अल्पी जी, और श्रोता आप भी स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। मौसम में बड़ा परिवर्तन है, गर्मी बढ़ रही है, तो हम अपने सभी खिलाड़ियों से आग्रह करेंगे, कहना चाहेंगे कि वे जल्द सुबह और शाम को ही अपनी प्रैक्टिस करें, और सबसे जरूरी बात कि अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, यानी तरलता बनाए रखें, पानी जरूर पीते रहें।
0: तो सभी खिलाड़ी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खेल गतिविधियों से जुड़े रहें। चलिए जानते हैं बीते सप्ताह हुए खेलों के बारे में खेल गतिविधियां में, साथ ही जान लेंगे कि आगे और कौन कौन से खेल होने वाले हैं।
1: आज हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं शतरंज से। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सुपर शतरंज क्लासिक के पांचवें दौर में अमेरिका के वेल्सी सो के साथ 8 अंक बांटे और टूर्नामेंट में चौथी बाजी ड्रॉ खेली। यह प्रतियोगिता ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट का हिस्सा है, जिसके पांचवें दौर में किसी भी बाजी या हार या जीत के रूप में परिणाम नहीं निकला। जर्मनी के वेंसेट कीमर ने आधे अंक की बढ़त बरकरार रखी, उनके 3.5 अंक हो गए। प्रज्ञानंदा और नीदरलैंड्स के अनीश गिरी और जॉर्डन के वैन फॉरेस्ट का नंबर आता है। इन तीनों खिलाड़ियों के 3-3 अंक हैं।
0: और अब जानते हैं बैडमिंटन के बारे में। भारत की पुरुष युगल जोड़ी हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन ने मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन में बड़ा बदलाव किया है। महिला एकल में अस्मिता चालिहा मुख्य ड्रॉ में पहुंच गई हैं। हरिहरन और अर्जुन ने 7वें वरीय पेपोव और टोमा जूनियर पोपोव पर 21-19, 21-15 से जीत दर्ज की, जबकि चालिहा ने चीनी ताइपे की पाई यू पो को 3 गेम में 21-23, 21-16, 21-16 से मात दी। अब उनका सामना इंडोनेशिया की टी रामाघानी वीरवान से होगा। मिश्रित युगल के क्वालिफाइंग में एस कानापुरम और आर शर्मा की जोड़ी दातु अशरफ और क्लारिसा सेन की जोड़ी को 21-15, 21-7 से हराकर मुख्य दौर में पहुंच गई है।
1: और अब बात करेंगे फुटबॉल की। इंग्लैंड के फुटबॉल कप्तान हैरी केन जर्मनी पहुंचने के बाद से पिछले 3 साल में तेज गोल दागने के साथ ही नए कीर्तिमान भी बना रहे।

0: यह स्टार स्ट्राइकर बुंडेसलीगा का नया किंग बन गया है। 32 वर्षीय हेरी बुंडेसलीगा में अपने शुरुआती दिन सत्र में लगातार 3 बार शीर्ष स्कोरर का अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके प्रदर्शन से टीम इस बार फिर एक मैच हारकर चैंपियन बनी है। हैरी की सत्र की चौथी हैट्रिक से म्यूनिक ने पिछले दिनों कोलोन पर 5-1 से जीत से अभियान खत्म किया। हैरी ने खिताबी सफर में 36 गोल किए। यह लीग के इतिहास में एक सत्र में दूसरे सर्वाधिक गोल हैं। रिकॉर्ड रॉबर्ट लोवांडोस्की 41 गोल करने वाले शीर्ष नाम हैं।
1: और अब बात करते हैं टेनिस की। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनेर ने बीते दिनों एक नई उपलब्धि में अपना नाम दर्ज कर लिया। वह नोवाक जोकोविच के बाद करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने सभी 9 ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीत लिए हैं। सिनेर ने इटालियन ओपन के फाइनल में कैस्पर रूट को 6-4, 6-4 से हराकर लगातार छठा ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीता। उन्होंने अपना 10वां मास्टर्स 1000 ताज और रोम में पहला खिताब हासिल किया। इससे पहले बीते दिनों एलिना स्वीतलिना ने महिला एकल फाइनल में चौथी वरीय कोको गफ को 6-4, 6-7, 6-2 से हराकर तीसरी बार खिताब जीता।
0: और अब बात करें भारोत्तोलन की। पिछले दिनों संपन्न एशियाई भारोत्तोलन में 11 पदक के साथ भारत तालिका में 11 स्थान पर है। भारत ने 1 रजत और 10 कांस्य जीते हैं। चीन ने 21 स्वर्ण, 12 रजत और 8 कांस्य के साथ शीर्ष पर है। उत्तर कोरिया 30 पदक जबकि चीनी ताइपे 13 पदक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय महिला टीम रैंकिंग में 487 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही। चीन 578 अंक के साथ शीर्ष पर रहा। चीनी ताइपे 491 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन पुरुषों की टीम रैंकिंग में 593 अंक लेकर शीर्ष पर रहा जबकि भारत 379 अंक लेकर पांचवें स्थान पर रहा।
1: और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। राजेंद्र नगर स्थित खेल भवन में बालिकाओं के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संपत चक की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि दानापुर की टीम द्वितीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता में पटना जिले के 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 4 की 40 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया।
0: BCA मेंस T20 ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में पिछले दिनों पटना ने अरवल को 75 रनों से और जहानाबाद ने वैशाली को 6 विकेट से हराया। इसके अलावा गया ने नवादा को 7 विकेट से और नालंदा ने शेखपुरा को 10 विकेट से परास्त किया। मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में जहानाबाद के खिलाफ वैशाली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए जबकि टीम के लिए अश्विनी कुमार ने 44, अनमोल ने 31 और आर्यन कुमार ने 13 रन बनाए। जवाब में जहानाबाद ने 16.2 ओवर में 4 विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी मैदान पर अरवल के खिलाफ पटना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 214 रन बनाए। पीयूष कुमार सिंह ने 83 रनों की पारी खेली। जवाब में अरवल की टीम 18.4 ओवर में 139 रनों पर सिमट गई। यशवंत स्पोर्ट्स ग्राउंड पर गया के खिलाफ नवादा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। जवाब में गया ने 17.2 ओवर में 3 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया।
1: खेल जगत की जानकारियों के बाद सुनते हैं मोहम्मद इशाउद्दीन की वार्ता। खेल में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान।
2: पिछले 2 ओलंपिक खेलों में भारत ने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया है उससे वैश्विक स्तर पर खेलों में हमारी पहचान बनने लगी है। खिलाड़ियों ने कई पदक जीतकर उस मिथ्या को पीछे छोड़ दिया है जिसके कारण भारत कई सालों तक विश्व स्तर पर खेलों में पिछड़ा हुआ नजर आता था, लेकिन अब वही भारत तेजी से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न खेलों में जिस तरह के प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों की ओर से किए गए हैं उससे अब हमेशा ही नजरें भारत की ओर लगी होती हैं। और अब तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने की मंशा का भी इजहार कर दिया है। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के विजन की वजह से देश में खेलों को विकसित करने की कई योजनाएं लॉन्च की हैं और आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। 2012 के लंदन ओलंपिक और उसके बाद 2021 के टोक्यो और फिर 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले कई ओलंपिक खेलों के मुकाबले बेहतर रहा है। इस वजह से भारत ने इन खेलों में धीरे धीरे अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी है। भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता भी अब इस तरह की हो गई है कि उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के साथ साथ ओलंपिक खेलों में भी कामयाबी पाने की ललक झलकती है। विश्व स्तर पर ओलंपिक खेलों का सबसे ज्यादा महत्व है और इसमें भागीदारी के साथ साथ पदक जीतने का अपना ही महत्व होता है, इसलिए जरूरी है कि ओलंपिक गेम्स में ज्यादा से ज्यादा पदक हासिल किए जाएं। एक समय था जब भारत खाली हाथ लौट आया करता था, लेकिन अब स्थिति यह है कि हम अनुमान से कहीं ज्यादा पदक जीत

लगे हैं। इससे यह तो साबित होने लगा है कि ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ने के साथ साथ पदक जीतने की क्षमता भी बढ़ रही है। जहां तक ओलंपिक गेम्स की बात है, हॉकी में हम कभी सर्वोपरि हुआ करते थे और इसी वजह से खेलों में हमारी पहचान पूरी दुनिया में थी। 8 बार गोल्ड जीतना कोई आसान बात नहीं है। भारतीय हॉकी टीम ने इतने गोल्ड जीतने के कारण पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हम में आगे बढ़ने की क्षमता है। हालांकि 1980 के बाद से भारत को इस खेल में गोल्ड के लिए तरसना पड़ रहा है। फिर भी जिस तरह से पिछले 2 ओलंपिक गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है, उससे एक बार फिर से इस खेल में नई उम्मीद जगी है। हॉकी हमारे लिए विश्व स्तर की सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कामयाबी का झंडा फहराया है, उससे एक और दावेदारी बढ़ी है। भारत के खिलाड़ी कम से कम नीरज चोपड़ा की वजह से पूरी दुनिया में शान के साथ किसी भी प्रतियोगिता में भागीदारी करने के लिए उतरते हैं। नीरज चोपड़ा ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर जता दिया था कि न केवल उनमें बल्कि बाकी भारतीय खिलाड़ियों में भी आगे जाने की भरपूर क्षमता है। नीरज चोपड़ा की वजह से भारत में एथलेटिक्स, खासकर जेवलिन थ्रो के प्रति रुझान बढ़ा है और कई खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। डायमंड लीग हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप, सभी जगह नीरज की छाप नजर आती है। इससे साफ पता चलता है कि विश्व स्तर पर हमारे खिलाड़ी लगातार मजबूत पहचान बनाते जा रहे हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जब अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग का गोल्ड जीता था, तब पूरे देश में निशानेबाजी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा था। इसके बाद आज हालात यह है कि हमारे शूटर लगातार विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक पर पदक जीते जा रहे हैं। यह स्थिति न केवल सीनियर स्तर पर है बल्कि जूनियर लेवल पर भी है। पिछले 2-3 दशक में कई भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर इसलिए अपनी पहचान बढ़ाई है क्योंकि उन्होंने ओलंपिक खेलों में एक से ज्यादा पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा के अलावा सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर इसमें शामिल है। इसके अलावा लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी, राजवर्धन सिंह राठौर, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, सायना नेहवाल, मैरी कॉम, गगन नारंग, विजय कुमार और योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। जाहिर है इस वजह से भारत की छवि खेलों में भी बेहतर हुई है। एशियन गेम्स में हमेशा से दबदबा रहा है और भारत शीर्ष की 5 टीमों में स्थान बनाता रहा है। 2022 के चीन के हांगझू एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने गजब का प्रदर्शन किया और अब तक का सबसे ज्यादा पदक जीतकर अपना डंका बजा दिया। पहली बार भारत ने पदकों का शतक लगाया। यह कोई आसान प्रदर्शन नहीं है। एशियाई स्तर पर भी भारत को हालांकि ज्यादा पदक के लिए जूझना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। अगर 2014 से अब तक के पिछले 3 एशियाई खेलों का आकलन किया जाए तो हमारे पदकों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। 2014 के इंचियोन एशियन गेम्स में भारत ने 11 गोल्ड समेत 57 पदक जीते थे। इसके बाद 2018 के जकार्ता गेम्स में 16 गोल्ड समेत 70 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किए थे और आखिरी बार जब 2022 में चीन में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था, तब तो हमने कमाल ही कर दिया। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य समेत कुल 106 पदक जीतकर अपना डंका बजा दिया। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हम पूरी दुनिया में अपनी साख बनाए हुए हैं। IPL की वजह से हमारे पास पैसा और संसाधन काफी है और इस कारण हम अपने खिलाड़ियों को इस खेल में आगे बढ़ने का पूरा मौका दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि हम क्रिकेट में अब सबसे बड़ी चुनौती बनकर सबके सामने खड़े हैं। वनडे विश्व कप और T20 विश्व कप जीतकर भारत पहले ही अपना डंका बजा चुका है। हमारी अंडर-19 टीम और महिला क्रिकेट टीम भी साथ साथ बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। छोटी उम्र में भी भारत में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जिसमें से कई तो सीनियर स्तर पर भी दुनिया में छाप छोड़ रहे हैं। पिछले 1.5 साल में बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई है, उससे पूरी दुनिया में उनका नाम तो हुआ ही है, साथ ही साथ भारत का भी नाम हुआ है। मात्र 14 साल की उम्र में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन की हर तरफ तारीफ हो रही है और उनके जैसे खिलाड़ी बनने की देश में ललक बढ़ी है। पिछले 2 दशक में भारत में लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ियों के होने की वजह से भारत ने टेनिस में काफी नाम कमाया है। उससे पहले विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज इस खेल में अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखा चुके हैं, लेकिन दुख की बात है कि अब तीनों ही बड़े खिलाड़ियों का समय खत्म हो चुका है। इसलिए जरूरी है कि नए खिलाड़ी आएं। डेविस कप जैसी बड़ी टीम प्रतियोगिता में हम पिछड़कर वर्ल्ड ग्रुप से निचले ग्रुप में चले गए हैं, इसलिए इस खेल में भारत को कुछ ज्यादा ही चिंता करने की जरूरत है। लॉन टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें पूरे साल कुछ खिलाड़ियों की वजह से भारत सुर्खियों में बना रहता था। ठीक इसी तरह बैडमिंटन में भी सायना नेहवाल और पीवी सिंधु की विश्व स्तर पर पहचान रही है। लक्ष्य सेन का भी दबदबा है, जिनके सामने जब भी कोई
विदेशी खिलाड़ी खेलने उतरता है तो उनमें हड़बड़ाहट तो होती ही है। भारत के लिए चिंता का विषय है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल में हमारी विशेष पहचान नहीं।

0: नहीं है। विश्व कप की बात की जाए तो हम अब तक इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि एशियाई स्तर पर होने वाले एशिया कप में भी भारत क्वालिफाई करने के लिए जूझता नजर आता है। टीमों की संख्या बढ़ने के कारण भारत के लिए क्वालिफाई करने का मौका बेहतर नजर आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो यह देश के लिए बड़ी बात होगी। भारत के अंदर 16 वॉलीबॉल टीम ने एशिया कप में बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है और उसके आधार पर इसने पहली बार अंडर 17 विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इससे देश का गौरव बढ़ा है और हमारी पहचान विश्व स्तर पर बनी है। वॉलीबॉल में भारत को किसी बड़ी शक्ति के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन यह छोटी सी शुरुआत आने वाले दिनों में बड़ा रूप ले सकती है। शतरंज में हमारे पास कई बड़े नाम है, खासकर विश्वनाथन आनंद का बोलबाला रहा है। वो 5 बार विश्व चैंपियन रहे हैं। इसके अलावा डी हरिकृष्णा, विजित गुजराती, कोनेरू हम्पी, हरिका, टी गुकेश, प्रज्ञानानंदा और अर्जुन एरिगेसी जैसे खिलाड़ी हाल फिलहाल में उभर कर सामने आए हैं। अब तक भारत के पास 85 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। यह इस बात का सबूत है कि भारत शतरंज में भी अच्छी खासी पैठ रखता है। कुश्ती और मुक्केबाजी में भी भारतीय खिलाड़ियों ने बीच बीच में अच्छे परिणाम लाए हैं। इससे देश को इन खेलों में एक ताकत के रूप में देखा जा रहा है। भारत सरकार का यह भी नजरिया है कि देश में खेलों का आयोजन होता रहे, जिससे माहौल में बढ़ोतरी होगी। कई विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया जा रहा है। बहुखेलीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत में आखिरी बार 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में किया गया था। तब से अब तक 15 साल का समय बीत गया है, लेकिन कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं हुई है। इसलिए भारतीय सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में यह तय किया है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में किया जाए। इसके लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। भारत की तरफ से 2036 के ओलंपिक खेलों की भी मेजबानी हासिल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। भारत इस दिशा में प्रयासरत है। वैसे भारतीय ओलंपिक संघ के एक दल ने हाल ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के लुसाने स्थित हेडक्वार्टर में जाकर ओलंपिक दावेदारी के प्रारूप को समझा है। उम्मीद है कि 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत को मिल जाएगी। हालांकि इसके लिए भारत को कई बड़े शहरों से चुनौती मिलेगी, लेकिन अहमदाबाद भी किसी दूसरे दावेदार से कम नहीं है। कुल मिलाकर विश्व पटल पर भारतीय खेलों का स्तर बेहतर होता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दशक में नए खिलाड़ियों की जो नई खेप आएगी, वो देश का नाम पहले से ज्यादा रोशन करेगी। फिलहाल हमारी योजनाओं का लाभ तब सही रूप में देखने को मिलेगा जब हमारे खिलाड़ी अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे देशों को ओलंपिक खेलों में कड़ी टक्कर देने लगेंगे। पूरी उम्मीद है कि भारत ऐसा करने में कामयाब होगा।
1: मोहम्मद इशाउद्दीन की वार्ता के बाद रोचक तथ्य में जानेंगे क्रिकेट से जुड़े 10 मजेदार तथ्य।
2: क्रिकेट के खेल में आंकड़े हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, आप भी महसूस करते होंगे। बल्लेबाज के रनआउट होने से लेकर बैटिंग पोजिशन तक सब कुछ आंकड़ों का खेल होता है। इन्हीं आंकड़ों से कुछ दिलचस्प फैक्ट भी बनते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं क्रिकेट के कुछ मजेदार तथ्य। सर डॉन ब्रैडमैन ने पूरे करियर में केवल 6 छक्के ही लगाए, हालांकि इससे उनके स्ट्राइक रेट पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ब्रैडमैन अपने समय के सबसे बड़े हिटरों में से एक रहे हैं। क्रिस गेल एकमात्र वैसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की पहली गेंद पर ही छक्का मारा। जबरदस्त। इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक स्टीवर्ट का जन्म 8 अप्रैल 1963 को हुआ और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8,463 रन बनाए। यह अपनी तरह का एक संयोग ही है। एक बहुत ही मजेदार तथ्य है 11-11-11 का दिनांक 11-11-11 को 11:11 पर साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 111 रन चाहिए थे और ये जबरदस्त संयोग था। और एक संयोग देखिए, एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाए जाने का आंकड़ा 36 का नहीं बल्कि यह 77 का है। ऐसा न्यूजीलैंड के एक घरेलू मैच में हुआ था। आइडिया यह था कि बैट्समैन को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का मौका दिया जाए ताकि वह अपने आखिरी 2 विकेट गंवा सके। गेंदबाज ने भी ऐसा ही किया और 77 रन लुटाए, हालांकि मैच का नतीजा ड्रॉ ही रहा। एक और तथ्य देखिए, क्रिस मार्टिन और बीसी चंद्रशेखर ने अपने करियर में टेस्ट रन से ज्यादा विकेट लिए हैं। मार्टिन ने 71 मैचों में 123 रन बनाए और 238 विकेट लिए, जबकि बीसी चंद्रशेखर ने 58 मैचों में 167 रन ही बनाए और 242 विकेट हासिल किए। है ना गजब। वनडे क्रिकेट मैच में लगातार 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी गजब है और यह है भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के नाम। इंजमाम उल हक को लोग भले ही उनके भारी शरीर और रन आउट होने के लिए जानते हों, लेकिन इंजमाम गेंदबाजी भी करते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में इंजमाम को उनकी पहली गेंद पर विकेट मिला था। और एक जबरदस्त संयोग देखिए, निर्धारित बैटिंग पोजीशन की बात करें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा।

0: हुआ कि लॉन्स क्लूजनर, अब्दुल रजाक, शोएब मलिक और हसन तिलक रत्ने ने वनडे क्रिकेट में सभी 10 पोजीशंस पर बल्लेबाजी की है। 1992 में सचिन तेंदुलकर टीवी रिप्ले के जरिए थर्ड एम्पायर के हाथों आउट करार दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज बने। फील्डर साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स थे। अगले दिन उसी टेस्ट मैच में जॉन्टी रोड्स ठीक उसी तरह सचिन के हाथों रन आउट होकर बाहर हो गए, यानी जैसे को तैसा।
1: श्रोताओं, आज चहल पहल में जानते हैं बिहार की शतरंज खिलाड़ी और प्रशिक्षक मिंकी सिन्हा के बारे में।
2: मिंकी सिन्हा महिला अंतर्राष्ट्रीय रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने मात्र 6 वर्ष की आयु से शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। इनको शतरंज विरासत में मिला। मिंकी सिन्हा के परिवार में कुल 14 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शतरंज खिलाड़ी हैं। अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने राज्य स्तरीय सभी आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और विजयी हुई हैं। इन्होंने सीनियर महिला शतरंज टूर्नामेंट में भी कई बार हिस्सा लिया और विजयी हुई। इसके अलावा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज शतरंज प्रतियोगिता में कुल 4 मेडल जीती हैं, जिसमें 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल है। वर्तमान में मिंकी सिन्हा खिलाड़ी होने के साथ साथ सीनियर राष्ट्रीय आर्बिटर भी हैं। इनके द्वारा बिहार में राष्ट्रीय रेटेड शतरंज प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया गया है। पिछले 7 वर्षों से लगातार ये बिहार में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करवा रही हैं, जिससे बिहार में शतरंज के प्रति बच्चों में रुचि पैदा हो और खेल का विकास हो। इन्होंने कई बार बिहार राज्य स्कूल गेम्स के बच्चों एवं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज के बच्चों के साथ कोच के रूप में भी राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। मिंकी सिन्हा द्वारा शतरंज में रुचि रखने वाले बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मिंकी सिन्हा जी सिर्फ शतरंज खिलाड़ी ही नहीं है, बल्कि एक अच्छी शतरंज प्रशिक्षक, आर्बिटर एवं आयोजक भी हैं।
1: अंत में खेल प्रश्नोत्तरी, जिसमें हर बार हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और बताते हैं पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। हमारा पहला प्रश्न था, 2026 में आयोजित पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेलों का शुभांकर यानी मैस्कट क्या था?
0: सही जवाब है, 2026 में आयोजित पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेलों का शुभंकर था मूरवीर।
1: और दूसरा प्रश्न था, 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा?
0: सही जवाब है, 2026 एशियाई खेलों का आयोजन होगा आईची नागोया जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक।
1: इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब हमारे पास जिन श्रोताओं ने भेजे, आप हैं रोहित कुमार राजेंद्र नगर पटना से, खुशबू कुमारी हैं मुसल्लपुर हाट पटना से, प्रकाश कुमार हैं गायघाट पटना से और वंदना ने अपना पता नहीं लिखा है। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद। इसी तरह बने रहें कार्यक्रम से और भेजते रहें पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब, साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं व सुझाव। अब पूछने जा रही हूं आज के 2 सवाल, बहुत ही ध्यान से सुनें, चाहे तो आप नोट भी कर लें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, फुटबॉल मैच सामान्य तौर पर कितने समय यानी कि कितनी देर का खेल होता है?
0: सवाल एक बार फिर से बता रहे हैं, फुटबॉल मैच सामान्य तौर पर कितने समय यानी कितनी देर का खेल होता है?
1: और दूसरा प्रश्न है, खो खो के खेल में एक टीम में मैदान पर एक बार में कितने खिलाड़ी होते हैं?
0: सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, खो खो के खेल में एक टीम में मैदान पर एक बार में कितने खिलाड़ी होते हैं?
1: इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भेजने के लिए आपके पास पूरे एक सप्ताह का समय है यानी अगले मंगलवार की शाम तक। तो बिना देर किए आप चाहें तो हमें पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से अपने सही जवाब या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। और इसके लिए आप नोट कर लें पत्राचार का पता,
0: कार्यक्रम खेल परिक्रमा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001।
1: हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com। और अब आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: इसी के साथ इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आज पहुंच चुके हैं और हम फिर से आपसे कहना चाहेंगे, यानी खिलाड़ियों से खासकर, कि वे सुबह और शाम को ही अपनी प्रैक्टिस करें और सभी जो खिलाड़ी हैं और नहीं भी, वे अपनी शरीर की तरलता बनाए रखें, पानी जरूर पीते रहें, स्वस्थ रहें, खेल की गतिविधियों से जुड़े रहें। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर
1: और एलपी को
0: आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: परिक्रमा।

0: खेलकूद गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे खेल परिक्रमा, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
7: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
7: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। छह बजकर 10 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। छह बजकर 20 मिनट पर संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे 6:30 पर और शाम 7 बजे का समय होगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम का।

8:30 पर आप सुनेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन, संकलन, संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रणाम।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सभे संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाड़न कि TRE4 खातिर अधिसूचना जल्दी जारी कल जाय। पटना में संवाददातन से बातचीत करत श्री तिवारी कहले कि शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा रखस जल्दी TRE4 परीक्षा के शेड्यूल जारी कल जाय। वो कहले कि शिक्षक भर्ती के प्रक्रिया विधि सम्मत हुई। पटना में TRE4 अभ्यर्थियन के प्रदर्शन के लेकर शिक्षा मंत्री कहले कि बाहरी तत्वन के उकसावे में आके अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन ना करस। एकरा पहले शिक्षक अभ्यर्थियन आज पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के लगे प्रदर्शन कैले। प्रदर्शन जुलूस निकाले के दौरान प्रदर्शनकारियन के पुलिस के साथ झड़प भी भइल। राज्य सरकार प्रदेश में नया अंतर्राष्ट्रीय रूट पर हवाई संपर्क बढ़ावे के नीति के तहत इंडिगो एयरलाइंस के गया जी से बैंकॉक खातिर सीधा उड़ान के अनुमति दे देले बिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में आज भइल राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में यही प्रस्ताव के स्वीकार कइल गइल। बैठक में अलग अलग विभागन के कई गो निवेश प्रस्तावन के भी मंजूरी दिहल गइल बा। संग ही औरंगाबाद अरवल और सहरसा में खेल के ढांचा सुधारे और स्टेडियम बनावे खातिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जमीन ट्रांसफर करे के प्रस्ताव के भी मंजूरी मिल गइल बा। खास बात आज भइल ई कि कैबिनेट बैठक में कुल 13 एजेंडा पर मुहर लागल गइल। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह कहले बाड़ी कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियन के उत्तम प्रशिक्षण खातिर देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानन और अकादमियन में भेजल जाय। सुश्री सिंह पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियन के एह संबंध में आवश्यक कदम उठावे के निर्देश दिहले बाड़ी। खेल मंत्री कहली कि विभागीय कार्यक्रम के नियमित समीक्षा खातिर प्रत्येक सोमवार और बुधवार के बैठक होई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकन के स्कैन कैल गैल प्रतियन खातिर आवेदन करे के अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा देले बा। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकताड़न। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आज बुलावल गैल हड़ताल के असर प्रदेश में भी देखल गैल। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ हड़ताल के समर्थन देले बा। ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदेश में भी अधिकांश जगहन पर दवा के दुकान आज बंद रखल गइल बा। हालांकि ई दौरान सब प्रमुख फार्मेसी अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुलल बाढ़न स। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवन में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के आयोजन कल जा रहल बा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के एह योजना के

तहत गांवन में शिविर लगा के विभिन्न कल्याणकारी योजनावन के लाभार्थियन सबसे आवेदन लिहल जा रहल बा और उनकरा के सरकारी सुविधावन के लाभ पहुंचावल जा रहल बा। प्रदेश के विभिन्न जिलन में चिन्हित जनजातीय बहुल गांवन में आज भी शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगन के जानकारी दिहल जा रहल बा। ई आयोजन 25 मई तक चली। प्रदेश के अधिकांश भागन में भीषण गर्मी के स्थिति बनल बा। औरंगाबाद, भभुआ

0: ई आयोजन 25 मई तक चली। प्रदेश के अधिकांश भागन में भीषण गर्मी के स्थिति बनल बा। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागन में अधिकांश स्थानन पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गइल बा। मौसम विभाग अगिला 24 घंटा के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिला में लू चले के आशंका के लेके रेड अलर्ट जारी कइले बा। विभाग के रिपोर्ट के अनुसार पिछला 24 घंटा के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर के भभुआ प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहल। एने विभाग सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्व भागन में कई स्थानन पर आज आंधी, पानी और वज्रपात के आशंका जतैले बा। रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल अंतर्गत मकराइन, डालमिया नगर और अकोढ़ी गोला क्षेत्र से पुलिस अवैध बालू खनन से जुड़ल 3 लोगन के गिरफ्तार कर लिहलस। एसडीएम नीलेश कुमार के नेतृत्व में छापामारी के कार्रवाई कैल गईल। राज्य सरकार आज ब्रांड बिहार पहल के घोषणा कैले बिया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत बतौले कि राज्य व्यापी पहल के तहत प्रदेश में निवेश, नवाचारी और मौका के बढ़ावा पर जोर दिहल जाए। इ पहल के कमान खुद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत संभारी हैं। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं साथिया फिल्म का ये प्यारा संगीत। सोनू निगम की आवाज में गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

0: उदित नारायण, सोनू निगम, शंकर महादेवन और साधना सरगम के स्वर में आइए सुनते हैं कल हो ना हो फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।
1: प्रस्तुत

0: कल हो ना हो फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह वार्तालापं कृतवान्। उभौ देशौ द्वैपाक्षिक संबंधं विशेषतः सामरिक सहभागित्वेन उन्नतिं कर्तुं निर्णयम् अकुर्वताम्। प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ भयोत्पादनं मानवतायै गभीर प्रतिरोधरूपेण पश्यतः। डीआरडीओ इति संघटनेन ड्रोन प्रक्षेपितस्य मानवरहित स्पष्टता निर्देशित प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सम्पूरितम्। रक्षामन्त्रिणा एतद् व्यूहात्मकं सोपानत्वेन वर्णितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रस्य जातिगणनायाः निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां ईडन गार्डन्स् इत्यत्र मुम्बई इण्डियन्स् दलं कोलकाता नाइट राइडर्स् दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता, यस्योद्देश्यं प्रमुखक्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुमासीत्। व्यापारस्य, निवेशस्य, तन्त्रज्ञानस्य, रक्षायाः, स्वक्षोर्जायाः, सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य, क्षेत्रीयस्य, वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वम् आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय, जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरम् उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना घोषितं यत् भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेष सामरिक सहभागित्वेन वर्धयितुं निर्णयः कृतः। श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ पक्षौ सहकारं वर्धयितुं विस्तृतं चर्चां कृतवन्तौ। भारत इटली नवान्वेषण केन्द्रस्य स्थापनार्थं च कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। सः अवदत् यत् भारत इटली रक्षा औद्योगिक मार्गचित्रं सैन्योपकरणानां सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च मार्गं प्रशस्तम्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् उभौ देशौ नौवहन क्षेत्रेषु पत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी

0: प्रकटिता अस्ति। आईएमडी इत्यस्यानुसारं आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रांतरे असम, मेघालय, केरलम, माहे, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्ते क्रीडावार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार आनंद भाई,
1: नमस्कार मंगरू भाई।
0: की हाल छे आनंद भाई?
1: हाल चाल तो बढ़िया रहे, लगा है ना जैसे झनझना जाए कोई चीज।
0: हाँ
1: उसे अच्छा कैसे देखा बता भाई हो। कभी कभी तो करेंटों को छुला से झनझना है ना तो अच्छा लगा है, कभी कभी मधुमक्खी भी डंक मारा है तो अच्छा लगा है।
0: निक लगे छे।
1: लेकिन जब डंक मारे कोई ऐसा चीज की ज्यादा असर कर जाए तो थोड़ा खराब लगा है। अब मधुमक्खी ज्यादा मात्रा में डंक मार दे तब है तो बीमारी।
0: नहीं नहीं इो है ना कि मधुमक्खी जे डंक मारे छे तो ओ अवसर कौन छे तई पर निर्भर करे। आप जखन मध निकालल जाए छे तहन जे डंक मारते तो निक लगे छे।
1: बिल्कुल अच्छा, मधुमक्खी निकाले में डंक तो मारा है मार
0: हाँ,
1: सका है,
0: हाँ,
1: लेकिन जो निकाले वाला हखी वो इतना अनुभवी रहखी, इतना इंतजाम करके जाखी
0: हाँ,
1: कि मधुमक्खी के डंक से वो बचल रहे।
0: डंक तो अनारिया के मारता है।
1: अच्छा तब ये बताव मंगरू भाई, आज अचानक से मधुमक्खी के चर्चा का है।
0: हाँ आई विश्व मधुमक्खी दिवस।
1: आज
0: हाँ
1: वर्ल्ड बी डे है,
0: हाँ
1: 20 मई के मनावल जाए।
0: सब साल
1: अच्छा
0: 20 मई के मनायल जाए। आ जो एकर मने पाछा के जे इतिहास है ओकरा देखी तो ओई में मधुमक्खी के लेल जे ई विश्व मधुमक्खी दिवस मनायल जाए जात एकर जनक छले थे एंटोन जानसा।
1: अच्छा
0: जिनकर जन्मदिन पर ई मधुमक्खी दिवस मनायल जात स्लोवेनिया के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र दिसंबर 2017 में एकरा सब साल मनेबाक आधिकारिक घोषणा कैलक। आ पहिल बेर जे विश्व मधुमक्खी दिवस मनायल गेल छले ओ आज के दिन मने 20 मई वर्ष 2018 का मनायल गेल छले।
1: मोटा मोटी मंगरू भाई हमरा जे बात समझ में आ रहे है वही है कि मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस मनावे के जे उद्देश्य है वो ये है कि हमनही के पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा लगी मधुमक्खी और अन्य परागणक यानी पॉलिनेटर्स के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ावा देना है, जानल जाए एकर बारे में ये सब उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्लोवेनिया के प्रस्ताव के बाद 20 मई के विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनावे लगी घोषित कल गए। जैसे कि अपने भी कहलखी ये बात ये है कि यही दिन जे हल्की एकर प्रणेता यानी 20 मई के तारीख

0: के चुनाव आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता यानी पायोनियर मानल जाए वाला एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में करल गेल हल। इनकर जन्म 1734 में यही दिन स्लोवेनिया में होवल हल। मधुमक्खी हमनी के पौष्टिक और स्वादिष्ट मधु यानी शहद तो उपलब्ध करेवे करे है, एक साथे परागण और पर्यावरण संतुलन लगी भी बड़ी आवश्यक है। जैव विविधता के एकरा से भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। दुनिया के लगभग 70% प्रमुख खाद्य फसल परागण यानी मधुमक्खी और अन्य कीट पर निर्भर है। मधुमक्खी पौधा के प्रजनन में परागण द्वारा मदद करे है, जकरा से फूल फल और बीज हमन ही के प्राप्त होवे। जैव विविधता में भी मधुमक्खी के बहुत योगदान है। एकर बगैर पौधा के कई एक गो प्रजाति मैंने एकर बिना कई एक ठो प्रजाति विलुप्त हो सके है, जे कि सीधा सीधी खाद्य श्रृंखला के प्रभावित कर सके है। मानव जनित गतिविधि जैसे कि खेती किसानी में बहुत ज़्यादा कीटनाशक के प्रयोग, वन के कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आवास के नष्ट होवल मधुमक्खी के जीवन लगी बड़ी खतरा बन गए हैं। एकरा लगी कि मधुमक्खी हमन ही के आसपास रहे, हमन ही के मधु के आपूर्ति लगी जरूरी है, नहीं तो फिर मधुमक्खी नहीं रहत तो हमन ही के शहद भी नहीं मिलत।
1: कुल मिलाकर जे ई पर्यावरण संरक्षण वाला बात है। हाँ, मधुमक्खी ओकर बहुत पैघ एकटा हिस्सा है आ संगे संग एकरा पर जे खतरा है। खतरा कौन कारण से? तो जे कीटनाशक के छिड़काव हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: चाहे आर एकर जे जना मनुष्य के आबादी बढ़ रहल छे, आबादी बढ़ रहल छे तो खेती वाला जमीन कम भेल जा रहल छे, तो कतौ ने कतौ मधुमक्खी के जीवन पर सेहो खतरा छे। ओई सब खतरा के कम करय के लेल जे छे ई दिवस माने विश्व मधुमक्खी दिवस एकटा जागरूकता पसारित अछि, जैसे कि ओकर संरक्षण भ सके।
0: तो एकरा लगी मधुमक्खी पालन लगी भी ई जरूरी भी है, या मधुमक्खी लगी जरूरी है कि अपन आसपास ऐसन पौधा और फूल के लगावल जाए जे कि रस से भरपूर रहे,
1: जिस पर मधुमक्खी परागण कर सके।
0: हाँ, अपन आसपास या बगीचा में हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग बिल्कुल नहीं करे के चाहिए, जैसे कि अपने भी कहल की मधुमक्खी और अन्य कीट के पिए लगे पानी के छोटा सोता जैसे कि कंकड़ पत्थर से भरल बर्तन रखे के चाहिए। कंकड़ पत्थर नहीं संभव रखना होवे तो गर्मी में मधुमक्खी के जे अपने देखा कि पानी लगी खोज करते। हाँ। तो उनका लगी कुआं तर या चापाकल जरूर कटोरा या खुला बर्तन में या खुला बाल्टी में टब में पानी भर के रख देवे के चाहिए। तो ये बात भी बड़ी जरूरी है कि मधुमक्खी जैसन परागण करे वाला जीव या कीट के सहायता लगी ऐसन फूल भी लगावल जाए जकरा में भरपूर रस तो होबे करे। हाँ। उनका पानी भी मिले। हालांकि अब तो मधुमक्खी पालन बॉक्स में भी करल जा रहा है।
1: करल जाए छे। हाँ।
0: लेकिन पहले ही खाली अपन प्राकृतिक आवास में ही पावल जाए।
1: अब प्राकृतिक आवास में रह के कारण वो जो प्राकृतिक रूप में मधु मने चले है।
0: हाँ।
1: वो सबसे सर्वोत्तम
0: सबसे सर्वोत्तम। अभी भी देखल जाए तो विभिन्न फूल के रस से जो मधु प्राप्त हो है ओकरा में सरसों के फूल के बहुत ज्यादा योगदान है। और जब जब फूल के बात आवे कि कौन फूल के रस लेवल जाए तो मधुमक्खी के ऊ फूल के पौधा तर ले जाल जाए माने घूमते रह जाए। और साल भर यदि शहद लेना है तो मधुमक्खी के तो भाई जगह जगह घुमाना जरूरी है ताकि वो फल वो फूल से उनका रस मिले और शहद वो इकट्ठा कर सके।
1: आनंद भाई कार्यक्रम में बढ़े छी।
0: बिल्कुल।
1: देवी गीत से शुरुआत कर रहा छी।
0: हाँ हाँ
1: सुना रहा छी रेखा कुमार
0: सुनल जाए।

0: मंगरू भाई, ई हल खी रेखा कुमारी, इनका से हमने सुन रहा ये हल देव गीत। आगे कार्यक्रम में इनका से आओ भी गीत सुनल जाए। अभी सुनल जाए एक ठो वार्ता, युवाओं में बढ़ता अवसाद। वार्ताकार है खी डॉक्टर मुकेश किशोर।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम सभी अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से कभी उत्साहित होकर खुश होते हैं और कभी बहुत उदास। लेकिन अभी के समय में ये उदासी जो है युवाओं में एक अलग मोड़ ले चुका है, जिसे अवसाद या डिप्रेशन भी कहते हैं। तो अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश किशोर, जो कि परामर्शी मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका अपने स्टूडियो में बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद।
1: और ये जो अभी फिलहाल चल रहा है युवाओं में उदासी, एक अवसाद बनते जा रहा है, तो इसका जो लक्षण और कारण है, इसके निदान के बारे में हम आपसे आज जानकारी हासिल करना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अवसाद उदासी से अलग कैसे है?
2: देखिए, आए दिन हम लोगों के जीवन में बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं
1: जी,
2: जिससे हम उदास हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन कोई भी उदासी जब 2 सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक चले रहे तो उसको हम लोग उसको डिप्रेशन की संज्ञा देते हैं, और उसके कुछ लक्षण हैं जो

0: चर्चा जिसके करेंगे हम लोग।
1: जी बिल्कुल
0: लेकिन यदि 2 सप्ताह से अधिक तक किसी को ये लक्षण है
1: जी
0: तो परामर्श करना चाहिए किसी विशेषज्ञ से।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा जो है उस्ताद जो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है?
0: यदि इसके कारण पर गौर करें तो बहुत सारे कारण हैं
1: जी।
0: डिप्रेशन के एक कारण हमारा अनएम्प्लॉयड लड़का है
1: जी,
0: तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण है
1: जी।
0: किसान का फसल लगा हुआ है, फसल जल गया, बाढ़ में दह गया, तो उसके कारण उसको हो सकता है। किसी की मृत्यु हो गई
1: जी जी,
0: उसके कारण हो सकता है, या किसी का लव रिलेशन ब्रेक कर गया
1: जी। बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो उसके कारण उदासी हो सकती है। उदासी के अनेकों कारण हैं डिप्रेशन के, जिसमें उसके यदि जैविक कारणों में जाइएगा तो उससे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है, उसमें एक असंतुलन होता है
1: जी।
0: लेकिन बाकी कारणों में सामाजिक कारण है, व्यक्तिगत कारण है
1: जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो डिप्रेशन है ये किस तरीके से युवाओं में बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके जो लक्षण हैं अगर पहचानना हो कि वो उदास ना हो के डिप्रेस हो रहा है, तो उसके लक्षण की क्या क्या हैं, किस तरीके से पहचाना जाए कि उनमें डिप्रेशन आ चुका है?
0: देखिए जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होगा
1: जी
0: वो पहले अलग अलग रहना चाहेगा, परिवार के लोगों के साथ नहीं रहना चाहेगा, अलग थलग रहेगा,
1: बिल्कुल
0: बात नहीं करना चाहेगा किसी से
1: जी।
0: उसके नींद, भूख, लोगों से मिलने जुलने की इच्छा, काम में रुचि, ये सब प्रभावित होती है, काम करना भी नहीं चाहता है
1: जी जी।
0: और इसके कारण वो, और यदि डिप्रेशन के कई अवस्थाएं होती हैं
1: जी,
0: जैसे एक अवस्था है माइल्ड, तो माइल्ड में रोने की इच्छा होती है
1: अच्छा,
0: और मॉडरेट में रोता है
1: हाँ,
0: और सीवियर में कहते हैं कि आंसू सूख गए
1: अच्छा ये,
0: और बहुत गहराई से यदि अवसाद है उसमें
1: जी,
0: तो कई बार आदमी अपने नजरों में खुद को रिजेक्ट करने लगता है उसको।
1: हाँ,
0: दो वर्ड
1: मतलब,
0: है, एक डिजेक्शन एक रिजेक्शन।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो रिजेक्शन में दूसरा व्यक्ति आपको नहीं चाहता है, रिजेक्ट कर रहा है,
1: रिजेक्ट कर दे रहा है।
0: डिजेक्शन में आप अपने आप को नहीं चाहती हैं, अपने आप को रिजेक्ट करती हैं।
1: अच्छा,
0: तो उसमें क्या होता है, उसको लगता है कि मेरी जरूरत दुनिया में नहीं है
1: जी,
0: और वो आत्महत्या तक कर सकता है
1: जी। बिल्कुल, जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनने को भी मिल रहा है कि किसी न किसी कारण से आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे कैसे रोका जा सकता है, इसे किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ आप बताएं।
0: देखिए एक तो है कि डिप्रेशन किसी भी तरह का हो उसके लिए दवाइयाँ भी हैं, यदि बहुत अधिक है डिप्रेशन
1: जी, जी।
0: तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई लीजिए
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन दवा से भी अकेले प्रायः इसका उपचार नहीं हो पाता है। परिस्थितियों को सुधारने के लिए मोटिवेट करना है जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति उदास है
1: जी जी,
0: उसको अपने काम की इच्छा नहीं है, उसके विरुद्ध उसको काम करना है। डिप्रेशन में होता यह है कि उसको काम करने की इच्छा नहीं होती है, दिन भर काम नहीं करता है, शाम को उसी का मन उससे पूछता है कि तुम आज क्या किए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो कोई जवाब नहीं देता है, उससे डिप्रेशन बढ़ता है
1: जी।
0: और काम करने की इच्छा नहीं है फिर भी वो प्रयास करके शरीर को ढकेल के यदि काम करता है
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो एंड ऑफ द डे में दिन के अंत में उसको लगता है कि इतना इतना काम हम किए, जिससे उपलब्धि का भाव उसके भीतर उभरता है और उससे उदासी कम होती है। इसीलिए उदासी को ठीक करने का असल उपाय काम ही करना है
1: जी बिल्कुल। तो ये तो हो गए अवसाद के बारे में हम लोगों ने, जैसा कि आपने अभी अभी लक्षण बताया और इसके जो कारण आपने कहे कि इन सब कारणों से ये होता है, लेकिन अगर इससे उभरने की स्थिति जो होती है कि इसका क्या निदान है, किस तरीके से हम इससे डिप्रेशन से उभर सकते हैं?
0: बताया तो अभी हमने आपको कि उसमें देखिए एक तो उसको दिनचर्या बना के अपने आप को काम में लगाना होगा।
1: अच्छा,
0: उस काम नहीं करता है लेकिन एक एक मिनट का उसके पास एक्टिविटी शेड्यूल होना चाहिए, वो काम करे, योगा करे, उसके बाद टहलने का काम करे, या अब काम में लगे और मेडिटेशन करे। मेडिटेशन हमारे समझ से मेडिटेशन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, अभी के समय में मेडिटेशन हमारा बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये हर तरीके से हमारी मदद करता है। तो जैसा कि मेडिटेशन के बारे में आपने कहा

0: कि ये बहुत ज़्यादा सहयोगी रहेगा।
1: इसमें सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है।
0: हाँ, तो डॉक्टर साहब, मेरा ये आखिरी सवाल आपसे कि जो अभी अभी आपने काम की बात की कि एक दिनचर्या बना लेना चाहिए, तो वैसे स्थिति में हमारे परिवार का, हमारे जो मित्र होते हैं या सहयोगी होते हैं, तो उन लोगों का इसमें क्या एक अहम भूमिका हो सकता है, वो कैसे भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमें दें।
1: देखिए, परिवार का सहयोग
0: जी
1: तो निश्चित रूप से मददगार है।
0: जी बिल्कुल
1: तो WHO ने डिफाइन किया है, मेंटल हेल्थ इशू है
0: जी
1: डिप्रेशन,
0: जी
1: डिफाइन किया है कि मेंटल हेल्थ, यदि हम स्वस्थ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और मानसिक स्वास्थ्य के लिए
0: जी
1: स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो जब समाज से कट जाते हैं, प्रायः मानसिक रोगी को देखिएगा आप, ज़्यादातर समाज से कट
0: कट
1: जाते हैं,
0: जाते हैं बिल्कुल।
1: तो अवॉइड करने लगते हैं लोगों से मिलना। तो सामाजिकता को बढ़ाना और परिवार के लोगों को, ऑफकोर्स शुरू में तो दबाव बना के उसको समझा बुझा के ले जाना पड़ेगा, लेकिन यदि अलग थलग रहेगा तो बीमारी से मुक्ति पाना मुश्किल है।
0: बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब ये देखा जाए कि वैसे सिचुएशन में परिवार को भी चाहिए कि वो उसके आसपास रहे और हमेशा उसे खुश रहने की
1: बिल्कुल
0: कोशिश
1: बिल्कुल
0: करे, और जिस तरफ उसका ध्यान जा रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस है, उसको उस कारण से बाहर निकाला जा सके। तो बहुत अच्छी बातचीत रही आज आपके साथ हमारे स्टूडियो में, और इतनी अच्छी अच्छी बातों के लिए डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: आनंद भाई, एखन हम सब
3: भेंट वार्ता
2: भेंट
3: सुन रहल
2: वार्ता
3: हैं,
2: सुनल
3: भेंट
2: छोड़ हाँ
3: वार्ता अभी है सुन रही हैं, विषय हैं युवाओं में बढ़ता अवसाद। भेंट वार्ता कर रहलखिन डॉक्टर मुकेश किशोर, इनका से भेंट कर रहलखिन हैं
2: विनीता
3: विनीता
2: कुमारी,
3: कुमारी।
2: दोनों के धन्यवाद दिए हम सब।
3: हाँ, अवसाद के बारे में हम ये कहे ले चाहिए गुरु भाई कि हमारे के पास इतना समय है कि अवसाद के बारे में बात करल जाए,
2: क्या
3: समझल
2: जा
3: जा
2: सके।
3: सके। अवसाद से जब कोई भी युवा घिर जाए तो समझे कि वो अपन जीवन के महबूल समय के नष्ट कर रहा है। अवसाद के ही तो कारण देखा कि आजकल कते बच्चा जिनकर उज्जवल भविष्य हो सके हले, असमय काल कवलित हो रहे जा रहा है, काल के गाल में समा जा रहा है, अपन जीवन लीला अपने से समाप्त कर ले रही है। अवसाद से निकलल बहुत जरूरी है। हमरा लगा है कि अवसाद खत्म करे में आसपास के वातावरण के तो योगदान है ये है, उनकर जो अभिभावक हखी उनकर भी बहुत बड़ा
2: बहुत
3: योगदान है।
2: बहुत
3: उनका समझे पड़त कि हमर बच्चा कैसन प्रतिक्रिया दे रहा है, कोई चीज़ पर पूछे पर जवाब दे रहा है कि नहीं, देर से जवाब दे रहा है, अपने आप में माने भुलाल रह रहा है, खोल रह रहा है कि उड़ा दीन दुनिया के कोई सुध नहीं है। जख नहीं अभिभावक के समझ जाए के चाहिए कि बच्चा के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चा तनाव में है, अवसाद में है, और उहे समय ओकर सही से काउंसलिंग करे के चाहिए, बातचीत करे के चाहिए। यदि संभव हो या कहल जाए कि बच्चा फिर भी नहीं सुधर पा रहा है, तो कोई भी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाकर करके आ ओकरा सही से काउंसलिंग करवावे के चाहिए, ताकि बच्चा अवसाद से निकल सके और फिर अपन उज्ज्वल भविष्य देने आगे बढ़ सके।
2: आनंद भाई, अवसाद कोनो कमजोरी नहीं है, ई मस्तिष्क के रसायन, हार्मोन आ जीवन के तनाव से जुड़ल एकटा चिकित्सीय स्थिति अछि। एहि स्थितिमे सुधार के लेल चिकित्सा जरूरी छै, जेना अपने कहबे के लिए कि थेरेपी और जीवन शैली में बदलाव जरूरी
3: बिल्कुल
2: छै।
3: बिल्कुल
2: जँ अवसाद के लक्षण के बात करब तऽ जे अवसादग्रस्त व्यक्ति छै ओ लगातार उदासी में रहै छै, मन में खालीपन, निराशा या हमेशा उदास के भाव रहै छै, कोनो चीज में रुचि नहीं लै छै, ओकरा नीक नहीं लगै छै, नीक से नीक चीज वस्तु खेला भेटे, चाहे संगी साथी के संपर्क भेटे, लेकिन ओहि समय कतौ रुचि नहीं रहै छै।
3: आजकल के जे कड़ा प्रतिस्पर्धा के युग है ना मंगरू भाई, ओकरा से भी बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, अवसाद में आ जा रहे हैं। हम तो कही बच्चन सब के, लड़कन सब के कही के, देखा भाई तोरा से इंजीनियरिंग नहीं होलो, मेडिकल नहीं होलो, तो कोई बात नहीं,
2: कोनो बात नहीं छै,
3: ये एगो जिंदगी है।
2: ओ
3: ओकर बाद प्रबंधन के क्षेत्र है, प्रशासनिक सेवा
2: जीवन
3: के
2: के
3: क्षेत्र
2: तो
3: है,
2: भाग भेले।
3: भाग होले ना, बहुत सारा चीज है। अब देखा जी, एक ठो बहुत बड़ा आउटलेट है, बहुत बड़ा कंपनी है जगह बारे में लोग जाने हखी, ओकर संस्थापक तो अपन उम्र के 60वां वर्ष में उस चीज के स्थापना कलखियन, आ
2: हाँ।
3: वो आज ऐसा ब्रांड हो गल, ग्लोबल ब्रांड हो गल, वैश्विक स्तर पर ओकर पहचान आज हो गल।
2: बुझियो तो एहि चीज के बुझे के छे अवसाद सब ग्रस्त व्यक्ति जे छे ओकर जीवन खत्म नहीं भेले ओ जे छे से जो ध्यान केंद्रित करे एमे खासकर योगा भेले चाहे

0: ध्यान होले,
1: मेडिटेशन भेलै, ई सब जे छै से अवसाद के खत्म करय में बड़का भूमिका निभाबै छै। संगे संगे अवसाद ग्रस्त व्यक्ति के परिवार सँ जे छै से बेसी ई अपेक्षा कयल जायत, जेकि जे अवसाद ग्रस्त व्यक्ति छै तकरा संगे संवाद स्थापित,
0: बिल्कुल
1: ओकरा ओहिसँ निकालऽ के लेल जे छै से मानसिक
0: लगातार बात करे पड़त,
1: लगातार बात करे, जैसे कि ओकर मानसिकता बदले, उदासी वाला बात खत्म होए,
0: अब बहुत ज्यादा कोई चीज के बोझा में डाला के तरह से करबे करा ऐसी करे पड़त।
1: छोट छोट बच्चा के दसवां के बोर्ड एग्जाम भेले बढ़िया अपना हिसाब से जे नंबर भेटक चाहिए से नहीं भेले ओ अवसाद ग्रस्त,
0: बिल्कुल।
1: तो ई सब जे छै से जीवन के एकटा एहन क्षण उतार चढ़ाव जीवन में अवैत रहे छे, ओइसे बाहर निकला के लिए प्रयास करक चाहिए, ओइ में ओकर सगी सगा संबंधी के सहयोग से जरूरी छे। की विचार गीतनाद होए,
0: विचार तो है भाई, काठो गाना हो जाए, लोकगीत हो जाए,
1: तो सुनै छी रेखा कुमारी से अगला गीत
0: सुनल जाए।

0: आनन्द भाई, ई छल बटगमनी सुनल छली रेखा कुमारी। आब देखू हिनक एहि गीतके बाद आब चौपालक समय तऽ खतम भेल, थोड़े देरके बाद हमसब खेती गृहस्थी गप करब।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आनंद भाई,
2: हाँ हाँ,
0: आब खेती गृहस्थी में आओ हमारे लोकन सबसे पहले सुने छी प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस,
3: सुनल जाए।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
5: नमस्कार, मैं हूँ राजेश, और एक बार फिर से 7 दिनों के बाद आज बुधवार का दिन है और हम कार्यक्रम में पैरामेडिकल है पारस लेकर आप सबों के घर आंगन में आ चुके हैं बातें करने कि पैरामेडिकल का कोर्स, ANM, GNM का कोर्स, ये सारा कोर्स जो है ना आपके जीवन में एक नई गति ला सकता है यदि आपने तरीके से पढ़ाई की। पैरामेडिकल है पारस ये कार्यक्रम लेकर आते आते वर्षों निकल गया, लगातार ये कार्यक्रम जी हाँ चल रहा है और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस लाइन के ठीक सामने। हाँ, यहाँ आप आकर मिल सकते हैं और ढेर सारी जानकारियां भी ले सकते हैं। कहते हैं ना साथियों कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अगर जो आपने टेक्निकल पढ़ाई की तो आपके लिए रास्ते, हाँ रास्ते बहुत तरीके से खुल जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में तो और भी संभावनाएं हैं, आप पढ़ते पढ़ते रोजगार पा सकते हैं, अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर निजी क्षेत्र में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन संस्थान का चुनाव हाँ बहुत सावधानी से करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ से संस्थान एफिलिएटेड है, क्लासरूम स्टडी की क्या व्यवस्था है, प्रैक्टिकल की क्या व्यवस्था है, लाइब्रेरी, किताबें बहुत महंगी होती हैं, किताबों के लिए क्या करना होगा, सब कुछ ठोक बजा के एकदम ठठा ठक ठोक बजा के देखना होगा, फिर दाखिला लेना होगा और जोरदार पढ़ाई करनी होगी। बहरहाल चलिए, आज हमारे साथ यहाँ कौन है आपको बताएं, और वो हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इन्हीं से इनका परिचय, लेकिन उससे पहले हम नंबर बताना चाहेंगे जिस पर आप फोन करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर, दो नंबर बताएंगे, आप नोट कीजिए नंबर, और अगर आपके पास नंबर है तो कोई बात ही नहीं है। पहला नंबर है 9162 41 32 33, और दूसरा नंबर है 9155558888, यानी 9 1 4 5 और 4 8। चलिए मुलाकात करते हैं वाइस प्रिंसिपल साहब से और जानते हैं इनके विषय में पहले फिर सवाल।
6: सर, मेरा नाम केशव कुमार डागुरा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में लास्ट ईयर से वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर पोस्टेड हूँ, और मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, नर्सिंग में एक अच्छा करियर,
5: नर्सिंग में एक अच्छा करियर है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई केशव जी?
6: मैं सर जीवाजी यूनिवर्सिटी 2013 में पास आउट हूँ वहाँ से।

0: और एमएससी नर्सिंग मेरा केएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एमपी एमएसयू से क्लियर किया हूँ।
1: बातचीत तो होती ही रहेगी, लेकिन ये बताइए कि बिहार आके राजस्थान से कैसा लग रहा है?
0: बिहार आके काफी अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ पे नर्सिंग में और पैरामेडिकल क्षेत्र में हम लोग कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ बेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को एजुकेशन के मामले में।
1: अच्छा एक बात बताइए, हाँ आप यहाँ बाहर से आए हैं, हमारे पूरे बिहार के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का माहौल कैसा है?
0: श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर एजुकेशनली माहौल एकदम, सारे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, लैब्स हमारे यहाँ जितनी भी हैं वो अवेलेबल हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। और मैं यही कहूँगा सभी बच्चों को, सबसे अच्छा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ है अभी, और सर भी बहुत अच्छे हैं, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, बच्चे को हर तरह से सपोर्ट मिलता है।
1: अच्छा अब चलते लौटते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की तरफ, बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी दीजिए बच्चों।
0: बीएससी नर्सिंग सर एक 4 ईयर का कोर्स होता है, इसके लिए इंटर में 12th में बायोलॉजी का होना जरूरी होता है। इसमें गवर्नमेंट भी सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारा वैकेंसीज होता है, आर्मी होता है, डिफेंस का जितना भी वैकेंसी होता है, एम्स होता है, ईएसआईसी हॉस्पिटल होता है, आजकल सीएचओ 2020 से एक कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट पोस्ट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका दिल्ली से संचालन होता है, बच्चा सीएचओ भी पोस्टेड होता है, एक पीएससी होता है गाँव में सर जहाँ पे अंडर 5000 पॉपुलेशन होता है, वहाँ पर सीएचओ को पोस्टेड किया जाता है।
1: आपने बड़े अच्छे से बताया कि बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करके, और 4 साल का कोर्स है आपने बताया, और जो इंटर में बायोलॉजी के साथ जिसने किया है वो यहाँ आ सकता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन दो बातें हम अपने सुनने वालों से कर लें। कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस, और इस वक्त हमारे साथ केशव कुमार डांगुर साहब बैठे हैं जो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं, और अभी बातचीत चल रही है बीएससी नर्सिंग जैसा कि अभी अभी हमने बताया, और कहां कहां आप प्लेस्ड हो सकते हैं, रोजगार मिल सकता है, यानी एंड ऑफ द डे रोजगार ही चाहिए आपको, है ना, तो वो भी जानकारी दी है। अगर आपको और भी विशेष जानकारी चाहिए तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी संस्थान के डायरेक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं, और उनका नंबर है 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जैसा कि

0: श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग हाँ इंस्टीट्यूट का अपना बिल्डिंग है जहाँ क्लासेस चलते हैं, सारी गतिविधियां होती हैं। अपना श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहाँ प्रैक्टिकल कराई जाती है। प्रैक्टिकल से ही एक सवाल हम आपसे पूछते हैं क्योंकि टेक्निकल कोर्स है हेल्थ का, इसमें प्रैक्टिकल का कितना बड़ा रोल होता है?
1: मेरा मानना यह है सर, प्रैक्टिकल का इसमें 100% रोल होता है। बच्चा अगर उसको हॉस्पिटल में जाके ऑन पेशेंट करेगा या ऑन डमी करेगा, उसके लिए हमारे यहाँ कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, लैब में डमी पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद पेशेंट के पास बच्चे को भेजा जाता है, जिससे टेक्निकली फेस टू फेस बच्चा पेशेंट को हैंडल करेगा, तो इससे ये चीज़ें सीखने को मिलती है सर।
0: कब से प्रैक्टिकल शुरू होता है? हम तो सुने हैं कि श्री राज में जब बच्चे आते हैं तो एडमिशन हुआ और उनकी व्यवहारिक शिक्षा शुरू हो जाती है।
1: जी सर, ऐसा ही है, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर 3 मंथ्स बच्चे को फर्स्ट एजुकेशन थ्योरी का स्टडी कराया जाता है। पीटीएस एग्जाम होता है, उस एग्जाम के जस्ट बाद उनका आवरली इसमें होता है सर। हाँ। हम लोग टोटल बच्चे को आवर के अकॉर्डिंग, ईयरली अकेडमिक अकॉर्डिंग भेजा जाता है बच्चे को हॉस्पिटल ड्यूटी में। अप्रोक्स 10 मंथ उसको कंटिन्यू हॉस्पिटल में ही रहना होता है, 6 आवर ड्यूटी।
0: अच्छा, आपका इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल का कैंपस तो एक ही में है?
1: यस सर।
0: तो बच्चों को इसका लाभ तो मिलता होगा?
1: बिल्कुल, बच्चों को लाभ भी मिलता है, बच्चों को नाइट ड्यूटी भी, हम लोग जो भी सीखने का इच्छुक होता है हॉस्पिटल में उसको अलग से भी सर का सपोर्ट होता है, चेयरमैन सर का, टीचर्स लोगों का भी सपोर्ट होता है। सारी चीजें बच्चे को अच्छे से लर्न कराई जाती है प्रैक्टिकल के लिए सर।
0: अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है केशव जी, हम लोग भी जब स्टूडेंट रहे थे, आप भी रहे होंगे,
1: जी जी सर,
0: स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी, बिल्कुल जरूरी होता है,
0: फ्रेंडली। तो क्या टीचर एकदम खौफ के साथ रहते हैं या बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर?
1: नहीं सर, टीचर्स जो होता है, कम्युनिकेशन गैप हमारे नर्सिंग में एक टॉपिक होता है सर, जिसमें बच्चे का बिहेवियर, उसके कम्प्लीट जो हैबिचुअल है, उन सारी चीजों को टीचर्स सर्विलेंस करते हैं, निगरानी में रखते हैं, अच्छे से देखते हैं, और जो गैप मेंटेन होना चाहिए।

0: टीचर्स स्टूडेंट के बीच में वो होता है एजुकेशनली गैप और बिहेवियर को लेके। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर्स होगा, सभी बच्चे को अच्छे से हैंडल करते हैं, पोलाइटली हैंडल करते हैं,
1: यानी एकदम प्रैक्टिकल एकदम बिहेवियर जो है फ्रेंड और टीचर का है बावजूद।
0: बिल्कुल सर,
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: फ्रेंडली माहौल है।
0: बिल्कुल सर,
1: आपको क्या लगता है कि बच्चे जो आते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जो ख्वाब लेके आते हैं, जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, तो अगर आपके यहाँ आपके इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड

0: सकती है।
1: जी बिल्कुल।
0: उसके बाद मैं यही बोलना चाहूंगा सभी बच्चों को, राज इंस्टीट्यूट में एक बार आइए और वहाँ पर देखिए स्टडी का, प्रैक्टिकल का। उसके बाद सभी बच्चों का उम्मीद यही है कि 99% उनका फ्यूचर बनेगा। सर
1: फ्यूचर बनेगा। हालांकि हम एक जानकारी और दे दें आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टर साहब को, डॉक्टर एन पी प्रियदर्शी जी को फोन किया कि हम लोग पटना नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्होंने गुरौल में भी वैसे लोगों के लिए, एक समाज का विकास हो सके, बच्चे गांव के भी आगे बढ़ सके, इसके लिए इन्होंने गुरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो श्री राज ग्रुप का ही है, उन्होंने गुरौल में स्थापित किया है। वहां भी आप इसी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 9162413233 और दूसरा 9155558888। वाइस प्रिंसिपल साहब केशव जी, एक सवाल जो हमारे आपके घर में भी होता रहा है, बच्चों को अभी भी मिडिल क्लास फैमिली में कहें तो करियर चुनने की आजादी नहीं होती है, उनके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, बड़े भाई बहन का होता है, जो हम समझते हैं कुछ हद तक गलत है, सजेशन देना चाहिए। ऐसे में पूरा बिहार सुन रहा है, बात कीजिए कि ये गलत है या सही अपने हिसाब से।
0: मैं सभी गार्जियन से एक ही बात बोलना चाहूंगा, बच्चे पर बिलीव रखना है, बच्चे को अच्छा स्टडी के लिए लाइफ एक बार मिलता है किसी भी इंसान को
1: जी।
0: तो मुझे ये लगता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। सभी गार्जियन से मेरा यही रिक्वेस्ट है।
1: और जो कोर्स वो चुनना चाहते हैं
0: जी,
1: उस पे लिबर्टी मिलनी चाहिए।
0: बिल्कुल मिलनी चाहिए सर, बच्चे की जो चॉइस है, बच्चा जिस चीज में जाना चाहता है उसको बिल्कुल गार्जियन को देना चाहिए और उसको आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए।
1: अच्छा एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे केशव जी, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत हमसे ज्यादा बच्चों के साथ आप रह चुके हैं। बहुत सारे बच्चे इनडिसिसिव होते हैं जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाते और प्लेन स्टडी को चुन लेते हैं, मसलन बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या इस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर इसकी जगह वो टेक्निकल कोर्स को ऑप्ट करते तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होता
0: जी।
1: तो वैसे बच्चों के लिए संदेश कि अगर आप कंफ्यूजन है आपके पास तो आप किसी बड़े से, किसी एक्सपीरियंस आदमी से मदद ले सकते हैं, और इस वक्त रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, तो बताइए उन लोगों को।
0: मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगा सर, जैसे चाइना है, अमेरिका जिस डेवलप कंट्री है, तो वहां पर एजुकेशन का मेन रोल है सर उस चीज में, टेक्निकल एजुकेशन का। वहां पर बच्चे को ही सिखाया जाता है बाज कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, ये सारी चीजें उनको स्टार्टिंग से लर्न कराई जाती है। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि बीएससी नर्सिंग एक टेक्निकल कोर्स होता है, इसमें आकर वो आगे बढ़े और अपना फ्यूचर बनाए।
1: आगे बढ़े और फ्यूचर बनाए। आप राजस्थान से बिहार आ गए, कैसा लग रहा है?
0: जी सर बहुत अच्छा लग
1: रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद केशव कुमार डागुर साहब।
0: थैंक यू सर।
2: ये केशव जी थे जो वाइस प्रिंसिपल हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के। एक बात बताएं, टेक्निकल पढ़ाई में इतनी अपॉर्चुनिटी है, जैसे देखिए इन्होंने राजस्थान से पढ़ाई की और बिहार में आकर ये अपना योगदान दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और श्री राज ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं, लगातार बच्चों में बीएससी नर्सिंग या टेक्निकल पढ़ाई के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बहरहाल साथियों, बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही वाइब्रेंट है, एएनएम जीएनएम ये बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है, अगर जो आपने इसे चुन लिया तो आपके लिए रोजगार की कोई भी कमी नहीं होगी। इसके अलावे अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो ढेर सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आ गया है। सारी चीजों की जानकारी के लिए आप डायल कर सकते हैं 9162413233 या 9155558888 ये नंबर है, इस पर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से आपकी बातचीत हो जाएगी और श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो प्रोग्राम ला रहा हूँ, ये संस्थान बहुत ही उम्दा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है और अच्छे जगह से एफिलिएटेड है, हॉस्टल की सुविधा है। अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो फोन से बात कर सकते हैं और आकर मिल सकते भी हैं। नंबर हमने आपको बता ही दिया है, एक नंबर फिर से बता दे रहा हूं, 9155558888। और अब राजेश को दे इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: आनंद भाई।

0: ये हमने सुन रही है अभी, प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
1: देखो आनंद भाई, आप बात करी खेती पथारी के, तो खेती पथारी जो होइ छे मुख्य रूपे खेती जे छे से टा प्रबंधन छे। जाबे तक ओरियान नहि करब ता तक खेती नहि हैत। तऽ ओरियान करय के लेल बहुत रास गप पर ध्यान देबऽ पड़ै छै। ओहिमे एकटा जे प्रमुख काज छै, खेत के कोड़नाइ, मने जोति के होइ छै, ताहिके बाद मिट्टी के ओकरा तैयार केनाइ होइ छै, जैसा कि हमरा फसिल बढ़िया से बढ़िया भेटै।
0: माने कोई भी खेती किसानी के काम में, चाहे वो परंपरागत फसल लगावल जाए, चाहे नया तरह के या मौसमी फसल,
1: हाँ
0: फल फूल के पेड़ पौधा या औषधीय पौधा, सबके खेती यदि करल जाए तो ओकरा अनुसार आवश्यक ई है कि पोषक तत्व के उपयोग आवश्यकता अनुसार पड़े।
1: हाँ आ ओहि के लेल जरूरी छै कि जेना माटि में, जाहि ठाम जाहि खेत में हम जे बीज लगाबऽ चाहै छी, जे फसिल उपजाबऽ चाहै छी, ओकर जे किस्म लगाबऽ चाहै छी, ओहि के लेल ओ खेत उपयुक्त छै कि नहि छै।
0: बिल्कुल, मैंने जरूरत पड़ला पर रासायनिक उर्वरक, कंपोस्ट या जैविक खाद के प्रयोग करल जा सके, ऐसा मैंने ये हो ओकरा से पता
1: हाँ
0: लगे।
1: तो आई
0: लेकिन हाँ, लेकिन सबसे अहम बात ये है मंगरू भाई कि कोई भी फसल लगावे के पहले से उपलब्ध पोषक तत्वों के बारे में जानकारी रहे, तब तो
1: तै के बाद है।
0: एकरा लगी जरूरी है मट्टी के जांच करा लेवल जाए।
1: हाँ
0: मट्टी के जांच यानी परीक्षण करला से मट्टी में पहले से उपलब्ध पोषक तत्व के बारे में भी जानकारी मिल जाए और कमी वाला पोषक तत्व के बारे में भी। फिर फसल के अनुरूप या कहल जाए कि आवश्यकता के अनुसार मट्टी के जांच के बाद जरूरी पोषक तत्व के कंपोस्ट यानी सड़ल गोबर आदि के भूठा यानी खाद, वर्मी
1: हाँ
0: कंपोस्ट या जैविक खाद या रासायनिक उर्वरक द्वारा पूर्ति करल जाए। मट्टी के जांच करे लगी अपन खेत के नमूना लेवे पड़त और ओकर अनुसार कोई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजल जाए के चाहिए। नमूना चुने लगी उस समय ई ख्याल रखे के चाहिए कि मट्टी के नमूना फसल के कटाई के बाद या बुआई से पहले लेवे के चाहिए, ताकि परिणाम एला पर खाद के मात्रा और प्रकार के निर्धारण करल जा सके। एक एकड़ खेत से लगभग 8 से 10 स्थान से नमूना लेवे के चाहिए। एकरा लगी नमूना के बारे में भी जानल जरूरी है। नमूना लेवे लगी भी आकार के एगो
1: गड्ढा बना।
0: गड्ढा बना लेवे के चाहिए, लगभग 6 इंच गहरा और भी आकार के गड्ढा बनावल जाए के चाहिए। गड्ढा के किनारा से मट्टी निकाले के चाहिए, बीच से नहीं निकाले के चाहिए। सभी स्थान से मट्टी ले लेला के बाद एक जोर करके बढ़िया से फेंट लेवे के
1: आनंद
0: चाहिए।
1: भाई में एकटा चीज के ध्यान रखना चाहिए, खेत में खास कर ओहन जगह जेना मानि लियौ आड़ि पर गाछ छै, ओहि गाछ सँ छाँह भऽ रहल छै, तऽ जतऽ छाँह भऽ रहल छै ततक माटि नहि लिअ।
0: बिल्कुल, जहाँ पेड़ पौधा रहे, जहाँ पत्ता के रहे, उस जगह से बिल्कुल नहीं उठावे के चाहिए।
1: हाँ
0: बीच से तो खैर मट्टी नहीं निकाले के चाहिए। सभी स्थान से मट्टी ले लेला के बाद एक साथ मिला लेवे के चाहिए। फिर नमूना मट्टी के छाहुर में सुखा लेवे के चाहिए। सूखल नमूना के कपड़ा के थैली में पैक कर लेवे के चाहिए। थैला पर खेत के नंबर, जगह के नाम, तारीख, खाता, खेसरा, रकबा और उगावल जाए वाला फसल के विवरण लिख लेवे के चाहिए, ताकि पता चल सके कि कौन पोषक तत्व की जरूरत ओकरा में पड़त। तब नमूना के मृदा प्रयोगशाला में भेजल जाए के चाहिए, तब बढ़िया रहत। यहाँ ई सावधानी रखे के चाहिए मंगरू भाई, जैसे कि जे कहलखिन अपने कि गड्ढा बनावल गेले है, वो
1: हाँ
0: गड्ढा के एगो सीधा सपाट दीवार से ऊपर से नीचे तक लगभग 1 इंच मोटा मट्टी के परत खुरपी या फावड़ा या कुदाल से काट के निकाले के चाहिए। जहाँ से नमूना के साथ चिन्हित करल जाए वो जगह जे अपने कहलखिन मेड़ यानी आरी, पेड़ के छाँव या गोबर के खाद वाला जगह नहीं होवे के
1: नहीं
0: चाहिए।
1: होगा चाहिए।
0: लगभग 8-10 जगह से मट्टी निकाल लेवे के बाद और लगभग 1.5 से 2 किलो के कोई भी साफ बाल्टी पॉलीथीन पर जमा कर लेवे के चाहिए। एकरा से कंकड़, पत्थर, सूखल पत्ती और पौधा के जड़ से निकाल के साफ कर लेवे के चाहिए। फिर क्वार्टरिंग भी कर लेवे के चाहिए, यानी सूखल मट्टी के गोल ढेर बना लेवल जाए और ओकरा 4 बराबर भाग में बांट लेवल जाए। आमने सामने के 2 भाग के हटा देवल जाए और बचल 2 भाग के आपस में मिला लेवल जाए। ई प्रक्रिया के तब तक दोहरावे के चाहिए जब तक कि लगभग 500 ग्राम यानी आधा किलो मट्टी बच न जाए। यह नमूना के तैयार समझे के चाहिए और मट्टी के परीक्षण लगे प्रयोगशाला में भेजे के चाहिए।
1: एते फरिया के सबटा गप कहलिए, तो ई जे माटि के परीक्षण छै ओहिसँ हैत कि माटि में जे नाइट्रोजन पोटास आ फास्फोरस सन पोषक तत्व होइ छै ओकर सटीक जानकारी भेल।
0: बिल्कुल
1: माटि के अम्लीय या क्षारीय होवे के सेहो पता

0: पता चल जाए।
1: जैसा समय रहे तो ओकरा सुधार कयल जा सकैए आ संगे जरूरत के हिसाब से ओहिमे कोन खाद देबाक चाही तकर पता चल जाए। ओहिसे फायदा की हैत तो जो अनावश्यक खर्च होइ छै बचत तो माटि परीक्षण एहि सबके लेल जरूरी छै। की विचार आगा बढ़ी हम सब
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सुनै छी रेखा कुमारी से झूमर
0: सुनल जाए।

0: आनन्द भाइ
1: हाँ हाँ
0: ई रेखा कुमारी सुना रहा छी झूमर हिनक गाओल आजुक सब गीत के लिए हिनका मन से धन्यवाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखो आनन्द भाई, मौसम के गर्माहट आबि गेल तऽ गर्मी से बचब के जते जतन हुए सब घर से बाहर निकली, सावधान रही, तहने स्वास्थ्य के रक्षा।
1: समय हो गेल,
0: समय भ गेल,
1: चलो जाए।
0: नमस्कार आनन्द भाई।
1: नमस्कार मगरू भाई।

0: चौपाल और खेती गृहस्थी। अभी आप ये ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्यघर।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है पटना CBS@

0: @gmail.com
1: शुभ वाणी
0: लाभ वाणी
1: आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE-4 के अभ्यर्थी तैयारी करें, जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। ऑनलाइन दवा बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर दवा दुकानदारों की हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। और राज्य के कई भागों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने भभुआ, गोपालगंज और रोहतास में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में कई निवेश प्रस्तावों को आज मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कैमूर के कुदरा में पावर प्लांट और ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नालंदा जिले के बेन में बॉयल राइस्ड उत्पादन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
5: उद्योग विभाग का दो मामला था, एक मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई, और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था मेसर्स ESE एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड खुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
4: कैबिनेट ने प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के तहत इंडिगो को गयाजी से बैंकॉक सीधी उड़ान की अनुमति दे दी है। श्री चौधरी ने बताया कि एक अन्य फैसले में औरंगाबाद, अरवल और सहरसा में खेल संरचना के विकास और स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
5: अगले एजेंडा राजस्व और भूमि सुधार विभाग के थे, जिसमें अरवल, औरंगाबाद एवं सहरसा जिले में खेल के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण तथा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि की हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है।
4: कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE-4 के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा रखें, तैयारी करें, जल्द TRE-4 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया विधि सम्मत होगी। पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी तत्वों के उकसावे में आकर अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन न करें।
6: हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरा फिर एक अपील है, आप हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, आपने ये सरकार बनाई है, ये सरकार आपकी है, इसीलिए आप जाइए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। सरकार बहुत जल्दी आपके सपने को साकार करने जा रही है, आप इसको लेकर के कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है, और आंदोलन के पीछे कौन कौन लोग हैं, जो लोग अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं।
4: शिक्षा मंत्री श्री तिवारी ने आज पटना के सिन्हा रोड स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्य भवन और बुद्ध मार्ग स्थित अकादमिक भवन में पूछताछ सह शिकायत निवारण केंद्र का उद्घाटन भी किया। शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है।
0: जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, और उसे मुझे जाकर देखने का भी अवसर मिला कि जो विषय हमारे द्वारा लाया गया उसे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा के कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र के रूप में आपने स्थापित करके और बिहार के लाखों छात्रों को एक नई ऊर्जा

0: नई खुशी प्रदान।
1: इधर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज TRE4 परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर पटना में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समीप अशोक राजपथ पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जुलूस निकालने के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के लिए देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों में भेजा जाएगा। सुश्री सिंह ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक सोमवार और बुधवार को बैठक होगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। हड़ताल के समर्थन में बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ से जुड़े दुकानदारों ने प्रदेश में अधिकांश दवा दुकानें आज बंद रखीं। यह हड़ताल ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री में नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध आयोजित की गई है। हड़ताली दवा दुकानदारों ने कहा है कि मजबूर होकर उन्होंने हड़ताल किया है।
2: ऑनलाइन में आज के डेट में आप AI के जमाने में किसी भी तरह का डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको दवाएं घर पर पहुँच जाएगी। उसका कुपरिणाम क्या हो रहा है कि बहुत तरह की नशीली दवाएं, बहुत तरह की प्रतिबंधित दवाएं, जरूरी दवाएं इसके द्वारा आ रहा है। आज हमारा डिमांड है कि जो कायदा कानून हमारे रिटेलर हमारे होलसेलर के लिए बना हुआ है वही कायदा कानून ऑनलाइन वाले के लिए भी हो।
1: हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया है कि जिले में मेडिकल स्टोर बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अन्य जिलों में भी दवा दुकानें बंद रहीं। इस दौरान सभी प्रमुख अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले रहे हैं। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिन्हित जनजातीय बहुल गांवों में आज भी शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। यह आयोजन 25 मई तक चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की व्यवस्था की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए। हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए

0: आप हमारे एक्स हैंडल AIN न्यूज _ पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आज ब्रांड बिहार पहल की घोषणा की। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्यव्यापी इस पहल के तहत प्रदेश में निवेश, नवाचार और अवसरों के विस्तार को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल का नेतृत्व स्वयं मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत करेंगे। पटना स्थित मुख्य सचिवालय में आयोजित बैठक में आज ब्रांड बिहार पहल से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग आगामी 25 मई से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन करेगा। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कराकर नियोजन संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सहकारिता मंत्री और दानापुर से स्थानीय विधायक रामकृपाल यादव ने आज क्षेत्र में बरसात के दौरान संभावित जल जमाव की समस्या से निपटने की व्यवस्था की समीक्षा की। दानापुर अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में SDM अनिरुद्ध पांडे समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। श्री यादव ने अधिकारियों को जल जमाव और अतिक्रमण की समस्या से निपटने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकांश स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व भाग अरिया, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, गोपालगंज एवं रोहतास जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर आज आंधी पानी और वज्रपात की आशंका जताई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर 22 मई को 7 समर स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, अगरतला और न्यू जलपाईगुड़ी समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न भागों से राजधानी दिल्ली तक चलाई जाएगी। कटिहार रेल मंडल प्रवर वाणिज्य प्रबंधक अनुप कुमार सिंह ने बताया कि 26 मई को इन ट्रेनों की वापसी होगी।
2: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कटिहार मंडल से 2 जोड़ी ट्रेनें जो कि नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलाई जाएंगी। ऐसे ही 5 और जोड़ी ट्रेनें हैं जो NFR रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली या आनंद विहार के लिए चलाई जा रही हैं। और इनमें जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो सारी ट्रेनें वाया कटिहार NJP होते हुए जाएंगी। NFR से जाने वाली ट्रेनें जो हैं विभिन्न स्टेशनों से खुलेंगी, वो 22 तारीख को यहां से चलेंगी और वो दिल्ली या आनंद विहार टर्मिनल को पहुंचेंगी। जो वहां से वापस आने वाली ट्रेनें हैं वो 26 तारीख को वहां से चलेंगी।
0: विशेष निगरानी इकाई की टीम ने सहरसा जिले के महेशी अंचल कार्यालय के अंतर्गत बेलाही और सिरवार हलका के राजस्व कर्मचारी श्याम प्रसाद सिंह को 16,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने इस मामले में दलाल की भूमिका निभा रहे फूलचंद साह को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर जमीन की रसीद काटने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। ADG निगरानी पंकज कुमार दराद ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखनी गांव से पुलिस ने बैंक ऋण लौटाने में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर जिले में पुलिस लाइन के समीप सड़क पर आज एक पेड़ गिर गया। इस घटना में एक महिला घायल हो गई। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल भेजा और सड़क से पेड़ की टहनियों के हटाने के निर्देश दिए। सुपौल जिले के बीरपुर में नगर पट्टी सीमा चौकी के समीप SSB और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी के पास से मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर और एक देशी पिस्तौल बरामद किया गया है। सीमा सड़क संगठन के अपर महानिदेशक जितेंद्र प्रसाद ने आज भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर बन रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। श्री प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि जून के प्रथम सप्ताह में बेली ब्रिज पर छोटे वाहनों का परिचालन शुरू कर दिए जाने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की

0: के तहत प्रगणक स्वगणना के दौरान दर्ज गलत जानकारी को संशोधित कर सकेंगे।
1: जब प्रगणक आपके घर जाएंगे और आप उनको अपना SE ID उपलब्ध कराएंगे तो उसके आधार पर वो डेटा को सत्यापित करेंगे। तो डेटा सत्यापन के दौरान आपसे जब बात होगी तो आप उनको बता सकते हैं कि किसी प्रश्न का आपने गलत उत्तर दे दिया है, उसको संशोधित करना है, तो संशोधन प्रगणक कर देंगे।
0: जनगणना निदेशक ने लोगों से जनगणना के नाम पर साइबर फ्रॉड से भी सतर्क रहने की अपील की।
1: कोई भी जनगणना कर्मी आपके घर आते हैं तो वो आपसे वित्तीय जानकारी या किसी प्रकार का दस्तावेज उसकी मांग नहीं करते। तो अगर कोई भी इस प्रकार का मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए संपर्क करता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है और साइबर हेल्पलाइन 1930 उस पर संपर्क कर सकते हैं या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1855 उस पर संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं या जिला प्रशासन स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
0: आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से पिछले सोमवार से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू हो गया है। यह समाचार प्रतिदिन संध्या 6:05 पर प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: परिणामी आकाशवाणी पटना है। अब रवड़ा सभी संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनिए।
3: जब ये शब्द रेडियो सेट के स्पीकर से छनकर बिहार के गांवों, कस्बों और गलियों में गूंजे तो करोड़ों दिलों की धड़कन को अपनी पहचान मिल गई। आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचारों के नियमित प्रसारण की शुरुआत केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है बल्कि लोक संस्कृति और आधुनिक पत्रकारिता का एक अभूतपूर्व मिलन है। भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं, एक जीवंत संस्कृति है जो मॉरिशस से लेकर सूरीनाम तक फैली है। आकाशवाणी पटना की इस पहल ने उस पूरी आबादी को मुख्य धारा की सूचनाओं से जोड़ दिया है जो अपनी भाषा में संवाद करना और सुनना सबसे सहज मानती है। सोशल मीडिया के दौर में जहां रील और शॉर्ट्स की भरमार है, वहां आकाशवाणी पटना का यह कदम एक सुखद बयार की तरह है। बुलेटिन की शुरुआत के अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री कुमार ने आंचलिक भाषा में समाचार प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।
4: बहुत दिन से मांग चलत रहा कि भोजपुरी भाषा में बुलेटिन शुरुआत हो, जौना के शुरुआत आज भइल बा। ऐसे कि जन जन तक ये बात पहुंची और भोजपुरी बहुत लोग बोलेला, बिहार के साथ साथ विदेश में भी लोग बोलेला। ये जो काम भइल बा ये बड़ा बधाई के पात्र बा। भारत सरकार के हम बधाई देते बानी, बिहार सरकार के बधाई देते बानी, और ये आकाशवाणी के जितना भी अधिकारी लोग बा सब लोग के जो सोच बा ओकरा के सैल्यूट कर देने कि इतना अच्छा काम के अच्छा से हम सुनने भी है। जन आज प्रसारण भइल 5 के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आकाशवाणी पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन की शुरुआत इस बात का सबूत है कि तकनीक कितनी भी बदल जाए अपनी भाषा की कशिश कभी कम नहीं होती। आकाशवाणी पटना की यह नई गूंज न केवल सुदूर इलाकों तक पहुंचेगी बल्कि भोजपुरी पत्रकारिता के मानक और गरिमा को एक नया आयाम भी देगी। समाचार कक्ष से खालिद रशीद।
0: इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन संजीव कुमार वर्मा, ध्वनि अंकन प्रहलाद कुमार और प्रस्तुति अजय कुमार।

आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म का ये प्यारा संगीत। लता मंगेशकर।

अलका याग्निक और अभिजीत के स्वर में आइए सुनते हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म का ये प्यारा सा गीत। इसके संगीतकार हैं इब्राहिम अस्त।

0: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला गीत हमने लिया है राज फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

अगला गीत हमने लिया है हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से। अलका याग्निक की आवाज़ में, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं निखिल विनय।

0: हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, वाचन संकलन संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की।
1: प्रस्तुत है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के

0: अंतर्गत लाभुकों के चयन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आज दिनांक 20 मई 2026 को विकास भवन पटना के उद्योग विभाग सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन विधि से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभुकों का चयन किया गया। इस अवसर पर मंचासीन थे सुश्री श्रेयसी सिंह, माननीय मंत्री उद्योग एवं खेल विभाग श्री लखेंद्र कुमार रोशन, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग श्री कुंदन कुमार, सचिव उद्योग विभाग श्री अमन समीर, निदेशक एमएसएमई श्री मुकुल कुमार गुप्ता, उद्योग निदेशक डॉक्टर विद्यानंद सिंह, निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय। कार्यक्रम का आरंभ माननीय मंत्रियों के स्वागत से हुआ। तदुपरांत श्री अमन समीर, निदेशक एमएसएमई ने चयन प्रक्रिया की जानकारी दी।
1: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसमें मैम कुल 5 घटक हैं। 5 घटक में मैम सबसे पहला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। इसका मैम हम लोगों ने अप्लीकेशन का रखा था मैम 25 फरवरी 2026 से 23-3 तक हम लोगों ने मैम उद्यमी पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिए हैं। उन जो आवेदन हम लोगों के पास आए हैं मैम वो 6,50,425 आवेदन आए थे और जो लक्ष्य हम लोगों को दिया गया है मैम वो टोटल 9,347 लक्ष्य दिए गए हैं, जिसमें SC ST में 2,000 लक्ष्य हैं, EBC में 2,000 लक्ष्य हैं, महिला उद्यमी के लिए 2,000 लक्ष्य हैं, युवा उद्यमी के लिए 2,000 लक्ष्य हैं, अल्पसंख्यक उद्यमी के लिए 1,247 लक्ष्य हैं और दिव्यांगजन उद्यमी योजना के लिए 100 लक्ष्य हैं। और जो मैम आज हम लोग चयन कर रहे हैं तो ये रेंडमाइज्ड जो प्रक्रिया है उससे हम लोग करेंगे और सबसे पहले मैम हम लोग करेंगे हर एक जो स्कीम का रेंडमाइज करेंगे। मैम आपके समक्ष यहाँ पे बॉक्स है, इसके अंदर मैम लॉटरी से हम लोग निकाल बताया कि एक बार रेंडमाइज अगर करते हैं दो बार करते हैं तो लाभुकों का मैम शिकायत रहता है कि कहीं पहला बार रेंडमाइज में मेरा नाम छूट गया तो जरा मैं आ सकता है, इसलिए मैम रेंडमाइज करके रखा है कि लॉटरी से जो भी जितना बार का नंबर निकलेगा उतना बार हम लोग कंप्यूटर पर रेंडमाइज करेंगे।
0: चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत श्री लखेंद्र कुमार रोशन, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 1 करोड़ युवाओं को बिहार में नौकरी और रोजगार देने का जो लक्ष्य है, हम समझ सकते हैं जो वह लक्ष्य को उद्योग विभाग अपनी भूमिका उसे बड़ी बारीकी से निभा रही है और उस लक्ष्य को पूरा करने में उद्योग विभाग की भूमिका जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस नाते जो उद्योग का जाल बिछाना और जो सरकार के लिए प्राथमिकता है उस प्राथमिकताएं पर उद्योग विभाग निरंतर कार्य कर रही है। विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार, मजबूत बिहार बनाने के लिए उद्योग विभाग के हमारे सभी कर्मी और माननीय मंत्री के मार्गदर्शन में किस प्रकार आप सब तत्पर एक्टिव है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बिहार के उज्जवल भविष्य में आपकी अति महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आज की खासकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री होने के नाते माननीय मंत्री जी और यहाँ इस विभाग को सचिव जो आज 2,000 लक्ष्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के परिवार को उद्यमी बनाने के लिए उद्योग से जुड़ने के लिए आपने जो लक्ष्य रखा है और 2,000 के बनिस्पत आज जो लॉटरी की सिस्टम आपने रिमाइंडर किया है उस आधार से हम समझ सकते हैं 2,000 SC ST समाज के बच्चे उद्यमी बनेंगे और हजारों के संख्या में रोजगार भी देंगे।
0: साथ ही विकसित बिहार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की उन्होंने जानकारी दी।
2: देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, विजन है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो विजन है कि विकसित बिहार, समृद्ध बिहार और सशक्त बिहार बनाना है, उसमें समाज हम समझ सकते हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको विकास के मुख्य धाराओं से जब तक नहीं जुड़ा जा सकता है तब तक हम विकसित बिहार और विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने आज 2,000 से अधिक 2,000 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के युवाओं को आपने रोजगार का एक अहम मौका दिया है और लॉटरी कार्ड के माध्यम से उनको रोजगार मिलेगी और हम समझ सकते हैं 2,000 जिनको रोजगार आप दे रहे हैं वह अपने साथ हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार देंगे तो उद्योग विभाग के

0: भूमिका आज इस कार्यक्रम में, अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया गया। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को, अपने विभाग के उद्योग विभाग के सचिव को और सभी आपके उद्योग विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और उन उद्यमी जो पूरे बिहार में 6,50,425 के एवज में 12,151 शुभ अंक का आपने शुरुआत बिहार के लिए किया है और 12,151 उद्यमी को आज आपने उद्योग विभाग का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उनको लाभ का प्रस्ताव का स्वीकृति कर लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद।
1: इस अवसर पर सुश्री श्रेयसी सिंह, माननीय मंत्री उद्योग एवं खेल विभाग ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: आज के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो आवेदकों की संख्या थी उनका चयन के लिए हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। मैं सर्वप्रथम अपने बड़े भाई और अपने नेता अनुसूचित जनजाति जाति कल्याण विभाग के लखिंदर पासवान जी का आज अपने विभाग में स्वागत भी करती हूँ और उन्होंने अपनी अहम भूमिका इस रैंडमाइजेशन प्रोसेस में निभाई, उसके लिए तहे दिल से आभार भी प्रकट करती हूँ। साथियों, गर्व होता है जहाँ एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की परिकल्पना और संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ बिहार भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर रोजगार सृजन करने में उद्यमियों को अपने उद्यमी उद्योग को लगाने के लिए या निवेश करने के लिए उद्योग विभाग तत्पर है और काम कर रहा है।
1: बिहार में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन को लेकर उन्होंने जानकारी दी।
2: लगातार आप देखेंगे कि बिहार में अब उद्योगपति आ रहे हैं और अलग अलग निवेश की बात की जा रही है कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट फील्ड्स में आकर रोजगार भी सीजन कर सके और जो इंडस्ट्रीज है, जिस तरह से अन्य राज्य में, भारत के अन्य राज्य में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ है या एक रेवोल्यूशन आया है, ठीक उसी तरीके से जल्द ही बिहार में भी ये इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयासों से मूलभूत सुविधाओं को हम लोग घर घर तक पहुंचा चुके हैं। जहां सड़कें नहीं थी वहां आज सड़कें बन गई हैं, बिजली प्राप्त है, बिजली के लिए हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली फ्री तक पहुंचाने का कार्य किया है। अब कहीं ना कहीं हम लोगों का ध्यान पूर्णतः माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के निर्देशानुसार पूर्णतः इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं।
1: संबंधित विभिन्न योजनाओं को भी उन्होंने अपने उद्बोधन में रेखांकित किया।
2: कुल 6 तरह की योजनाएं इस योजना के अंतर्गत चल रही है, जो कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है और इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि एक और कैटेगरी जो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के नाम से जानी जाएगी उसको भी इसमें शामिल किया गया है। लगभग 10 लाख की सहायता राशि लोन और अनुदान के रूप में, यानी कि लोन और ग्रांट के रूप में इन सभी लाभुकों को देते हैं। इनसे इनको सहायता मिलती है कि सही ट्रेनिंग पाकर सही प्रशिक्षण के साथ यह अपने अपना इंडस्ट्रीज, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। हम लोगों ने यहाँ पे रैंडमाइजेशन करते हुए देखा कि बेकरी से लेकर ऑयल मिल से लेकर फ्लेक्स प्रिंटिंग तक जैसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लोग इच्छुक हैं। कुल आवेदन जो प्राप्त किए गए थे वो लगभग 6,50,425 थे, जिसमें से कुल 12,151 का एक, जिस तरह हमारे बड़े भाई ने कहा, एक शुभ संख्या के साथ उन लाभुकों का चयन किया गया है।
1: अंत में लाभुकों के लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की।
2: साथियों, निश्चित रूप से ये जो 12,151 लोग को आज वेटिंग लिस्ट के माध्यम से चिन्हित किया गया है, मैं उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ और ये उम्मीद और आशा करती हूँ कि बिहार को आप समृद्ध बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। जिस तरह का सहयोग राशि आपको बिहार सरकार दे रही है, आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना एक सुंदर उद्योग सजाकर बिहार में रखेंगे। इससे हम लोगों के जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ी बढ़ोतरी बिहार को मिलेगी।
1: अंत में श्री कुंदन कुमार सचिव उद्योग विभाग ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा। अब हमारे साथ श्री कुंदन कुमार जी हैं, आप सचिव हैं उद्योग विभाग के, और आज उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार में एमएसएमई को लेकर के और नए उद्यमियों को अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कंप्यूटर

0: द्वारा रैंडमाइजेशन के माध्यम से उनका चयन किया गया। लाभार्थियों की कुल संख्या क्या है, कितने लोग एप्लीकेंट थे, किस किस कैटेगरी में किनका किनका सिलेक्शन हुआ, कैसे? कुंदन कुमार सर,
1: आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो मैं बार बार कहता हूँ कि लोकल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, उद्यमियों को डेवलप करने के लिए, आज ये उस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन किया गया है। और इस योजना अंतर्गत 4-5 घटक हैं जिसके अंतर्गत अति पिछड़ा, युवा वर्ग, महिला वर्ग, दिव्यांगजन, सभी को हम लोग इसमें कैटेगरी वाइज, अल्पसंख्यक वर्ग है, इनको हम लोग इन लाभुकों का चयन करते हैं। और आज करीब करीब इस पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 6.5 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे, और उसमें जो हमारा लक्ष्य है वो करीब करीब 12,000 के आसपास का लक्ष्य है, जिसमें वेटिंग लिस्ट भी शामिल है। वैसे उन लाभुकों का रैंडमाइजेशन का यूज़ करते हुए और लाभुकों का चयन किया गया है।
0: सर, इस चयन में जो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, आज AI का दौर है, ट्रांसपेरेंसी मतलब एक तरह से कहें तो चरम पे है, तो आम लोगों में कभी कभी लेकर के जो अविश्वास रहता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इनका कैसे हो गया, तो आप क्या संदेश?
1: इस पूरे प्रोसेस को सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी जो यहाँ प्रतिनिधिगण हैं, उन्होंने भी इस पूरे प्रक्रिया को देखा है। और चूंकि यहाँ पर उद्योग विभाग की माननीय मंत्री महोदया सुश्री शशि सिंह जी के द्वारा और हमारे श्री लखेंद्र पासवान साहब जो SC/ST विभाग के मंत्री हैं, उनके प्रेजेंस में ये हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत ही उत्तम नमूना पेश किया गया है। और हमारा जो वेबसाइट, हमारा जो पोर्टल है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का, वो आधार ऑथेंटिकेटेड है, जिससे कोई डुप्लीकेशन की भी चांसेस नहीं है। और हमारे जो GMDIC जो विभिन्न ज़िलों में है, वो इस योजना की सतत अनुश्रवण करते हैं। तो ये योजना मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, और बहुत अच्छे से इसका आज लाभुकों का चयन का कार्य सुचारू ढंग से MSME डायरेक्टरेट के द्वारा संचालित किया गया।
0: इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इसी के साथ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सम्पन्न हुई। वाचन, संकलन, संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की।
2: अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन, संकलन, संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
3: कहाँ चलती है, इधर तो
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभवाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों

0: के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो दो साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नवन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
0: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ

0: एक डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96 रुपए और 83 पैसे पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse

0: sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप हैज ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our time: rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector, is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and

0: मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी। इन माहिदों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दो तरफा ताल्लुकात की खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने की निशानदही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर व खोज किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दो तरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाजरानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: वज़ीर आज़म मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटारेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दो तरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के 5वें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को

0: आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कु डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
1: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
0: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और गजाइत की बेहतरी के ज़िमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती तआवुन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तसादी शराकतदारी के माहदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वह दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सबका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि CAA के तहत तहफ़ फराम करदा 7 बिरादरियों के अराकिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले NEET UG इम्तिहान के महफूज बेहतर तरीके से और शफाफ तौर पर दोबारा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नकायद से पाक इंतजाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रधान ने यह बात आज नई दिल्ली में मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक आला सतह जायजा मीटिंग के सदारत करते हुए कही। अंडर ग्रेजुएट तिबी तालीम में दाखिले के लिए NEET UG का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनाकिद किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में 5 मुलजिमीन को अगले महीने की 2 तारीख तक अदालती तहवील में भेज दिया है। इन मुलजिमीन में मांगी लाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। अदालत ने एक दिगर मुलजिम शुभम खैरनार की CBI तहवील में तौसी कर दी है। CBI ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि खैरनार की मजीद तफ्तीश की जरूरत है ताकि उन दिगर मुलजिमीन की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके जिन्हें खैरनार ने NEET UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चे बेचे थे। पर्चा लीक होने के इल्जाम के दरमियान पिछले महीने की 3 तारीख को लिया गया NEET UG 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था। इस मामले में हुई बेजाबतगियों की जामे जांच की जिम्मेदारी का काम CBI को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मरदमशुमारी के हिस्से के तौर पर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला

सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जुनूबी कोरिया के दिफाई हसूलियाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरका फरोग, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका बरामदात के लिए बारावर कोशिशों को तेज करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निज़ामों में तआवुन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरत हाल के बावजूद अकवामे मुत्तहदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाज़ा 6.4% लगाया है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अकवामे मुत्तहदा के सीनियर माहिर माशियात इंगो पिटरले ने आलमी माशी सूरत हाल और इम्कान से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक़वामे मुत्तहिदा के इक्तसादी जायजा और पॉलिसी डिवीजन के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्वे मईशत, ढांचा जाती असलाहत और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरत हाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी रहेगी। मौसमियात की एजेंसी ने गंगाई, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आइंदा 2 दिनों के लिए गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी में आइंदा 3 से 4 दिनों में गर्मी की लहर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक शहर के किसी किसी मकाम पर दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल रहने की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन के तारीखी मैदान में मुंबई इंडियंस और मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक कर लिया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरानदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद।

0: श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त

0: और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड स्कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
1: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत के विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह

0: पढ़ाया।
1: सर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं। पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, पर भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाई जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
2: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
3: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
4: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
3: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
2: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
3: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया,

0: आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
1: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया, 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं, जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है, वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें, बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे, तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे, जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
2: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
0: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे, और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद UN सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर UN में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
0: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब FTA के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
1: जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पिछले कुछ वर्षों में

0: भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो 4 देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, ये आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन। सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity.

0: I've said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का. हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका

0: विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
1: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
2: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
0: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं गुलामी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और समीर कुमार की आवाज में, प्यार झुकता नहीं फिल्म से। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है 20 साल बाद फिल्म से मोहम्मद अजीज सारिका कपूर की आवाज में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात

621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला गीत एक दूजे के लिए फिल्म से, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में।

अगला गीत आइए सुनते हैं आराधना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है ST बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला गीत हमने लिया है गाइड फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है ST बर्मन ने।

मोहम्मद रफी की सुर में आइए सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये प्यारा सा गीत, शहीर के बोल और जयदेव का संगीत।

अगला गीत हमने लिया है फर्ज फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। इसके संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला गीत हमने लिया है सूरज फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी की बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं

0: समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists, and other workers.